0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। सुबह के 6 बजने को हैं, आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोद्योमिर जेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
2: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे

0: पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वंदना।

सुबह के 6:25 और 7 सेकंड हुए हैं। आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना।

अभी आप कार्यक्रम वंदना सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन, जिसमें आज आप सुनेंगे भीष्म साहनी के विचार। नमस्कार, आज के चिंतन कार्यक्रम में हम प्रस्तुत कर रहे हैं लघु वार्ता भीष्म साहनी के विचार। आलेख है डॉक्टर पूनम सिंह का और वाचन स्वर कमल किशोर बड़ाई का।
1: हिंदी साहित्य का एक रोशन नाम भीष्म साहनी, एक अजीम लेखक जिनकी कलम ने ताउम्र जिंदगी नुमा वृक्ष के हर पत्ते बूटे पर सामाजिक यथार्थ इंसानी रिश्तों नातों की कहानियों को रचा। प्रेमचंद यशपाल परंपरा के नायाब कथाकार भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त को अविभाजित भारत रावलपिंडी में हुआ था। स्वाधीनता संघर्ष और विभाजन त्रासदी पिछली सदी के इन दो अतिवादी स्थितियों फड़फड़ाते वक्त की तमाम बेचैनियों ने उन्हें रफ्ता रफ्ता लेखक के रूप में गढ़ा। देश की परिस्थितियां और लेखक का मन कुम्हार के आवाज जैसे होता है, जिसमें भीतर की मतती बेचैनियां अनेक विधाओं कहानी उपन्यास नाटक आत्मकथा के रूप में आकार लेती हैं। जमीनी संघर्ष से उपजा उनका समग्र साहित्य सांप्रदायिकता के विरुद्ध लामबंद है। कबीरा खड़ा बाजार में, आलमगीर, मुआवजे, ये इनके महज नाटक नहीं, सांप्रदायिक ताकतों के प्रति उनकी शाब्दिक खुली चुनौती है। कबीर का होना भारत की सांस्कृतिक सामाजिक समरसता को पुनर्जीवित करना है। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक में भीष्म साहनी कहते हैं, मेरी समझ में कबीर का अध्यात्म मूलतः उनकी मनुष्य मात्र के प्रति समदृष्टि प्रेम भाव

0: भक्तिभाव और व्यापक धर्मेतर दृष्टि से पनप कर ही निकला है। आजीवन प्रगतिशील विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध भीष्म साहनी लेखक के सामाजिक दायित्व को महत्वपूर्ण मानते हैं। लेखक के परिवर्तनकारी कर्तव्य बोध पर उनका कथन है, लेखक का संवेदन अपने समय के यथार्थ को महसूस करना और आंकना है, अंतर्द्वंद्व और अंतर्विरोध के प्रति सचेत होना है। इसी दृष्टि से उनकी पकड़ समाज के भीतर चलने वाले संघर्ष पर ज्यादा मजबूत होती है और परिवर्तन की दिशा का भी आभास होने लगता है। इसी के बल पर वो राजनीति से आगे होता है, पीछे नहीं। भाषाई राजनीति पर उनकी टिप्पणी है, सभी भाषाओं को बराबरी का दर्जा देना, सांस्कृतिक विरासत को मान्यता देना, सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना, संस्कृति के क्षेत्र में उदारता और आदर भाव, इस तरह से हम कुछ हद तक सांप्रदायिकता के जहर को फैलने से रोक सकते हैं। भीष्म साहनी अपनी लेखनी से हमारे भीतर सोए हुए रहम को जागृत करते हैं। शांति एक व्यापक मूल्य बोध है जिसे जनता और हुकूमत दोनों को अर्जित करना पड़ता है। ये अभिमत उनके पूरे कथा साहित्य का शिव तत्व है, जिसमें वो कहते हैं कि हर इंसान बराबर है, चाहे उसका धर्म, जाति या सामाजिक स्तर कुछ भी हो। भेदभाव करना असभ्यता और अन्याय है। पिछली सदी ने भेदभाव और असमानता की बड़ी भारी कीमत चुकाई है। भेदभाव या असमानता एक जहरीला बीज है जो न केवल समाज को बल्कि इंसानियत को भी खोखला कर देता है। भीष्म साहनी साहित्य के महत्तर उद्देश्य को रेखांकित करते हैं। साहित्य तो प्रकृति में पाए जाने वाले मूल तत्वों की तरह है जो किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं बल्कि सार्वभौमिक हैं। साहित्य में पाई जाने वाली ये सार्वभौमिकता उसमें निहित मानवतावाद से पैदा होती है। भीष्म साहनी के साहित्य का एक ही चटक रंग है, वो है लोक कल्याण।
1: अभी आप चिंतन कार्यक्रम में भीष्म साहनी के विचार सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस बालकांड भाग 90।

राजा जनक की यज्ञशाला जानकी के स्वयंवर के अनुरूप सजाई गई है। शुभ घड़ी जानकर राजा जनक ने सीता को यज्ञ स्थल पर बुला भेजा।

0: अभी आप रामचरितमानस सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। फ्रांस देशस्य यात्रावधौ स्वकीय प्रवासस्य चरमे सोपाने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः रात्रौ पेरिस नगरं सम्प्राप्तवान्। पेरिस नगरे आगमन समये विश्रांति निलये एकत्रिताः भारतीय समुदायस्य सदस्याः उत्साहपूर्वकं तदीय भव्यं स्वागतं अकुर्वन्। अद्य प्रधानमंत्री प्रमुख विपणीनां मुख्य कार्यकारिभिः सह चर्चां करिष्यति। तदनन्तरं सः यूरोप महाद्वीपस्य प्रमुख प्रौद्योगिकी मञ्चे विवाटेक शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। तत्र च स्वसंबोधनं प्रदास्यति। सायंकाले असौ एकस्मिन् सामुदायिक कार्यक्रमे भारतीय प्रवासिभिः सह संवादं विधास्यति। G7 देशैः वैश्विक स्थिरतायाः सुरक्षा सहयोगस्य अथ सीमापार संघटित अपराध निवारणस्य उद्देश्येन विभिन्नाः प्रमुखाः घोषणाः विहिताः। मुख्य वक्तव्ये नेतृभिः अमेरिका ईरान देशयोर्मध्ये संजातं सन्धिनिश्चयम् अभिनन्दितम्। अन्य घोषणापत्रे G7 देशैः मादक द्रव्यस्य अवैध कार्यं निरोद्धुं संकल्पो विहितः। अस्मिन् अभियाने ब्राजील दक्षिण कोरिया देशौ अपि सहमतिं प्रदर्शितवन्तौ। फ्रांस देशस्य एवियन नगरे चलायमाने G7 शिखर सम्मेलने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सर्वहितकारी सतत आर्थिक विकासः इत्याख्ये मुख्य विषये आयोजितायां महत्वपूर्ण कार्यगोष्ठ्यां भागं भजते। सत्रेऽस्मिन् G7 देशाः सहभागी राष्ट्राणि अन्ताराष्ट्रिय मुद्रा कोषस्य OECD इत्यस्य च प्रतिनिधिः।

0: नरेन्द्रमोदिना सह पहाड़पुरे कौशल केन्द्रस्य निरीक्षणं करिष्यति, सहैव रायरंगपुरे जनसभां च संबोधयिष्यति। चतुर्थ दिवसे सा जून मासस्य एकविंशति दिनांके जबलपुरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसोत्सवे भागं ग्रहीष्यति, सहैव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालयस्य दीक्षांत समारोहे अध्यक्षतां विधास्यति। यात्रायाः चरमे सोपाने सा क्यूनो राष्ट्रीय उद्याने सहरिया जनजातीय सदस्यैः चीता अन्वेषकैः च सह संवादं विधास्यति। संयुक्त राष्ट्र संघस्य खाद्य संस्थाभ्याम खाद्य एवं कृषि संघटनेन अथ विश्व खाद्य कार्यक्रमेण च विज्ञापितं यत् आगामीषु मासेषु युद्ध जलवायु परिवर्तन धन न्यूनता कारणात् विश्वस्य त्रयोदश प्रमुख क्षेत्रेषु बुभुक्षा संकटं अधिकं गभीरं भविष्यति। संयुक्त प्रतिवेदनस्य अनुसारं संप्रति जगति 66-200 कोटि जनाः तीव्र खाद्य असुरक्षया पीडिताः सन्ति। अस्यां सूच्यां सुडान, दक्षिण सुडान, यमन, फिलिस्तीन, नाइजीरिया, सोमालिया चेत्यादयः देशाः अत्यधिक संकटग्रस्ताः सन्ति। प्रतिवेदने चिंता प्रदर्शिता यत् 20-22 तः परं मानवीय सहायतायै प्राप्यमाणं धनं 60% न्यूनं जातम्। WFF संस्थायाः कार्यवाहक निदेशकः कार्ल स्काउ महोदयः अवोचत् यत् यदि शीघ्रं किमपि कार्यान्वयनं न क्रियते तर्हि कोटिशः जनाः दुर्भिक्षस्य गर्ते पतिष्यन्ति। हॉकी क्रीडायां नीदरलैंड देशस्य राइडरेम नगरे प्रचल्यमाणायाः FIH प्रो लीग स्पर्धा मालिकायाः द्वन्द्वे भारतीय पुरुष हॉकी दलेन जर्मनी दलं 3-1 इत्यांकांतरालेन पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
2: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। इसमें ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने, डीप फेक और बच्चों के शोषण जैसी चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया गया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिसिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रो लीग हॉकी मैच में भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से मनदीप सिंह, शिलानंद लाखड़ा और नीलकांत शर्मा ने गोल किए। ये मनप्रीत सिंह का 413वां अंतर्राष्ट्रीय मैच था। उन्होंने भारत के लिए सबसे अधिक मैच खेलने का कीर्तिमान बनाया। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रम के लिए देश भर में 1,70,000 से अधिक आयोजकों ने पंजीकरण कराया है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि योग संगम स्वास्थ्य के माध्यम से एकता का उत्सव है। इसके तहत देश भर में हजारों स्थानों पर लोग एक साथ योग करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य योग को जन जन तक पहुंचाना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

संगीतिका कार्यक्रम में अभी आप अजय कपिल के गाए भजन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में आप सभी को मेरा यानी अर्चना सचदेवा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का सुबह की बेला में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आजकल सभी की छुट्टियां चल रही हैं और सभी कहीं ना कहीं पिकनिक के लिए गए हुए हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी जाना है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस है? तो आज के दिन अगर आप कहीं गए हुए हैं तो हम चाहते हैं कि ये दिन और ये जर्नी आपके लिए बहुत ही सुखद और आनंदमयी हो।

दोस्तों, पिकनिक शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द पिकनिक से हुई है और फ्रांसीसी क्रांति के बाद जब शाही उद्यानों को आम जनता के लिए खोल दिया गया तो लोगों ने वहां बैठकर अपने साथ लाया हुआ खाना खाना शुरू किया और यहीं से पिकनिक की आधुनिक संस्कृति की शुरुआत हुई।

बिल्कुल दोस्तों, अगर आप अपना दिन हंसी खुशी से व्यतीत करते हैं तो आपकी पिकनिक तो रोज ही है। और ये दिन जो है, हम सभी को अपनी व्यस्त दिनचर्या से ब्रेक लेने और परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ खुले आसमान के नीचे प्राकृतिक वातावरण में भोजन करने और समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करता है। और दोस्तों, जब साथ में अपने हों तो सफ़र और भी आनंदमय हो जाता है।

दोस्तों, प्रकृति की सुंदरता और सुहावने मौसम का आनंद लेने के लिए ये दिन बहुत ही अच्छा है और आधुनिक जीवन शैली में काम के तनाव से दूर अपनों के साथ हंसी खुशी के पल बिताने का इससे बेहतरीन अवसर कब हो सकता है।

दोस्तों अब हमारा भी चलने का वक्त हो गया है और अब आप भी अपने पिकनिक का पूरा एंजॉय कीजिए और जो प्रोग्राम बना रहे हैं जाने का वो भी जल्दी से जाइए। और आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा अपनी प्रतिक्रियाएं हमें ज़रूर मेल करिएगा। और अब मुझे यानी अर्चना सचदेवा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आपको छोड़े जाते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

0: अभी आप गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
4: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
5: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
3: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
6: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनीतिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
3: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का

0: दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
1: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
2: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सीकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
4: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
5: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
3: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल। हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेंबू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
6: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
3: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
7: We have a huge pool of talent.
8: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमरीका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
9: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट AF थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
10: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन। फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक 1, रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी

0: अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क, केंद्र सरकार ने कहा टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल। संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती, बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम निशित कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू अटेंड विवाटेक समिट इन पेरिस विद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुअल माक्रॉन। पीएम मोदी टू आल्सो एड्रेस मेंबर्स ऑफ इंडियन कम्युनिटी इन फ्रेंच कैपिटल। President Draupadi Murmu to embark on a 5-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. Polling for 2 Rajya Sabha seats from Jharkhand and 1 from Mizoram to take place today. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement to come into force on the 15th of July this year. US President Donald Trump signs 14-point peace deal with Iran to end West Asia conflict. And in men's cricket, India beat Afghanistan by 170 runs in the second ODI of the 3-match series to take unassailable 2-0 lead. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi arrived in Paris last night for the final leg of his visit to France. Upon his arrival in the French capital, Mr. Modi received a warm welcome from the members of the Indian community gathered at his hotel.
3: I feel India and France, it goes beyond geopolitics, education, culture, AI, innovation, it is everything.
4: So we are very thankful ki Modi ji aaye humse mile.
2: In Paris, Prime Minister Modi will attend the VivaTech 2026 alongside French President Emmanuel Macron. The VivaTech Summit is Europe's largest technology and startup event, where Mr. Modi is expected to highlight India's growing innovation, ecosystem and technological advancements. Prime Minister Modi is also scheduled to address members of the Indian community during a special diaspora event. We hear more from our correspondent.
5: Today, the Prime Minister continues packed itinerary designed to supercharge bilateral trade and innovation partnerships. He will lead the charge by covering a specialized roundtable with top French and European business leaders, focusing on driving strategic investments into India's expanding industrial and tech corridors. The centerpiece of the visit takes place later today at VivaTech, Europe's premier technology and startup conference. Prime Minister Modi, alongside French President Emmanuel Macron, will lead a series of high-level engagements at the summit, culminating in a highly anticipated keynote address that highlights India's skyrocketing global digital footprint. The intensive diplomatic trip will wind down with a major community outreach initiative. The Prime Minister is slated to attend a massive diaspora reception featuring vibrant cultural performances that celebrate India's heritage. Mahesh Sopre, Akashwani News, Paris, France.
2: The Paris leg of PM Modi's visit is expected to further strengthen India-France relations, particularly in technology, innovation and people-to-people ties. President Draupadi Murmu will embark on a 5-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. On the first day of her visit, President Murmu will attend a program

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों के हमराह पेरिस में वीवाटेक समिट में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म फ्रांस की राजधानी में मुकीम भारतीय बिरादरी से भी खिताब करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 रोजा दौरे पर रवाना होंगी। झारखंड की 2 और मिजोरम की 1 राज्यसभा सीट के लिए आज पोलिंग होगी। भारत बरतानिया जामे इक्तसादी और तजारती मुआहिदा इस साल 15 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मगरबी एशिया के तनाजे के खात्मे के लिए ईरान के साथ 14 निकाती अमन मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। और मर्दों के क्रिकेट में भारत ने 3 एक रोजा मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के अपने दौरे के आखिरी मरहले में कल रात पेरिस पहुंचे। फ्रांस की राजधानी पहुंचने पर होटल में जमा हुए भारतीय बिरादरी के अफराद ने जनाब मोदी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पुरजोश हामियों ने वज़ीर-ए-आज़म की हिमायत का इजहार करते हुए नारों के साथ उनका खैर मकदम किया। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने पेरिस में अपनी सरगर्मियों का आगाज किया। पेरिस में वज़ीर-ए-आज़म मोदी फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों के हमराह वीवाटेक 2026 में शिरकत करेंगे। वीवाटेक समिट यूरोप का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप प्रोग्राम है, जहां तवक्कु है कि जनाब मोदी भारत के फरोग पाते हुए जिद्दत तराजी के निजाम और तकनीकी तरक्यात को उजागर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म एक खसूसी तकरीब में भारतीय बिरादरी के अफराद से खिताब करेंगे। तफसील हमारे निमानीगर से।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने मोदी आज दो तरफा तजारत और इख्तराई शराकत दारियों को मजीद मजबूत बनाने की गरज से अपनी मसरूफियात को जारी रखेंगे। वो फ्रांस और यूरोप के कारोबारी रहनुमाओं के साथ एक खसूसी गोलमेज इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें भारत के तेजी से फैलते हुए सनअती और टेक्नोलॉजी शोबों में स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इस दौरे का मरकजी हिस्सा आज बाद में वीवाटेक होगा, जो यूरोप की मुमताज टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों समिट में आला सतह की सरगर्मियों की क़यादत करेंगे। इन सरगर्मियों का इख्तिताम एक अहम कलीदी खिताब से होगा, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते हुए आलमी डिजिटल असर व रसूख को उजागर किया जाएगा। ये वसी सफारती दौरा एक बड़े अवामी राबते के प्रोग्राम के साथ इख्तिताम पजीर होगा। वज़ीर-ए-आज़म वसी पैमाने पर मुनक़िद होने वाली भारतीय बिरादरी की तकरीब में भी शिरकत करेंगे, जिसमें रंगारंग सकाफती प्रोग्राम पेश किए जाएंगे और भारत की तहजीबी विरासत को उजागर किया जाएगा। पेरिस से महेश चोपड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: वज़ीर-ए-आज़म मोदी G7 समिट में कई मुफीद और नतीजा खेज मीटिंगें करने के बाद पेरिस पहुंचे हैं। इन मीटिंगों में उन्होंने हुक्मरानी और पॉलिसी साजी के अहम उमूर पर भारत का मौकफ पेश किया और सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्हें आलमी खुशहाली के लिए

0: तरक्की पजीर ममालिक के साथ करीबी ताउन की ज़रूरत पर जोर देने का मौका भी मिला। जी सेवन के आउटरीच इजलास में वज़ीर आज़म मोदी ने जी सेवन मुल्कों भारत और आलमी खित्ते जुनूब की मुश्तरका ताकतों को यकजा करके राबते और तजारत को बढ़ाने के लिए एक फ्रेमवर्क तजवीज़ किया। उन्होंने तरक्की पजीर मुल्कों पर मगरबी एशिया के बहरान के तवील मुद्दती असरात पर तशवीश का इजहार किया। जी सेवन समिट के मौके पर वज़ीर आज़म मोदी ने कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकात की, जिनमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, बरतानिया के वज़ीर आज़म कीर स्टारमर, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यूरोपीय यूनियन की आला रहनुमा उर्सुला वॉन डेर लेयन, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद आले नहयान और कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी शामिल थे। सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद जनाब मोदी ने समुद्री अमले के अफराद की सलामती का मामला उठाया और जोर देकर कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान अमन माहदे के नफाज के दौरान उनके तहफ़ को अव्वलिन तरजीह दी जाए। वज़ीर आज़म मोदी के पेरिस के दौरे से तवक्कु है कि खसूसी तौर पर टेक्नोलॉजी, इख्तरा और अवाम से अवाम के राबते के शोबों में भारत और फ्रांस के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगी। अपने दौरे के पहले दिन मोहतरमा मुर्मू मध्य प्रदेश के ज़िला बैतूल में रूहानी बेदारी के जरिए कबायली समाज को बख्तियार बनाने से मुतालिक एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: सदर जमहूरिया इंदौर पहुंचेंगी और फिर बैतूल का सफर करेंगी, जहां वो ब्रह्मा कुमारीज के जेर एहतमाम मुनाकिदा एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। बाद में मोहतरमा मुर्मू ओमकारेश्वर मंदिर जाएंगी और शाम की आरती में हिस्सा लेंगी। 19 जून को सदर जमहूरिया सिकल सेल एनीमिया के बैन अल-अक़वामी दिन के मौके पर मुनाकिदा एक तकरीब में शिरकत करेंगी। 21 जून को मोहतरमा मुर्मू जबलपुर में योग के बैन अल-अक़वामी दिन की तकरीबात में हिस्सा लेंगी। वो रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के 36वें जलसे तकसीम असनाद में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत करेंगी। इसके बाद वो नई दिल्ली रवाना होने से कबल कूनो नेशनल पार्क का दौरा करेंगी। सदर जमहूरिया के बैतूल के दौरे के पेश नज़र ज़िला कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनावने ने सिक्योरिटी इंतजाम के तहत बाज़ बंदिशें नाफिज की हैं। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: झारखंड में आज राज्यसभा की 2 सीटों के लिए वोटिंग होगी। इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और आजाद उम्मीदवार परिमल नाथवानी इलेक्शन लड़ रहे हैं। झारखंड कानून साज असेंबली में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक पोलिंग होगी, जबकि वोटों की गिनती शाम 5 बजे शुरू होगी और इसके बाद नतीजे का ऐलान किया जाएगा। असेंबली के तमाम 81 रुकन असेंबली अपना वोट डालेंगे। फिलहाल हुक्मरान इत्तेहाद को 56 MLAs की हिमायत हासिल है, जिनमें JMM, कांग्रेस, RJD और CPI ML शामिल हैं। 24 MLA की हिमायत वाली अपोजिशन ने आजाद उम्मीदवार परिमल नाथवानी की हिमायत की है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत और बरतानिया ने ऐलान किया है कि जामी इक्तिसादी और तजारती माहिदा CETA इस साल 15 जुलाई से नाफिजुल अमल हो जाएगा। तजारत व सनत की वजारत ने बताया कि समाजी तहफ़ से मुतालिक ये माहिदा, जिसे डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन DCC भी कहा जाता है, इस पर भी उसी दिन से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: तजारत और सनत की वजारत ने बताया कि DCC के तहत छूट की मुद्दत को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है, जिससे भारत के आर्जी वर्करों को बड़ा फायदा है। इस मुआहदे को सराहते हुए तजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि CETA और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के नाफिज होने से भारत की दरामदात के लिए नए मौके पैदा होंगे, क्योंकि भारत ने 99% टैरिफ लाइन्स पर फौरी ड्यूटी फ्री रसाई हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि इससे टेक्सटाइल, चमड़े, मरीन, इंजीनियरिंग और डब्बाबंद खुराक से मुतालिक शोबों को बगैर किसी नुकसान के और अपनी आलमी सतह की मसनुआत सप्लाई करने में मदद मिलेगी। नीतिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहन अम्बार।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बरतानिया जामे इक्तिसादी और तजारती माहदे से भारत और बरतानिया के दरमियान दो तरफा तजारत और सरमायाकारी को काबिल ज़िक्र तक़वियत मिलेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि इस माहदे से भारतीय किसानों, वर्करों, MSME, स्टार्टअप्स और इख्तराकारों के लिए रोजगार के बहुत से मौके पैदा होंगे। गुज़श्ता 12 वर्षों के दौरान वज़ीर आज़म मोदी की दूर अंदेश क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और

0: सबका प्रयास के उसूलों पर अमल करते हुए भारत ने नुमाया तरक्की की है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए मुतअद्दिद अहम इकदाम किए। आकाशवाणी न्यूज़ आपके लिए एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के पेश कर रहा है।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत की मरबूत और कसीर जहती हिकमत अमली, जिसमें मुनज़्ज़म सिक्योरिटी कार्रवाइयां, माली वसाइल की बंदिश और तेज़ रफ्तार तरक्याती प्रोजेक्टों का नफाज शामिल था, मुल्क को नक्सलिज्म और माओ नवाजों की दहशतगर्दी से पाक बनाने में कामयाब रही है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया था कि 31 मार्च 2026 तक पूरे मुल्क से नक्सलिज्म का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा और अब ये हदफ हासिल कर लिया गया है। गुज़श्ता बरसों में कई अहम सिक्योरिटी कार्रवाइयों ने माओ नवाजों के नेटवर्क की कमर तोड़ने में फैसला कुन किरदार अदा किया। 2022 में झारखंड के बुद्धा पहाड़ इलाके में ऑपरेशन ऑक्टोपस अंजाम दिया गया, जबकि इसी साल फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के जरिए झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातिहार जिलों को नक्सलिज्म से आजाद कराया गया। इसी तरह 2022 में ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, मगरबी सिंहभूम और खूंटी जिलों में माओ नवाजों के मजबूत ठिकानों को निशाना बनाया गया। 2025 में तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सरहद से मुत्तसिल तकरीबन 50 किलोमीटर तवील और 37 किलोमीटर चौड़े पहाड़ी इलाके में चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बाकी मानदा माओ नवाज कारिंदों को शदीद नुकसान पहुँचाया। छत्तीसगढ़ के बस्तर के रहने वाले एक शख्स ने हुकूमत की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि मुल्क को नक्सलिज्म से पाक बनाने का वादा पूरा कर दिया गया है।
2: उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो पूरे मोदी सरकार को और अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
1: जमीनी सतह पर इस मरबूत हिकमत अमली के नतीजे वाज़ह तौर पर सामने आए हैं। 2024 में 217 माओ नवाज हलाक किए गए, जबकि 2025 में ये तादाद बढ़कर 256 हो गई। साल 2026 में अब तक 26 माओ नवाज हलाक किए जा चुके हैं। इस दौरान कई बड़े नक्सल रहनुमा भी मारे गए। इन सिक्योरिटी इकदाम के नतीजे में नक्सल से मुतासर इलाकों में तरक्की के एक नए सिलसिले का आगाज हुआ। झारखंड के जिला गुमला के रहने वाले टेम्बू ओराव ने कहा कि मोदी हुकूमत की तश्कील के बाद नक्सलिज्म बतदरीज खत्म हो गया और आज लोग अमन सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं।
3: एक दशक पहले हमारा गांव क्षेत्र पूरी तरह से नक्सलवाद के जब्त में था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं। बाकी गाँव का विकास हो रहा है, धीरे धीरे रोड सड़क बन गया है, काफी अच्छा है। अभी
1: आज नक्सलिज्म से पाक भारत की कहानी इस बात का सबूत है कि जमहूरियत, तरक्की और आईन ने कई दहाइयों पर मुहित तशद्दुद पर कामयाबी हासिल की है। दिल्ली से अक्षित वेदियान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पजश्कियान ने वर्चुअल वसीले से 14 निकाती मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को खत्म करना, अब नए हुरमुज को दोबारा खोलना और ईरान के जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुतालिक हतमी माहदे के लिए 60 रोजा मुजाकराती अमल शुरू करना है। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने पेरिस में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात के दौरान इस मुफाहमतनामे पर ज़ाती तौर पर दस्तखत किए। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने तस्दीक की है कि मुफाहमतनामे के मतन को हतमी शक्ल देकर दोनों फरीकों की जानिब से दस्तखत कर दिए गए हैं। इस माहदे के तहत अमरीका अपनी बहरी नाकाबंदी और मुतल्लिका पाबंदियों को खत्म करने का अमल शुरू करेगा, जबकि ईरान इब्तदाई 60 रोजा मुद्दत के लिए अब नए हुरमुज से तजारती जहाजों की महफूज और बिला मुआवजा आमदोरफ्त को यकीनी बनाएगा। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान लखनऊ में 3 एक रोजा मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर 2-0 की सबकत हासिल कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 49 ओवर 5 गेंद में 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 रन और ईशान किशन ने 125 रन बनाए। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
4: शुक्रिया फैसल। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے جی سیون اجلاس میں مودی اور ٹرمپ کی دو طرفہ ملاقات، وزیر اعظم نے مودی نے کہا کہ آبنا ہرمز کا کھلا رہنا دنیا کے لیے انتہائی ضروری ہے، انہوں نے بھارتی ملاحوں کے تحفظ پر بھی زور دیا، سر ٹرمپ نے وزیر اعظم مودی کی تعریف کی۔

0: रोजनामा प्रताप ने अपने सफे अव्वल पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बयान को नुमाया तौर पर शाया करते हुए सुर्खी लगाई है, विकसित भारत के लिए रियासतों को मरकज की अच्छी हुक बनाने की पहल को अपनाना चाहिए। इसी अखबार ने मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान के बयान को नुमाया किया है, वजीर आजम ने मोदी ने स्वच्छता को आवामी तहरीक की शक्ल दी। रोजनामा इंकलाब ने फीफा आलमी कप से मुतालिक खबर को शाया करते हुए लिखा है, फुटबॉल के आलमी मेले में सितारे जगमगा उठे।
1: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के हमराह पेरिस में वीवा टेक समिट में शिरकत करेंगे। वजीर आजम फ्रांस की राजधानी में मुकीम भारतीय बिरादरी से भी खिताब करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 रोजा दौरे पर रवाना होंगी। झारखंड की 2 और मिजोरम की 1 राज्यसभा सीट के लिए आज पोलिंग होगी। भारत बरतानिया जामे इकतसादी और तजारती माहदा इस साल 15 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मगरबी एशिया के तनाजे के खात्मे के लिए ईरान के साथ 14 निकाती अमन माहदे पर दस्तखत किए हैं। और मर्दों की क्रिकेट में भारत ने 3 एक रोजा मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल कर ली है। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, जिसमें आज आप सुनेंगे गणेश प्रसाद मिश्रा का गायन ठुमरी राग मिश्र भैरवी में। तबले पर संगत की है मिहिर कुमार नट्टा ने और सारंगी पर है शंभू सिसोदिया।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा में अभी आप गणेश प्रसाद मिश्रा का गायन सुन रहे थे राग मिश्र भैरवी में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम उद्योग पत्रिका।
1: नमस्कार, उद्योग पत्रिका में आप सबका स्वागत है। सुनिए श्री अभिषेक शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएफओ, विनिर्माण वित्त विशेषज्ञ से कमल किशोर की ये बातचीत।
2: हम आपका अभिषेक जी स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं।
3: नमस्कार कमल जी, थैंक यू सो मच।
2: अभिषेक जी, आजकल देखा जाता है कि जो व्यवसाय में रोज रोज कभी कभी परिवर्तन होते हैं और उसके साथ में हमें चलना पड़ता है, बिजनेस एक्सेलेंस के लिए इसमें कई प्रकार की चीजों की आवश्यकता होती है, कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, रणनीति बनानी पड़ती है। लेकिन इसमें सबसे जो बड़ी बात होती है वो है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाए, वित्तीय रणनीति हम कैसे बनाए इसके लिए, तो आप इसे किस प्रकार से परिभाषित करेंगे?
3: कमल जी, आपने एकदम सही कहा कि अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें अलग अलग तरह से हमको करना चाहिए और इसमें कुछ बातें बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली होती हैं कि पहली बात तो हम जो भी कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा आने वाले समय में, हमारे 3 साल 5 साल में, उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या आने वाला है। सो आरओआई जिसको कहते हैं, आरओआई इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसके लिए हमको एक प्लान बना के चलना पड़ता है। अगर एक होता है इमोशनल डिसीजन और एक होता है फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन को इमोशनल डिसीजन से पहली बात तो अलग रखना चाहिए। जस्ट बिकॉज हमारे पूर्वज एक तरह से या हमारे पिता एक तरह से कर रहे थे तो आज के संसार में क्या वो सही है? आज मैं देखता हूं कई सारी एमएनसीज हैं और कई एमएसएमई कंपनी है, यानी कि छोटी बड़ी कंपनियां हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जिसको कहते हैं, वो कई बार फैमिली रन एंटरप्राइज की तरह पुराने ढंग से भी करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट्स और पूरी तरह प्लानिंग नहीं करते और वहीं पे उनकी कई बार गलती हो जाती है।
2: यानी कि वो जो इन्वेस्टमेंट होती है या फिर जो सेविंग्स होती है या फिर जो प्लानिंग होती है वो ट्रेडिशनल तरीके की होती है, जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, नई सोच नई तकनीक को अपना नहीं पाते हैं।
3: आज के दिन में जैसे आपने टेक्निक की बात करी, एआई एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसको हमको यूज करना चाहिए। एआई से बचना नहीं चाहिए क्योंकि एआई हमारे साथ हमारे जीवन में है। इसको हम अच्छे तरह से प्रयोग कैसे कर सकते हैं, एंड अगर हम सही तरह से बजट करें, जैसे आपने बजट की बात करी, हम कंट्री का भी बजट, देश का भी बजट बनाते हैं, उसी तरह हमको हर कंपनी का बजट बनाना चाहिए
2: जी,
3: और 3 साल का एक समय लेके चले कि 3 साल में हमको ये इस प्रॉफिटेबिलिटी पे पहुंचना है। मतलब कोई भी कंपनी आज अगर स्टार्ट हो रही है तो उसको 3 साल में टर्न अराउंड करना है।
2: हम सबके दिलो दिमाग में भी ये बसा हुआ है कि हमें एक विकसित भारत बनाना है 2047 तक, तो इसमें वित्तीय यानी कि फाइनेंस का किस प्रकार का रोल होगा?
3: देखिए, अगर विकसित भारत की बात करें तो इकोनॉमी जो होती है वो एक किसी भी कंट्री की रीढ़ होती है, किसी भी देश की बैकबोन होती है। इकोनॉमी पे फोकस करना सबसे बड़ा उसका काम है अगर हमको विकसित भारत करना है तो। इकोनॉमी हर तरह से आती है, इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे पास सही ढंग से इन्वेस्टमेंट्स आए, बाहर का इन्वेस्टमेंट्स भी आए, और खाली हम बाहर की कंपनी को अपने यहाँ पे तो जगह दे रहे हैं पर हमारी खुद की कंपनियों को भी एमएनसीज बनना चाहिए। हमारी कंपनियां बाहर जाके व्यवसाय करें, बिजनेस करें और वहां पर कमाई करें, वो बहुत जरूरी है
2: जी। और इसके लिए जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने हर बार स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दिया है, हर जगह स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया है, वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल जो हेल्प होता है, असिस्टेंस होता है, उसके भी सरकार की ओर से भी मदद की जाती है। तो जो व्यवसाय में जो उत्कृष्टता है, बिजनेस एक्सेलेंस है, उसको प्राप्त करने के लिए, उसे हासिल करने के लिए किस प्रकार की वित्तीय रणनीतियां अपनाई जाएं?
3: बिजनेस एक्सेलेंस या बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए फाइनेंशियल एक्सेलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है और फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आज के दिन में कई सारे सीएफओज, कई सारे सलाहकार मौजूद भी हैं। अगर मैं ये स्पेशली कहना चाहूंगा उन स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज से जो फुल टाइम सीएफओ नहीं भी रख सकते हैं, एटलीस्ट एक सलाहकार जरूर रखना चाहिए। जिस प्रकार हमारे

0: पास एक पहले डॉक्टर होता था
1: जी हाँ
0: हमारी हेल्थ देखने के लिए, उसी तरह हमारे पास फाइनेंशियल हेल्थ देखने के लिए भी एक सलाहकार होना चाहिए। विकसित भारत की अगर हम बात करते हैं तो विकसित भारत के लिए कई सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट लेके आई हैं, जैसे गिफ्ट सिटी की बात कर सकते हैं हम जो गुजरात में है, वहां पे अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो इट इज ट्रीटेड एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसमें टैक्स में काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं और फेमा के रूल्स काफी चेंज हो चुके हैं। अब हमको काफी आसानी है हमको अगर हम बाहर कहीं इन्वेस्ट करना चाहें और बाहर से कुछ हम कमाना चाहें तो फॉर इंडियन कंपनीज ऑल्सो बहुत ईजी हो गया है बाहर निवेश करना, आउट ऑफ कंट्री निवेश करना।
1: जी
0: और स्मॉल कंपनीज के लिए या किसी भी कंपनी के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है जिसको मैं बोलता हूं ऑरसैप। ये बेसिकली इसको अगर हम बड़ा करें, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, आप ऑर्गेनाइजेशन वाइड क्या करना चाहते हैं और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आर का मतलब होता है रिस्क, जैसे आपने बोला रिस्क, तो हमको लिखना चाहिए कि इस ऑब्जेक्टिव को पाने में क्या क्या कठिनाई आ सकती है, वो सब आपका रिस्क है। ए का मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी, उसमें आपको अकाउंटेबल होना चाहिए कि एक एक डिपार्टमेंट की क्या अकाउंटेबिलिटी है उन सबको पता हो। एस का मतलब होता है स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी बनाइए जिसके हिसाब से आप वो रिस्क को पार कर सकें। और पी का मतलब होता है प्लान, अगर आप प्लान करके चलते हैं और एक एक चीज का, जैसे हमने बताया 3 साल के अंदर में, मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी कंपनी ब्रेक इवन कर सकती है, प्रॉफिटेबिलिटी ला सकती है, कोई नई से नई कंपनी भी।
1: मुद्रा लोन तो ये किस प्रकार से मददगार साबित हो सकता है छोटी छोटी कंपनियों के लिए खासकर?
0: देखिए छोटी कंपनियों के लिए मुद्रा लोन एक बहुत बड़ा लाइफलाइन है, ये एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगी। और जिस भी कंपनी को, ये छोटी कंपनी है जिसको जरूरत है बहुत ज्यादा, ये उसका उपयोग ले सकते हैं। वैसे आज के दिन में हमारे पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, हमारे पास मुद्रा लोन तो है ही, पर कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया था फैमिली ओरिएंटेड कंपनीज, उनको कभी डाइल्यूशन का भी सोचना चाहिए। 5-7% डाइल्यूट करके अगर हम अच्छी इक्विटी ला सकें या अच्छे लोग ला सकें या प्रोफेशनल्स ला सकें, शायद अच्छा हो सके।
1: स्टार्टअप्स के विकास के लिए या डेवलपमेंट के लिए कई प्रकार की रणनीति बनाई जाती है, इन स्टार्टअप्स के लिए रणनीति, वित्तीय रणनीति कितना मायने रखती है?
0: स्टार्टअप्स के लिए कोई भी वित्त रणनीति या फिर बिजनेस एक्सीलेंस की बात करें या फाइनेंशियल एक्सीलेंस की बात करें तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि स्टार्टअप का जो भी निवेश कर रहे हैं स्टार्टअप में इनिशियली, वो इसीलिए करते हैं कि वो उससे फायदा ले सकें, उससे 2 साल में 3 साल में उसका कुछ बेनिफिट ले सकें और उसकी जो वैल्यूएशन है वो बढ़ सके।
1: जी जी,
0: सब इसी के लिए करते हैं। आज के दिन में स्टार्टअप्स को 2 चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, एक टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना चाहिए, कोई भी स्टार्टअप बिना टेक्नोलॉजी के ना चले और ना ही आप उसको चलाएं। टेक्नोलॉजी का सहयोग जरूर लें, अगर आपकी पूरी टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं है तो एटलीस्ट टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट जरूर होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को टच करना है और ये देखना है कि आज हमारे यहाँ क्या परेशानी है, उस परेशानी को अगर आप दूर कर सकें, यू कैन डू एनीथिंग। अगर मैं फाइनेंशियल वर्ल्ड की बात करूं तो सी ट्रांसफॉर्मेशन है, पहले जो हमारी इकोनॉमी थी और आज जो इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी है इंडिया की, वो तो बहुत ज्यादा बदल गई है। और एआई की अगर बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो जमीन आसमान का फर्क।
1: अभिषेक शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपने वित्तीय मैनेजमेंट के विषय में, बिजनेस एक्सेलेंस किस प्रकार से बना जाए, किस प्रकार से किया जाए, इन सबके विषय में आपने विस्तार से बातें की, जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सुनिए वार्ता, वार्ताकार हैं अनुपमा गोरे।
3: आज का हमारा विषय है भारत की नवीनतम औद्योगिक नीतियाँ और विकास की वर्तमान स्थिति। आज का भारत केवल कृषि आधारित अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि विश्व में तेजी से विकसित होती एक औद्योगिक और तकनीकी शक्ति के रूप में उभर रहा है। बदलती वैश्विक परिस्थितियों, नई तकनीकों, डिजिटल परिवर्तन और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता ने भारत की औद्योगिक नीतियों को भी नई दिशा और गति प्रदान की है। यदि हम भारत के औद्योगिक विकास की वर्तमान स्थिति को समझना चाहें तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि पिछले एक दशक में देश ने औद्योगिक क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन और पड़ाव देखे हैं। भारत सरकार ने विनिर्माण, अवसंरचना, नवाचार, हरित ऊर्जा और डिजिटल तकनीक पर विशेष बल दिया है। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत आज विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है और वैश्विक निवेशकों के लिए एक आकर्षक लक्ष्य और गंतव्य बनकर उभरा है। देश को औद्योगिक प्रगति का महत्व केवल उत्पादन तक सीमित नहीं है बल्कि यह रोजगार, निर्यात, तकनीकी उन्नति और क्षेत्रीय विकास को भी प्रभावित करता है। भारत की नवीनतम औद्योगिक नीतियों में सबसे प्रमुख पहल आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा रही है। इस पहल का उद्देश्य देश को उत्पादन, तकनीक और आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में हर प्रकार से आत्मनिर्भर बनाना है। कोविड-19 महामारी के दौरान यह स्पष्ट हो गया था कि अत्यधिक विदेशी निर्भरता किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्थिरता के लिए चुनौती बन सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए कई नीतिगत कदम उठाए। इसका लक्ष्य केवल आयात को कम करना नहीं बल्कि भारत को वैश्विक उत्पाद

0: केंद्र के रूप में विकसित करना भी है। इसी दिशा में मेक इन इंडिया पहल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश आकर्षित करना और उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है। रक्षा उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, जैव प्रौद्योगिकी और रेलवे जैसे अनेक क्षेत्रों में निवेश के अवसर बढ़े हैं। मोबाइल फोन निर्माण इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जहां भारत आज दुनिया के प्रमुख विनिर्माण केंद्रों में गिना जाने लगा है, कई वैश्विक कंपनियों ने भारत में उत्पादन इकाइयां स्थापित की हैं, जिससे देश की क्षमता के साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। भारत सरकार की एक और महत्वपूर्ण नीति है उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना, अर्थात PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इस योजना का मूल उद्देश्य घरेलू उत्पादन बढ़ाना और वैश्विक प्रतियोगिता में भारतीय उद्योगों को सक्षम बनाना है। इस नीति के तहत उन कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जाता है जो भारत में उत्पादन बढ़ाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा उपकरण, दवा उद्योग, दूरसंचार और सौर ऊर्जा, ऑटोमोबाइल जैसे उद्योग जगत के अनेक क्षेत्रों को इससे लाभ मिला है। विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है और अब वह केवल उपभोक्ता बाजार ही नहीं बल्कि उत्पादक राष्ट्र के रूप में भी उभर रहा है। यदि हम आधुनिक औद्योगिक विकास की बात करें तो सेमीकंडक्टर उद्योग की चर्चा आवश्यक हो जाती है। आज की डिजिटल दुनिया में सेमीकंडक्टर को तकनीक की विकास की रीढ़ माना जाता है। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, चिकित्सा उपकरण और रक्षा प्रणाली सभी में इसका उपयोग होता है। भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की है ताकि देश में चिप निर्माण उद्योग विकसित किया जा सके। यह पहल भारत को उच्च तकनीकी विनिर्माण के क्षेत्र में नई पहचान देने की क्षमता रखती है। औद्योगिक विकास केवल बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं होता। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी MSME क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करने वाला यह क्षेत्र ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ता है। सरकार ने MSME के लिए आसान ऋण, डिजिटल प्लेटफॉर्म, तकनीकी सहायता और बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में अनेक योजनाएं लागू की हैं। डिजिटलीकरण ने छोटे उद्योगों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने में मदद की है। भारत की नवीनतम औद्योगिक नीति में हरित विकास और सतत औद्योगिकीकरण को भी प्रमुखता दी जा रही है। आज दुनिया जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय चुनौतियों से जूझ रही है। ऐसे में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान देना शुरू किया है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना और औद्योगिक क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। यह न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायक होगा बल्कि भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर भी ले जाएगा। भारत सरकार ने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण पर भी विशेष बल दिया है। सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का विस्तार उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत करता है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का उद्देश्य परिवहन लागत को कम करना और माल परिवहन को अधिक कुशल बनाना है। जब उद्योगों को बेहतर परिवहन और ऊर्जा सुविधाएं मिलती हैं, तब उत्पादन लागत घटती है और निर्यात क्षमता बढ़ती है। आज भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी स्थिति मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। विश्व की कई कंपनियां उत्पादन के लिए नए विकल्प तलाश रही हैं और भारत इस अवसर का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। राजनीतिक स्थिरता, विशाल उपभोक्ता बाजार, कुशल युवा जनसंख्या और डिजिटल प्रगति भारत को निवेश के लिए अनुकूल बनाते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI में बढ़ोतरी इस विश्वास का प्रमाण है। हालांकि औद्योगिक विकास की इस यात्रा में कई चुनौतियां भी हैं। कौशल विकास की कमी, तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव, ऊर्जा लागत, पर्यावरणीय संतुलन और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं उद्योगों के सामने बड़ी चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं। इसके अलावा कई छोटे उद्योग अभी भी आधुनिक तकनीक और वित्तीय संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि सरकार, उद्योग जगत और शैक्षणिक संस्थान मिलकर कौशल विकास और अनुसंधान को प्रोत्साहित करें। औद्योगिक विकास में डिजिटल परिवर्तन की भूमिका भी तेजी से बढ़ रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा और ऑटोमेशन उद्योगों की कार्यप्रणाली बदल रहे हैं। भारत में डिजिटल इंडिया अभियान ने इस परिवर्तन को गति दी है। आज उद्योग केवल मशीनों पर आधारित नहीं है बल्कि डेटा और स्मार्ट तकनीक पर भी निर्भर होते जा रहे हैं। यह परिवर्तन उत्पादन को अधिक कुशल, सुरक्षित और प्रतिस्पर्धी बना रहा है। यदि वर्तमान स्थिति का समग्र मूल्यांकन करें तो कहा जा सकता है कि भारत औद्योगिक विकास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। देश की नीतियाँ अब केवल उत्पादन वृद्धि तक सीमित नहीं बल्कि नवाचार, पर्यावरणीय संतुलन, रोजगार और वैश्विक प्रतियोगिता को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। वोकल फॉर लोकल से लेकर लोकल टू ग्लोबल तक की यात्रा यह दर्शाती है कि भारत अपने उत्पादों को विश्व स्तर पर स्थापित करने की दिशा में गंभीर प्रयास कर रहा है। भविष्य की दृष्टि से देखें तो भारत के सामने अपार संभावनाएं हैं। यदि नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन हो, उद्योगों को पर्याप्त तकनीकी और वित्तीय सहयोग मिले और युवाओं को उद्योग से जुड़े कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए जाएं, तो भारत विश्व का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बन सकता है। आने वाले वर्षों में हरित उद्योग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विनिर्माण, रक्षा उत्पादन, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष उद्योग और डिजिटल सेवाएं भारत के औद्योगिक विकास के प्रमुख स्तंभ बन सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि भारत की नवीनतम औद्योगिक नीतियां देश को आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप में सक्षम और वैश्विक प्रतियोगिता में अग्रणी बनाने के दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। वर्तमान औद्योगिक स्थिति आशाजनक है, लेकिन इसे और मजबूत बनाने के लिए निरंतर सुधार, नवाचार और समावेशी विकास की आवश्यकता होगी। यदि सरकार, उद्योग और समाज मिलकर आगे बढ़े तो वह दिन दूर नहीं जब भारत केवल विश्व का सबसे बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि सबसे शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्रों में भी गिना जाएगा।
1: इसी के साथ उद्योग पत्रिका का ये अंक सम्पन्न होता है। वाचक स्वर शालिनी मित्तल और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
2: अभी आप उद्योग पत्रिका कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

0: पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक लेके हाजिर हाँ मैं संदीप कौर। अज दे प्रोग्राम विच असीं तुहानू सुना रहे हां एक वार्ता शांति अते मनुखी एकता दे प्रतीक श्री गुरु अर्जन देव जी। वार्ताकार होणगे अमनजीत सिंह। इस तों इलावा असीं सुणांगे शब्द गुरबाणी। दोस्तो, अज पंजवें सिख गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी दा शहीदी दिहाड़ा मनाया जा रहा है। आप जी ने बड़े भयानक अते दिल कंबाऊ तसीहे सहिंदिआं होइआं शहादत प्राप्त करके सिख इतिहास विच शहीदी परंपरा दा मुढ बद्धा अते आप नूं शहीदां दे सरताज खवाउण दा मान प्राप्त होया। इस शहीदी ने सिख धर्म दी उसारू दीआं नीहां इन्नीआं पक्कीआं कर दित्तीआं सन कि उन्हां तों बाद बेअंत सिखां ने आपो अपने बलिदान राहीं इक अमर ते अदुत्ती महल उसार दित्ता। गुरु जी नूं याद करदिआं अज असीं इक तुहानूं वार्ता सुणा रहे हां शांति अते मनुखी एकता दे प्रतीक श्री गुरु अर्जन देव जी। वार्ताकार ने अमनजीत सिंह।
1: जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। गुरु साहिबाना विच पंजवी जोत पंजवी पातशाही शांति दे पुंज सुखमणी दे दाते आदि ग्रंथ रचैता शहीदां दे सरताज तन तन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1563 श्री गोविंदवाल साहब विखे माता पाणी जी की कुख विचों चौथे गुरु साहिबान श्री गुरु रामदास जी दे घर होया। आप जी ने हरिमंदर साहब श्री अमृतसर दिसाई मियाँ मीर जी पासों नीरख दरबार साहब की उसारी अते आदि ग्रंथ की संपादना की। ग्रंथ साहब जी का पहला प्रकाश बाबा बुढ़ा जी पासों उन्होंने दरबार साहब के पहले मुख वजीर जानी कि हैड ग्रंथी थाप के करवाया। सिर्फ प्रकाश ही नहीं सुखासन लई आप जी ने कोठा साहब जिथे आप जी विश्राम करते सी उस स्थान पर नवा पलंग स्थापित करके ग्रंथ साहब जी लई सुखासन स्थान बना के आप जी ने उस पीड़े हेठा चिट्टी चादर बिछा के जमीन ते विराजमान होए। यही समा सी जो गुरु साहिब ने संगतां नूं दसवंत गुरु घर देण दी प्रथा शुरू की। शांति दे प्रतीक वजो जाने जांदे गुरु साहिब ने अपनी अदुती कुरबानी धर्म सबर अते मानवता दी राखी दी अमर मिसाल कायम की। 1581 विच गुरता गद्दी नशीन होए। 1606 विच आप जी ने अपनी लासानी शहादत दे के 43 साल की उम्र विच शहीदी का जाम पीता। हर गुरु साहिबान का अपने अपने समय से सिख मूवमेंट विच वखरा वखरा योगदान सी। इतिहासिक अते मानसिक मजबूती दे दृष्टिकोण नाल गुरु अर्जन देव जी का योगदान बेहद वड्डा सी। अपने दो भरावां प्रिथी चंद महादेव तो सब तो छोटे सी। आप जी ने सब तो वड्डे भरा प्रिथी चंद ने आप जी दे गुरता गद्दी सुभायमान होण समय विरोध किया अते उम्र विच सब तो वड्डा होण करके गुरुशिप ते क्लेम किया। पर प्रिथी चंद दे समाजिक वर्तारे अते सुभा करके उसनू

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं, जहां प्रवासी भारतीय समुदाय ने उनका शानदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ के देशों की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान शुरू हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। मिजोरम में सत्तारूढ़ जोराम पीपुल्स मूवमेंट और विपक्षी मिजो नेशनल फ्रंट के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने दोनों देशों के बीच शत्रुता समाप्त करने के लिए 14 सूत्रीय शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं। ईरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने भी समझौते पर हस्ताक्षर की पुष्टि की। इस 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सैन्य अभियानों की तत्काल और स्थायी समाप्ति तथा 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर वार्ता पूरी करने का वादा शामिल है। इस अवधि को आपसी सहमति से बढ़ाया भी जा सकता है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा।

चलो दोस्तों, आपको भी सिग्नल दे दिया है हमने अपने संदेश हम तक पहुंचाने का, और इसके लिए एक छोटा सा काम करना है आपको। क्या करना है? जी हाँ, संदेश हमें भेजने हैं, और वो भी अपने फोन से हमें भेजने हैं, या लैपटॉप या कंप्यूटर, किसी से भी आप भेजें, बस अपने संदेश भेजें। संदेश भेजने का जो रास्ता है, जो पाथ है, वो मैं आपको बता देती हूँ। ipradio@gmail.com इस छोटे से ईमेल आईडी पर आप अपना संदेश भेजें और हमसे जुड़ें इस कार्यक्रम में, और सुने अपनी पसंद के गीत। और हाँ, गीत सुनने के साथ साथ अपने आप अपने मन की बातें भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक हमने छोटा सा टॉपिक जो है वो लिया है, यादों का पिटारा। जी हाँ, यादों का पिटारा। आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा यादगार दिन या कोई ऐसी याद जो आप हमारे साथ, आप अपने अपनों के साथ शेयर करना चाहते हैं, या किसी को सामने से बोल नहीं पाए लेकिन उसे बताना चाहते हैं, तो उस याद को हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आप किसी को अपना गाना भी डेडिकेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो बस फटाफट से अपनी उंगलियां घुमाइए फोन्स पर, डेस्कटॉप पर, लैपटॉप्स पर, और टाइप कीजिए अपने संदेश, प्यारे प्यारे संदेश, और अपनी पसंद का गीत संगीत। फिलहाल खूबसूरत सा गाना जो चल रहा है, इसने आपको दे दिया है सिग्नल।

देखिए दोस्त, सबसे पहले ना मैं ये कहना चाहूंगी आप सभी से, एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है कि आप एक संदेश एक बार ही भेजें, उसे रिपीट ना करें ताकि दूसरों का भी नंबर आ सके, और हाँ हो सके तो रेलिवेंट जो संदेश है ना वो भेजें, ठीक है। ये थोड़ा होता है ना कि एक कार्यक्रम जो है हमारा उस के मुताबिक चलता है, और आपको सुनने में और इन्जॉय करने में और हमें इस कार्यक्रम को आप तक लाने में, पेश करने में बहुत मज़ा आता है। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ बी विद द प्रोग्राम, और बस उसी के साथ बने रहें, और जो बातें हम कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करें, और इसी के जो है ना फहरिस्त में जो है ना वो संदेश हमें मिलने शुरू हो चुके हैं। संदेश हमें मिला है सबसे पहले अब्बासी जी का, ये कहते हैं, अर्चना गुप्ता जी आज दिग्दर्शक अभिनेता प्रकाश थापा जी की जयंती है, सर इसके लिए तो ना एक पर्टिकुलर शो है, वो आपको भी पता है क्योंकि आप हमारे नियमित श्रोता हैं, तो ये संदेश जो है ना वो वहाँ पर ज़्यादा जस्टिफाई करता है। एनीवेज आपने हमारे इस कार्यक्रम में इस जानकारी को साझा किया, बहुत अच्छी बात है। अब ज़रा हमारी भी बात पर तवज्जो देते हुए अपनी यादों के पिटारे से निकाली एक यादगार पल, यादगार दिन, यादगार लम्हा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, हमें बताना चाहते हो, अपने अपनों को बताना चाहते हो। आपके साथ लिख रहे हैं ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी से, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन सुहान, अरजान अबान और समस्त अब्बासी परिवार। तो वाकई में ये हमारे नियमित श्रोता है और अक्सर टाइम टू टाइम हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं और संदेश भी भेजते हैं, थोड़ा सा रेलिवेंट रह जाता है वो भेज देंगे तो मज़ा आ जाएगा।

अगला संदेश हमें मिल रहा है ताज मोहम्मद जी का। ये कहते हैं, नमस्कार जी, आदाब। हमारा याद तो हमारा अपना कार्यक्रम याद रहता है जो कि 10-10 पर आता है। और इनके साथ है गुलाम साबिर राही, महराज जहान। ये लिख रहे हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से हमें भेज रहे हैं ये संदेश। वाकई में ये बहुत ज़रूरी काम है जो आप करते हैं, क्योंकि अगर आप ये काम ना करें तो हम आप तक और आप हम तक कैसे पहुंच पाएंगे जनाब।

बिल्कुल इसी तरीके से आप हमारे इस कार्यक्रम को सुनते रहें और अपने यादों के पिटारे से निकालें खूबसूरत खूबसूरत यादें और हम तक पहुंचाएं उन्हें ईमेल के जरिए। अगला संदेश हम ले रहे हैं धर्मेंद्र छीपा जी का,

ये कहते हैं आदरणीय मैडम मैडम अर्चना जी, यार इतना सारा मत आदरणीय वगैरह लिखा करें सर, आप बहुत आदरणीय हैं कि आप हमें संदेश भेज रहे हैं और ये कह रहे हैं बेहतरीन प्रस्तुति आप दे रहे हैं और बेहतरीन नगमे आप सुनवा रहे हैं, ये तो हमें मालूम है सर, हम अक्सर अच्छे वाले गाने अच्छी वाली बातें लेकर आते हैं और आप हमारे इस कार्यक्रम का आनंद उठा रहे हैं राजस्थान से, और ये कह रहे हैं कि राजस्थान में अभी भीषण गर्मी पड़ रही है और आपके गीतों की ठंडक पहुँच रही है। सिर्फ राजस्थान में गर्मी नहीं पड़ रही है सर, यहाँ दिल्ली में भी बड़ा बुरा हाल है। बाहर निकलती ना ऐसे लगता है हम लोग पराठा बन गए हैं, सिक गए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है गर्मी की, तो गर्मी तो ओवरऑल इंडिया में बहुत ज़बरदस्त पड़ रही है। आप लिख रहे हैं भोपालगढ़ राजस्थान से, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार इनके साथ हैं।

अगला संदेश ले लेते हैं हरजिंदर सिंह भाटिया जी का। ये कहते हैं अर्चना जी गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल सर, अभी कल ही मैं अमृतसर से आई हूँ और बहुत मज़ा आ गया वहाँ पे, और वाकई में बहुत ही डिवोशनल वाइब्स थी वहाँ की, बहुत अच्छा लगा वहाँ होकर आकर मुझे। और आज देखिए रात को 1 बजे आई हूँ और सुबह आपसे मिलने यहाँ आ चुकी हूँ मैं, और एकदम फ्रेश मूड के साथ। और वाकई में बहुत ही खूबसूरत संदेश ये लिख रहे हैं और हमारा रेलेवेंट है, मतलब हमारे सब्जेक्ट के रेलेवेंट है, टॉपिक के रेलेवेंट है। ये कहते हैं मुझे वो दिन हमेशा याद रहेगा जब मुझे बैंक की सर्विस के लिए संदेश आया था। ये लिख रहे हैं स्टेशन रोड जमशेदपुर से, साथ में एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया। देखा, ये हमारे बहुत ही समझदार वाले, बाकी मतलब सभी समझदार वाले हमारे श्रोता हैं, लेकिन इन्होंने फटाक से टॉपिक को पकड़ लिया और फटाक से एक खूबसूरत सी याद जो है ना हमारे साथ साझा कर दी। बस यही जज्बा मुझे चाहिए आप सभी श्रोताओं से। आप फटाफट भेजिए, रेलिवेंट भेजिए, मजा आएगा, आपकी बातें भी आएंगी और संदेश जो है ना देखिए कैसे फटाफट से शामिल होता है।

जी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद और मैं हूं आपके साथ आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना। लेकर आई है खूबसूरत से गीत और बहुत सारी बातें, और बातें जो है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पर हो रही है। आपका यादगार दिन, आपका यादगार पल कब था वो हमारे साथ शेयर कीजिए। अगला संदेश इसी टॉपिक पर है, तो ले रहे हैं सतीश अनेजा जी का अगला संदेश। ये कहते हैं, कुछ यादें हमेशा ताज़ा रखती हैं दिल को, दिल है जो सुकून भी देती है। इनका कहने का मतलब है कि कुछ यादें हमेशा ताज़ा रहती हैं जो दिल को सुकून भी देती है। ये बताते हैं कि 1995 में मेरे पाकिस्तान के दोस्त मुझे वाघा बॉर्डर पर मिलने आए। बात तो नहीं कर सकते थे, लेकिन 10 फीट की दूरी से एक दूसरे को देखते रहे। वो याद और वो मिलन आज भी चेहरे पे पूरे नूर बनकर इनको याद रहते हैं, इनके मतलब दिमाग में छाया हुआ है। मैं भी होकर आई हूँ, अभी 2 दिन पहले ही होकर आई हूँ वाघा बॉर्डर। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है वहाँ, बहुत भाईचारा होता है जो शो करते हैं पाकिस्तान के लोग भी और हम भी। बहुत खूबसूरत सी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। और आपने ये जो याद हमारे साथ साझा की है, ये बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि इंस्पिरेशनल बात है जो सब पर और सबको समझनी चाहिए। तो आप जो लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं चंडीगढ़ सिटी से, सतीश अनेजा जी का ये खूबसूरत सा संदेश हमें मिला है।

अगला संदेश हमें मिला है तुलसी मस्किन जी का। ये कहते हैं, अपनी यादों को हमेशा सुरक्षित रखें और अपने अच्छे दोस्तों में शेयर करें जिन पर आप भरोसा करते हो। किसी भी अनजान व्यक्ति को अपनी यादें शेयर ना करें। ये लिख रहे हैं शाहदरा बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, साथ में वीना मस्किन, चैतन्य मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशव खुराना। हाँ, होता है कभी कभी अपनी यादों को आप किसी सिक्योर बंदे के साथ शेयर करें, ट्रस्ट वर्दी बंदे के साथ शेयर करें, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि यादों का भी मिसयूज हो जाता है। तो ऐसा करने से थोड़ा सा बचे, अच्छी यादें हमेशा शेयर करें। जैसे हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, तो आप हमारे साथ अपनी यादें शेयर कर सकते हैं। तो शेयर कीजिए, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए।

अगला संदेश हमें मिला है अनिल मोहन जी का, ये कहते हैं नमस्कार अर्चना जी, यादों की हमारे जीवन में अहम भूमिका होती है और कुछ सुनहरी यादों को हम ताउम्र नहीं भूल पाते हैं और ऐसी ही सुनहरी पलों की यादों को हम आपसे साझा कर रहे हैं। उस दिन को हम कभी नहीं भूल पाते जिस दिन आकाशवाणी दिल्ली युववाणी से प्रथम स्वर परीक्षा में ही उत्तीर्ण हुआ और वो जो दिन जिस दिन मैंने अपनी पसंद के फिल्मी गीतों को महफिल कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत किया। बिल्कुल सही कहा, मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस ना यही था। मैंने भी युववाणी का जो है ना एक ऑडिशन क्लियर किया था और वहां पर ना अपनी पसंद के गाने बजाए थे, अपनी पसंद के। सोचिए जो कभी हम दूसरों के जरिए रेडियो टीवी पर सुनते देखते थे वो मौका मिला हमें युववाणी के जरिए अपने उस ख्वाब को पूरा करने का। आपके साथ भी ऐसा हो, मेरे साथ भी ऐसा हो, वी आर एक जैसे हैं सर। आप लिख रहे हैं पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से।

हमारे जो हीरो हैं उन्हें भी कुछ कुछ यादें आने लगी हैं, और बस ऐसी यादें आपके भी जहन में उठाएं और उन्हें इससे पहले कि वो बिसर जाएं आप उन्हें हम तक पहुंचा दीजिए। अगला संदेश लेते हैं कौशल्या देवांगन जी का, ये कहते हैं गुड मॉर्निंग, बचपन की वो मासूमियत, बारिश में भीगने का मजा और दादी नानी की कहानियां सब मन को सुकून देने वाली अनमोल धरोहर है। वो गुल्लक का बैंक, एंटीना ठीक करने का इंतजार और 25 पैसे वाली चूर्ण की खुशियां और आज भी यादों के पन्नों में जिंदा है। बिल्कुल ये बचपन मैंने भी देखा है, इससे थोड़ा सा और आगे बढ़कर जो है वो वाला बचपन में मैंने देखा है और वाकई में इससे पता चल जाएगा आपको मेरी उम्र का क्या है। कोई बात नहीं, पता चल जाए तो पता चल जाए, हमारी आवाज़ ही हमारी पहचान है तो बस आप उसी के जरिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आप लिख रहे हैं बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिम्पल देवांगन।

आप सुन रहे हैं आपकी पसंद, मैं हूं आपके साथ आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त। वक्त हो चुका है 10:00 ऑलमोस्ट 30 मिनट्स होने वाले हैं, कुछ सेकंड्स बाकी हैं। अगले संदेश की ओर बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। गुलाबदास मानिकपुरी जी का हमें संदेश मिल रहा है, कहते हैं अर्चना दीदी जी जब बार में टॉकीज में फिल्म देखने गया तो अंदर अंधेरा होने के कारण दरवाजे के सीढ़ी से गिर पड़ा और वो दिन आज भी जहन में रहता है। वाकई में एक ये भी एक याद ही हो गया, आप फर्स्ट टाइम किसी टॉकीज में गए, किसी हॉल में गए और अंधेरा होने के कारण वहां गिर गए। बड़ी फनी सी याद है लेकिन बहुत खूबसूरत याद है, इसको हमेशा याद रखेगा कि, और मतलब एक सबक भी मिल गया कि जब भी आप हॉल में जाएंगे ना वहाँ हमेशा आपको अंधेरा मिलेगा और अंधेरे में बड़ा संभल कर चलना होता है दोस्त, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप लिख रहे हैं लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी और उज्जवल दास मानिकपुरी।

अगला संदेश हमें मिला है सुधाकर जाडव जी का। ये कहते हैं, मैं सुख दुख के सब यादें जो है ना वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। बहुत खूबसूरत चीज है जो आप करते हैं। दोस्त एक ऐसा दोस्त इंसान होता है जो आपकी बातें इधर उधर नहीं स्प्रेड करता है, नहीं फैलाता है, और आपके सीक्रेट्स को हमेशा सीक्रेट रखता है। लेकिन वो होते हैं सीक्रेट्स, यादें जो आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, बेझिझक शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं। तो वो वाली बात भी जरा हमें बताइए। ये लिख रहे हैं ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल, प्रथमेश प्रणाली, सर्वत सानवी, कल्पना देशमुख।

अगला संदेश हमें मिल रहा है अहमद फूल वाले का। ये कहते हैं, आज की टॉपिक पे मुझे अपनी वो यादें ताज़ा हो गई जब हमारी बड़ी नवासी का जन्म हुआ था। तारीख 13 जुलाई 2011 की थी। उस दिन हमारे घर कई खुशियों की बहार आई थी और ये यादें आज भी मेरी आंखों के सामने आ जाती हैं। वाकई में एक बच्चे के जन्म की जो याद होती है वो हर किसी के लिए, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मौसा मौसी, जितने भी जिनकी भी पदवी उस बच्चे के जन्म से बढ़ती है ना दोस्त, तो वो हमेशा याद बन के आपके जहन में तरोताजा रहती है। आप लिख रहे हैं, बागवान मंजिल छोटी बलिया से साथ में है नूर आयशा अहमद, इकबाल अहमद, अखलाक अहमद, आमना आसमा, आशु जूही और सदफ आरजू बागवान।

अगला संदेश हमें मिला है संदीप मक्कर जी का। ये कहते हैं, मैडम हम भी इंतजार कर रहे थे जालंधर में, आप हमारे पास आएंगे, आप हमारे पास आए नहीं। सर मुझे पता होता ना कि आप मेरा इंतजार कर रहे हैं, डेफिनेटली आपके पास आती और आपसे मिलकर जरूर जाती, और आपको भी पता चल जाता हु एम आई एंड मुझे पता चल जाता हु आर यू। खैर आपने यादों से का जो जिक्र है वो नहीं किया। एनीवेज अगला संदेश भेजे तो यादों का जो है वो जिक्र हमारे साथ करें। आप लिख कहाँ से रहे हैं, आपने ये भी नहीं लिखा, जालंधर से, हाँ जालंधर से ही लिख रहे हैं आप, तो चलिए भेजिए अपना संदेश यादों से रिलेटेड

लेते हैं अगला संदेश। ये हमें भेजा है लखपत राय जी ने और ये कहते हैं, राम राम बेटा, दोस्तों के साथ गली में खेलना, मिट्टी में सनना सना, बारिशों में भीगना और गर्मियों की छुट्टियों की मीठी यादें, ये सीखने जिज्ञासा, नया कुछ जानने की चाह और निडर होकर दुनिया को देखने का समय होता है। वाकई में ये भी एक ऐसी याद होती है जब आप किसी भी जिम्मेदारी से परे होते हैं, किसी भी परेशानी से दूर होते हैं, कोई टेंशन नहीं कि कल क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, नो मैटर्स, कुछ मैटर नहीं करता। बस वो जो बचपन होता है उसमें जो यादें हम बनाते हैं ना दोस्त, वो जिंदगी भर याद रहती हैं। और इन यादों को कोशिश करिएगा कि आप जिस उम्र में हैं फिलहाल, उस उम्र में भी जी सके। अच्छा, ये लिख रहे हैं आनंद पर्वत दिल्ली से, साथ में इनके हैं वेद प्रकाश चौहान और सूबेदार अमर सिंह।

देखिए हमारे पास संदेश आए और उनमें शिकायती संदेश ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो एक रिवाज हो गया हमारे इस कार्यक्रम का कि भाई अच्छे अच्छे संदेशों के साथ जो है ना कुछ कुछ शिकायती संदेश भी आते रहते हैं। ऐसे एक संदेश हमें मिला है बोधराज खोरवाल जी का। ये कहते हैं हम रोज फरमाइश करते हैं पर शामिल ही नहीं होती है। जब भी हम पुराने श्रोता हैं, जबकि हम पुराने श्रोता हैं, ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? कुछ समझ नहीं आता, क्या करें? वो सर मैं बताती हूँ आपको क्या नहीं समझ में आया। आप शायद हमारा कार्यक्रम ध्यान से नहीं सुनते हैं, प्लीज़ माइंड मत करिएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से सुनते तो अभी हमने आप थी कौशल्या जी हैं जो आपके हैं आपके साथ में भेजते हैं उन सब के हमने शामिल करे। और अक्सर आप हमेशा शिकायतें ही भेजते हैं, आप रेलिवेंट मैसेज भेजिए तो सही, तब देखिए कैसे शामिल नहीं होता है। आप लिख रहे हैं उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल। जरा ध्यान से सुने, टॉपिक यादों पर है। अपनी जिंदगी का कोई यादगार पल, यादगार दिन हमारे साथ शेयर करें और फिर देखिए कैसे शामिल नहीं करते हम आपके इस कार्यक्रम को, आपके इस मैसेज को अपने इस कार्यक्रम में।

चलिए एक और शिकायत जो मेल है वो ले लेते हैं। ये दिलावर खान जी का हमें संदेश मिला है, कहते हैं हम तो मेल डाल डाल के थक गए, हमारा तो मेल ही शामिल नहीं हो रहा है। वैसे एक बात बताऊं, ये तरीका बहुत बढ़िया है अपने मेल शामिल करवाने का। आप शिकायतें भेज दें और फटाक से जो है ना आपका मेल शामिल हो जाता है। दोस्त ऐसा नहीं होता, आपका मेल शामिल ना हो ऐसा हो नहीं सकता। कभी कभी हो जाता है, बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं एकदम से, तो कहीं आपका मेल जो पीछे छूट जाता है। फिलहाल आपका मेल शामिल हो गया है। आप लिख रहे हैं रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू साथ में आपके हैं, तो आपका जो संदेश है ना वो शामिल हो गया है। और आप प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ कृपा करके कुछ रेलिवेंट सा भेजिए। याद तो आपकी लाइफ में भी रही होगी बहुत सारी खूबसूरत यादें, या कुछ ऐसी याद जिसे आप याद ना करना चाहते बट चाहते हैं कि वो सबको पता हो और वो याद कभी भी किसी की जिंदगी का हिस्सा ना बने। तो कुछ इस तरह की बातें जो है वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। फिर देखिए हम आपका मेल कैसे नहीं शामिल करेंगे।

ये देखिए, अभी मैंने इनको थोड़ा सा समझाया और एकदम से समझ गए, चुटकियों में समझ गए दिलावर खान जी, और इन्होंने पटाख से मेल भेज दिए। कहते हैं 2023 में हम एक बार अजमेर और पुष्कर गए थे, बहुत अच्छा लगा था, बहुत इंजॉय किया था। देखा कितना खूबसूरत वक्त था जो आपने बिताया और उस खूबसूरत लम्हे को हमारे साथ शेयर किया, और शेयर किया तो किया। आपका जो मेल है इस बार आज के दिन दो बार बैक टू बैक शामिल भी हो गया।

दिल ओले ओले करे, इससे पहले आप भेज दीजिए अपनी जो खूबसूरत यादें हैं ना हमारे पास, हमारे साथ शेयर कर लीजिए फटाफट से ipradiodelhi@gmail.com पर आप अपना खूबसूरत सा संदेश भेज सकते हैं। फिलहाल वक्त मैं बता देती हूँ, 10:42 और पूरे 25 सेकंड्स। आप हैं मेरे आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना गुप्ता के साथ। संदेशों की ओर बढ़ते हैं, लेते हैं फारूक अली खान जी का ये संदेश। ये कहते हैं, आदाब, यादें तो जिंदगी का हर पल यादें ही रहती हैं। वो दिन जब मैं 12/1923 आकाशवाणी संसद मार्ग पर जाकर काफ़ी आरजेज से इनकी मुलाकात हुई और मिलकर इनका जो दिल है वो खुश हो गया। सभी आरजेज लिखे चंद अल्फाज जो मेरी डायरी में कैद हैं वो गुजरे पल की आज भी याद हैं। ये लिख रहे हैं कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया ताहिरा। वाकई में सर, आई विश कि मैं भी आपसे मिल पाती, तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आपका दौरा यहाँ पर हो तो हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हम भी आपसे एक खूबसूरत सी मुलाकात कर सकें। और हाँ, ये खूबसूरत सा जो संदेश है वो भेजने के लिए थैंक यू सो मच।

अगला संदेश हमें मिल रहा है साहिल धर जी का, ये कहते हैं साहिल डार जी का, ये कहते हैं सॉरी अगर प्रोनंसिएशन में कुछ प्रॉब्लम हो तो। ये कहते हैं आदाब, बचपन की यादें जीवन का सबसे खूबसूरत और अनमोल खजाना होती है जो हमें हमेशा तनाव मुक्त और खुश रखती है। इस सुनहरे दौर में चिंता की कोई फिक्र नहीं होती, बस बारिश में कागज की कश्ती, मिट्टी के घरौंदे और दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा या कंचे खेलने का आनंद होता था। सोवरा श्री कश्मीर श्रीनगर से साहिल डार उर्फी जान ये संदेश हमें भेज रहे हैं। वाकई में बचपन की यादें तो लाइफ टाइम की यादें होती हैं। अब कुछ ऐसी यादें

बताइए ना जो आपको और भी ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि चाह कर भी आप उसे किसी के साथ शेयर करने से नहीं रोक पाते हैं. लाइक आपने फर्स्ट कब टॉप मारा था, फर्स्ट कब डिस्टिंक्शन पाई थी, या फिर कोई ऐसी अचीवमेंट जो आपने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम अचीव की हो.

अगला संदेश हमें मिल रहा है शीशपाल वर्धन जी का। ये कहते हैं, आरजे जी मेरी माँ ने मेरे दोनों हाथ पकड़ कुएं में लटका दिया था, गजब था। लेकिन ये बहुत डरावनी याद है दोस्त, आई होप आप इसको दोबारा से याद ना करना चाहें। कुएं में कोई किसी को कुएं लटकाता उल्टा? नहीं, ये बहुत डरावनी याद है, आप इसको प्लीज याद ना करें कभी भी, और कोशिश करें इसको भूल जाएं। कोई अच्छी सी खूबसूरत सी याद हमारे साथ शेयर करें। लेकिन ये भी बड़ी गजब की याद है कि आपको हाथ दोनों बांध के आपको उल्टा लटका दिए कुएं में, क्या बात है।

अगला संदेश हमें मिल रहा है बसंत कुमार सिन्हा जी का। ये कहते हैं, अर्चना मैडम नमस्कार, मैं पहली बार ट्रेन सवारी अपने भैया के साथ इन 1972 को किया था। इन्होंने कोलकाता आने के लिए अपने गांव से और पहली बार कोलकाता सिनेमा हॉल में पहली बार पर्दे पर फिल्म आरजू भैया के साथ देखी। अब भैया इस दुनिया में नहीं है लेकिन यादें बस रह गई हैं। ये लिख रहे हैं हमें दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शो अजय कुमार गुप्ता, रिमी तनुश्री गुप्ता, नन्हे मुन्ने अंबिका तनुश्री बेबी। और वाकई में कुछ ऐसी यादें होती हैं जो आप किसी खास इंसान के साथ बनाते हैं और जब वो इंसान इस दुनिया में नहीं रहता तो बस वो यादें ही रहती हैं उस इंसान के तौर पर। और इस खूबसूरत याद को हमेशा सजो के रखिएगा दोस्त। इसी तरीके से

नासिर शेख जी का अगला संदेश हमें मिल रहा है। ये कहते हैं, आदाब नमस्कार। कुछ पल कुछ याद ऐसी होती हैं जो सदा के लिए याद रहती हैं। बात 1991 की है। जाने माने श्रोता स्वर्गीय मास्टर आरडी फंड जी मुझे मिलने मेरे घर आए थे और इस याद आए थे और इसके बाद पूरा संदेश इन्होंने नहीं लिखा है। हाँ, आए थे और रात भर हमारी बहुत सारी बातें हुई। जो पल उनकी आत्मीयता मुझे आज भी याद है। वाकई में किसी ऐसे इंसान से मुलाकात आपके लाइफ का एक बहुत ही यादगार लम्हा बन जाती है जिसे आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं। और आप लिखते कहाँ से हैं? फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से। साथ में है नाजिया नसीर साजिद शाहिद।

है या नहीं। अब याद कर लीजिए, इस याद को रख लीजिए या नोट करके कहीं पे कि आज आपने आज की तारीख में आज के इस कार्यक्रम में इस टाइम पर हमें मैसेज किया है और ये जो मैसेज है वो हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो चुका है। ये भी आपकी एक बहुत ही खूबसूरत सी जो है ना वो याद हमारे जरिए बन चुकी है।

अगला संदेश प्रकाश वर्मा जी का हमें मिल रहा है। ये कहते हैं, गांव की यादें दिल के बहुत करीब होती हैं। खेतों की महक, पेड़ों की छांव और बचपन की मासूम शरारतें, ये वो अनमोल पल हैं जो आज भी हमें सुकून देते हैं। ये लिख रहे हैं कहां से, छत्तीसगढ़ पलारी से, साथ में निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।

अगला संदेश हमें मिला है रोशन देवांगन जी का। ये कहते हैं, सन 2024 में 20 अगस्त को दिल्ली में श्रोता अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसमें दिल्ली और महाराष्ट्र के श्रोताओं से मिलने का मौका इन्हें मिला। सुरेंद्र खुराना, मोहम्मद सईद अब्बासी, अभिजीत गवानकर, शाहजी बोर्ड के और दिल्ली के कुछ अनाउंसर से मिलने का मौका मिला। और वो दिन इन्हें आज भी बहुत अच्छे से याद है। लिख रहे हैं बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन। वाकई में दोस्त, अगर हमसे भी मिलने का मौका मिलता तो ये जो मुलाकात है ना, इसमें चार चांद लग जाते। नेक्स्ट टाइम जब आप आए दिल्ली तो ज़रूर हमें बताएं, हम भी आपसे मिलेंगे और आप भी हमसे ज़रूर मिले। मिले बगैर मत जाइएगा प्लीज़।

अगला संदेश हमें मिल रहा है टीडी मल्होत्रा जी का, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। साथ में इनके हैं ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। ये कहते हैं, देर आर ऑलवेज न्यूमरस मोमेंट्स इन वन्स लाइफ सच एज फर्स्ट डे इन कॉलेज, वेडिंग डे एक्सेट्रा। आई रिमेम्बर द फर्स्ट डे ऑफ माई कॉलेज एज वेल एज फर्स्ट डे ऑफ माई जॉब। सिंस बोथ दीज डेज आर रिमेम्बरेंस as they were the way to the wedding day। वाकई में मैं वही बोल रही थी कि बचपन की यादें तो हमेशा हमारे साथ रहती हैं, लेकिन कोई खास दिन, शादी का दिन, कोई आपकी किसी खास अचीवमेंट का दिन, कॉलेज का फर्स्ट डे, जॉब का फर्स्ट डे, किसी अपॉइंटमेंट लेटर को रिसीव करने का डे, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। कोई ऐसी खुशखबरी आपको मिली हो तो वो जो है ना याद, वो ऐसी याद होती है जो आपके जहन में काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है। आप कहते रहे यार फर्स्ट जॉब जब मुझे मिली थी तो वो जो मेरे को ऑफर हुई थी या उसका अपॉइंटमेंट लेटर जब मेरे हाथ में आया तो आई वॉज सो हैप्पी, वो भूले से नहीं भूलता। या फिर बोर्ड्स एग्जाम्स में हमने टॉप किया, डिस्टिंक्शंस पाई, कॉलेज का फर्स्ट डे होता है, रैगिंग का डे होता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब यादें होती हैं जो आप लाइफ टाइम याद रखते हैं। थैंक यू सो मच इस खूबसूरत से संदेश जी का को भेजने का हमें।

जी हमारे कुछ श्रोता हैं वो भी नाराज हैं, ये कहते हैं पंकज शर्मा जी कहते हैं दीदी अर्चना जी हम भी लाइन में लगे हैं जी, एनी सॉन्ग मॉडल टाउन करनाल से सा सुधीर नूतन किरण ठाकुर जग्गी दुआ संदीप गुगलानी जगमोहन प्रजापति प्रतिभा शर्मा लीजिए, आपकी शिकायत दूर हो गई है, आपका नाम आपका मेल जो है वो हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो चुका है।

अगला संदेश हमें मिला बब्बल 363 का। ये कहते हैं, दीदी जी नमस्कार। दीदी जी, प्रोग्राम जो है ना वो समाप्ति की ओर है, लाइव सुन रहे हैं। कृपया कोई भी गीत में हमें शामिल करें, उम्मीद है शामिल किया जाएगा। बिल्कुल शामिल कर लिया मैंने आपके संदेश को। मोहाली पंजाब से आप लिख रहे हैं, आपके साथ है ओम प्रकाश मल्होत्रा जी।

0: चलिए जल्दी जल्दी और संदेश जो है ना वो शामिल कर लेते हैं। फारूक अली खान जी का हम ऑलरेडी ले चुके हैं और इसके बाद संतोष खारसी जी का हमें संदेश मिल रहा है, रुपेश संघाई जी का हमें संदेश मिल रहा है, रामेश्वर जी का संदेश मिला है, भूषण खेरा जी का हमें संदेश मिला है और राघव बघेल जी का संदेश जो हमें मिल रहा है, सुदर्शन मुखी जी का संदेश हमें मिला है और ये कहते क्या है ये बताते हैं। अपनी पसंद के गीत सुनने के लिए हमें 10-14 पर मेल भेजी है लेकिन अभी तक आपने हमारी पसंद का गीत नहीं सुनवाया। ये सब आप ही की पसंद के गीत चल रहे हैं दोस्तों, और रही मेल शामिल करने की बात वो भी मैंने कर ली है, सो आई होप आप अब आप नाराज नहीं होंगे। मांगे राम जी का संदेश हमें मिला है, कहते हैं श्रोताओं की ईमेल शामिल किया, बहुत बहुत बधाई, हमारी ईमेल याद करते करते रह गए। नहीं, बिल्कुल याद किया हमने और शामिल भी कर लिया, ये भी तो एक याद करना है सभी श्रोताओं के प्रेम किया, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी गीत सुनवाए जी, बिल्कुल ये भी एक याद है जिसे हमने याद किया, आपके संदेशों को हमने अपने इस कार्यक्रम में शामिल किया।
1: तो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागी।

जी हाँ, वक्त हो चुका है 10:57 और पूरे 34 सेकेंड, और इसी खूबसूरत के से गीत के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त अपने खूबसूरत संदेश हम तक पहुँचाने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, और हमें सुनने के लिए आपको जो आपने पेशेंस के साथ हमें सुना उसके लिए भी बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। बस इसी तरीके से अपना प्यार जो हमारे साथ शेयर करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे इन खूबसूरत कार्यक्रमों के ज़रिए, और मुझे दीजिए इजाज़त इसी वादे के साथ कि अगली बार फिर से कोई अच्छा सा टॉपिक लेकर अच्छे से ढेर सारे गीतों के साथ जल्द हाजिर होगी आपकी आज की ये रेडियो होस्ट एंड दोस्त। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। टेक केयर, बाय बाय।

इसी गीत के साथ आपकी पसंद कार्यक्रम यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के ठीक 11 बजने को है, अब से थोड़ी ही देर में आप

0: विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं, जहां प्रवासी भारतीय समुदाय ने उनका शानदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांसीसी व्यापार जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें भी करेंगे। इससे पहले कल G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ के देशों की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए डिजिटल तकनीक तक सुरक्षित पहुंच से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। इन घोषणाओं का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओमकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे से होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने दोनों देशों के बीच शत्रुता समाप्त करने के लिए 14 सूत्री शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने भी समझौते पर हस्ताक्षर की पुष्टि की है। भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने क्रोएशिया के खिलाफ 4-2 की जीत के साथ ग्रुप एल में अपने अभियान की शुरुआत की। ग्रुप के पहले मैच में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 की बराबरी पर रहा। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा विश्व कप मैच में शुरुआती लाइनअप में जगह बनाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सत्य निष्ठा से धन प्राप्त होता है और निस्वार्थ सेवा से प्रसिद्धि मिलती है। निरंतर अभ्यास से ज्ञान प्राप्त होता है और कर्म से बुद्धिमत्ता आती है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत के सुभाषितम को साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महान योद्धा रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई के वीर नेतृत्व ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की। घरेलू शेयर बाजार आज शुरुआती कारोबार में लगभग सपाट कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स करीब 60 अंक गिरकर 77,096 पर और निफ्टी मामूली गिरावट के साथ 24,077 के आसपास कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: स्वागत अभिनंदन। श्रोता मित्रों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लोक संगीत किसी विशेष क्षेत्र, संस्कृति या समुदाय के आम जनजीवन से जुड़ा पारंपरिक संगीत होता है और ये प्रायः लिखित रूप से लगभग सहेज कर नहीं रखा जाता है बल्कि सुनकर और गाकर याद रखा जाता है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। लोक संगीत में देश के विभिन्न क्षेत्रों के त्योहारों, ऋतुओं, जन्म विवाह, धार्मिक आयोजन और दैनिक जीवन के सुख दुख की अभिव्यक्ति होती है। इसमें पारंपरिक और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ढोल, नगाड़ा, मंजीरा, सारंगी, एकतारा जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा का प्रसिद्ध लोक संगीत रागिनी और इसे प्रस्तुत करेंगे सत्येंद्र कुमार और साथी। गायन में आपका सहयोग करेंगे जसबीर सिंह, ब्रजेश कुमार, अमित यादव और आपके बोलों को संगीत से सजाएंगे हारमोनियम पर बीर सिंह, ढोलक पर लेखराज, नगाड़े पर बबलू, बेंजो पर लोकेश और ऑक्टोपैड पर देवेंद्र जी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह कार्यक्रम स्वरांजलि, इंद्रप्रस्थ और आकाशवाणी दिल्ली के यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। तो आइए आनंद लेते हैं लोक संगीत रागिनी का। शुरुआत करते हैं भक्ति रचना से, ब्रह्म रूप भगवान चरण से। ये बोल हैं गायक सत्येंद्र कुमार।
1: सभी स्वरांजलि कार्यक्रम के माध्यम से सुनने वाले गीत संगीत प्रेमियों को मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी को राम राम प्रणाम करता हूँ। सभी को राम राम। आइए गंगा जी के विषय पर एक रागिनी मैं आपके बीच प्रस्तुत करता हूँ। कवि की कल्पना है और क्या बताया, ऐसे बताते हैं कि नरसी सेठ की घरवाली नरसी जी को बता रही हैं और कहती हैं कि पियाजी चलिए गंगा जी नहा करके आते हैं। तो नरसी सेठ कहते हैं कि मुझे तो गंगा के महत्व के बारे में नहीं पता। नरसी सेठ की घरवाली गंगा के विषय में क्या कह रही है और कवि की कलम क्या लिख रही है, आइए इस रागिनी के माध्यम से गंगा माँ के विषय पर।

स्वरांजलि कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं रागिनी, और अब आइए सुनते हैं 57 सावित्री के किस्से की रागिनी। कंगले से तू व्याह रचावे, गायक हैं सत्येंद्र कुमार।

आइए ये रागिनी सत्यवान सावित्री के किस्से की, जिस समय सावित्री वनों में जाकर के सत्यवान से कुछ अपने मन की बात कहती है और सत्यवान उस बात को स्वीकार न करते हुए जवाब में क्या कहता है।

स्वरांजलि कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल और आकाशवाणी दिल्ली के यूट्यूब चैनल पर भी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये अगली रागिनी, दो के बदले चार मांग ले, गायक जयवीर।

यह रागनी उस समय की है जब रानी केकई राजा दशरथ से अपने पुराने दो वरदान मांगने के लिए पहुंच जाती है। तो राजा दशरथ केकई से किस

अति सुंदर प्रस्तुति और स्वरांजलि कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं चला सुदामा डूब पुराने ख्याल में, ये रागिनी सत्येंद्र कुमार से।

ये प्रेमी श्रोताओं, ये रागनी सुदामा और कृष्ण के किस्से से कि जिस समय सुदामा जी अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने के लिए जा रहे होते हैं, तो रास्ते में अपने मन में किस किस तरह की बातों को सोचते जा रहे हैं कि मेरे बचपन का मित्र है, इतने दिन बाद मिलूंगा, कहीं पहचानेगा या ना पहचानेगा, तो अपने मन में विचार लगाते हुए जा रहे हैं। आइए, कवि ने इस रागनी के माध्यम से क्या लिखा।

आइए हरियाणा के सूर्य कवि शिरोमणि कवि दादा लक्ष्मी चंद की कलम से लिखा हुआ यह भजन आपके बीच में, कि उस परमात्मा की माया का आज तक किसी को पता नहीं चला, वो पल में क्या से क्या कर दे, सुनेंगे भजन के माध्यम से।

आइए ये रागनी आपके बीच में महाभारत के इतिहास से उस वक्त की बात के जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो कृष्ण भगवान अर्जुन को स्वर्ग लोक में ले जाते हैं, अभिमन्यु की आत्मा को सामने खड़ा कर देते हैं। अर्जुन अपने बेटे अभिमन्यु को किस तरह से पुकारता है और अभिमन्यु क्या जवाब देता है सुनेंगे रागनी के मध्य।

और यह है आज के इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के पूछ धोबी के। ये सरवर नीर के किसे की रागिनी है, गायक हैं सत्येंद्र कुमार।

आइए सजनों, एक रागनी सरवर और मीर के किस्से से मौका उस वक्त का कि जिस समय सरवर और मीर दोनों घाट पे खड़े रह जाते हैं। ऐसा बताते हैं कि राजा हम दरिया में बह जाते हैं। जब रोते रोते आवाज धोबी के कानों तक पहुंचती है, सुबह जब धोबी घाट पे कपड़े धोने के लिए आता है तो उनसे उनके रोने का कारण पूछता है, तो दोनों बच्चे सरवर और मीर अपनी व्यथा बताते हुए क्या लिखा इस रागनी के माध्यम से।

0: तो आज स्वरांजलि कार्यक्रम में सत्येंद्र कुमार और साथी प्रस्तुत कर रहे थे लोक संगीत रागिनी। गायन में सहयोग कर रहे थे जयवीर सिंह, ब्रिजेश कुमार और अमित यादव। और आपके गीतों को संगीत से सजाया हारमोनियम पर बीर सिंह, ढोलक पर लेखराज, नगाड़े पर बबलू, बैंजो पर लोकेश और ऑक्टोपैड पर देवेंद्र। और आज का ये स्वरांजलि कार्यक्रम आप तक पहुँच रहा था अमित कुमार और गौरव के तकनीकी सहयोग से। कार्यक्रम का संयोजन किया शिव नंदन लाल ने और इस कार्यक्रम को।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी

0: जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर मिस्ताल एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंज के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ रोदाल सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठकें भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित करती है। आकाशवाणी समाचार के लिए पेरिस, फ्रांस से महेश सोपड़े।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर हैं। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नागपुर के अंबा झारी स्थित आयुध कारखाने में यंत्र इंडिया लिमिटेड की 10,000 टन क्षमता वाली एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस की आधारशिला रखेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे महत्वपूर्ण एल्यूमिनियम एक्सट्रूडेड घटकों के आयात पर निर्भरता कम होगी और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाने से हुई। भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराया। इसके अलावा भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

घर आंगन FM गोल्ड 100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं घर आंगन कार्यक्रम और घर आंगन कार्यक्रम में मैं आपकी दोस्त अमित कमल आपका स्वागत करती हूं। कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार। और दोस्तों इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर। साथ ही आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर भी। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जब तक जीना है तब तक सीखना है, अनुभव से बड़ा शिक्षक इस दुनिया में कोई नहीं है। तो आप भी अपने अनुभव से सीखिए और तरक्की कीजिए। और ये जो कार्यक्रम है घर आंगन कार्यक्रम, जिसमें हम आपके घर की और आपके हित की बात करते हैं।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म चरित्रहीन से। घर आंगन कार्यक्रम सुन रहे हैं आप, और घर आंगन कार्यक्रम में हम रोजाना आपके लिए योग से जुड़ी हुई बातें लेकर आ रहे हैं, क्योंकि

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस करीब ही है और दोस्तों ऑफिस में काम कर करके हम थक जाते हैं पर समझ में नहीं आता कि हम समय कैसे निकालें। उसी पर आज हम बात करेंगे कि आप ऑफिस में योगा कैसे कर सकते हैं। ऑफिस में योगा करना ऊर्जा बढ़ाने, कमर दर्द या कंधे के दर्द से राहत पाने का एक फायदेमंद तरीका हो सकता है। जब आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं और थोड़ा आराम करना चाहते हैं तो आप वहीं बैठकर कई तरह के योगासन कर सकते हैं। आज हम आपके साथ कुछ योगासन साझा कर रहे हैं जो आपके ऑफिस में काम करने वालों के लिए एकदम सही हैं, ताकि वो आप अपने ब्रेक टाइम का भरपूर फायदा उठा सकें। सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको कपड़े बदलने की भी ज़रूरत नहीं है। जो आपने ऑफिस के कपड़े पहने हैं उन्हीं में आप ये आसन कर सकते हैं। और ऑफिस में किए जाने वाले इन योगासन में से किसी को भी करने से पहले दोस्तों कुछ सेकंड के लिए आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। आप इसके लिए कर सकते हैं बैठे बैठे ट्विस्ट। जी हाँ, डेस्क पर बैठकर योगाभ्यास करने का एक बेहतरीन तरीका क्या है दोस्तों, एक साधारण बैठे हुए ट्विस्ट से शुरुआत करें। सबसे पहले आपको कुर्सी पर पीठ टिकाकर बैठना है। सांस लेते हुए अपने हाथों को सिर के ऊपर उठाएं और सांस लेते हुए दाईं ओर मुड़ें। सहारा लेने के लिए दोनों हाथों को दाईं ओर की ओर आर्म रेस्ट पर रखें। अगर कुर्सी में आर्म रेस्ट नहीं है तो आप दाहिना हाथ सीट पर अपने कूल्हे के पीछे रखें और बायां हाथ अपनी दाहिनी जांघ पर रखें। हर सांस के साथ अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें जिससे आपका शरीर आसन में और गहराई तक खिंच सके। प्रत्येक तरफ 60 सेकंड तक आसन को रोकें और फिर दूसरी तरफ दोहराएं। और एक और आसन है दोस्तों, कंधे को ऊपर नीचे करना। सांस लेते समय अपने कंधों को कानों की ओर ऊपर उठाएं और फिर नीचे लेकर जाएं। सांस छोड़ते समय उन्हें नीचे और आगे की ओर ले जाएं। इस क्रिया को इसी दिशा में दो बार दोहराएं और फिर विपरीत दिशा में करें। बैठकर पीठ झुकाने वाला आसन भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए टीम के साथ आपको कई बार ऐसा होता है कि लर्निंग सेशन के बाद थोड़ी बदहजमी महसूस होती है, तो फैन पोज पेट को हल्का सा स्ट्रेच देता है। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। अपनी कुर्सी के अगले किनारे पर बैठें और अपने पैरों को फर्श पर रख लें। अपनी पीठ कुर्सी से ऊपर उठी हुई होनी चाहिए और आपकी रीढ़ सीधी होनी चाहिए, मुड़ी हुई नहीं। आगे की ओर झुकें और अपनी बाहों को पीछे की ओर ले जाकर कुर्सी को पकड़ लें। अपनी कोहनियों को यथासंभव सीधा करने का प्रयास करें। तो है ना ये आसान से आसन जिन्हें आप ऑफिस में कर सकते हैं।

0: हेमलता की आवाज में ये गीत आपने सुना, आप तो ऐसे ना थे। घनांगन कार्यक्रम सुन रहे हैं आप।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आप और दोस्तों, भारत की आज़ादी की तारीख 15 अगस्त सन 1947 है, लेकिन आज़ाद भारत का एक हिस्सा ऐसा भी था जहां आज़ादी के बाद भी कई बरस तक विदेशियों का शासन रहा और इसे आज़ाद होने में 14 बरस और लगे। ये हिस्सा था देश का तटीय इलाका गोवा, जो उस समय पुर्तगालियों के कब्जे में था। दरअसल सन 1946 में जब ये साफ हो गया कि अंग्रेज अब भारत में अधिक समय तक अपना राज शासन नहीं चला पाएंगे, तब राष्ट्रीय नेता ये मानकर चल रहे थे कि अंग्रेजों के साथ साथ पुर्तगाली भी गोवा छोड़कर चले जाएंगे। हालांकि स्वतंत्रता सेनानी एवं समाजवादी विचारधारा में यकीन रखने वाले राम मनोहर लोहिया इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे। यही वजह है कि लोहिया ने 18 जून सन 1946 को गोवा पहुंचकर पुर्तगालियों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में हजारों गोवा वासियों ने शामिल हुए और आज़ादी के लिए उन्होंने संघर्ष किया। हालांकि कई साल के संघर्ष के बाद गोवा को सन 1961 में आज़ादी मिली। 18 जून को गोवा की आज़ादी के लिए आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी वजह से हर साल 18 जून को गोवा क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आज है गोवा क्रांति दिवस।

सन 1971 में आई फिल्म पराया धन से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। दोस्तों, घर आंगन कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे डेज ऑफ द डे की और उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत में अक्सर लोग पिकनिक पर जाना पसंद करते हैं और प्रकृति के बीचों बीच बैठकर उस समय का आनंद उठाते हैं। इतना ही नहीं, अपने साथ बहुत सारे आउटडोर गेम्स भी लेकर जाते हैं। करीब एक सप्ताह पहले ही सभी जोरों शोरों से इसकी तैयारी करते हैं, पर आपको पता है इसके लिए भी एक खास दिन है जो है आज यानी 18 जून को। जी हाँ दोस्तों, 18 जून को हर साल विश्व पिकनिक दिवस मनाया जाता है और पिकनिक का नाम सुनते ही बच्चों और बड़ों के चेहरे पर बहुत सी बड़ी सी स्माइल आ जाती है। लेकिन एक सवाल जरूर सबके मन में आता है, वो ये कि पिकनिक शब्द आया कहाँ से। दोस्तों, कहा जाता है कि पिकनिक शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति के बीच में बैठकर भोजन या नाश्ता करना। ऐसा भी कहा जाता है कि फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद ही ये ट्रेंड काफ़ी पॉपुलर हुआ और पूरी दुनिया में इसे अपना लिया गया। आधुनिक पिकनिक का श्रेय फ्रांसीसियों को दिया जाता है, लेकिन वैश्वीकरण और व्यक्तिगत संस्कृतियों का भी इस पर व्यापक असर हुआ और लोकप्रियता भी हुई। जैसे जैसे पिकनिक की अवधारणा फैली, विभिन्न स्थानों पर अनेकों परंपराएं विकसित हुईं। विश्व भर में शायद ही कोई ऐसी संस्कृति हो जो अपने तरीके से पिकनिक ना मनाती हो। और पिकनिक की इतनी अच्छी सी जानकारी के साथ आपके लिए है एक प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज है आशा जी, दिलराज कौर व साथियों की। फिल्म का नाम है सत्य पे सत्ता।

एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम घर आंगन, और घर आंगन में घर के सभी विषयों पर बात हो और बच्चों पर बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, मेरठ के मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश पंजीकरण 10 जून से शुरू हो चुका है, जिसमें लगभग 350 छात्रों को प्रवेश देने का लक्ष्य रखा गया है। यूनिवर्सिटी भारतीय सेना के साथ मिलकर घुड़सवारी में एक वर्षीय पीजी डिप्लोमा कोर्स भी इस बार शुरू कर रही है। ये देश में अपनी तरह का पहला कोर्स होगा। विश्वविद्यालय ने अपना प्रवेश प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया है और इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। और आपको बता दें दोस्तों, आवेदन की अंतिम तिथि 10 जुलाई निर्धारित की गई है। इस बार यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी बड़ी राहत देते हुए विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेश की व्यवस्था की है। इसके साथ ही स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को शैक्षणिक शुल्क में 100% तक छूट देने का प्रावधान भी रखा गया है। खेल यूनिवर्सिटी की ओर से पहली बार सेना के घुड़सवारों को भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे। घुड़सवारी में प्रवेश और प्रशिक्षण के मानक सेना के अनुरूप ही होंगे। और आपको बता दें, राष्ट्रीय पदक विजेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य उच्च स्तरीय प्रशिक्षकों और विशेषज्ञों को तैयार करना है। ये पाठ्यक्रम राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। आवेदन करने के बाद यहाँ संभावित रूप से दोस्तों 20 जुलाई से 30 जुलाई के बीच फिजिकल फिटनेस टेस्ट आयोजित किए जाएंगे, जबकि अंतिम मेरिट सूची अगस्त में जारी की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी अधिक जानकारी और ऑनलाइन आवेदन के लिए यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट sportsuniup.com पर विजिट कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, sportsuniup.com।

लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत आपने सुना, मेरे हमदम मेरे दोस्त से। दोस्तों, हौसले बुलंद हों और मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो मुश्किलें भी रास्ता छोड़ देती हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की पहचान बन चुकी लीला खटेक आज आत्मनिर्भरता की एक मिसाल हैं। पिछले 25-26 सालों से उनकी उसी जगह पर फलों की दुकान लगाने वाली लीला ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो समाज की हर महिला को प्रेरित करता है।

समय था जब लीला के सामने परिवार का पालन पोषण और दो वक्त की रोटी का बड़ा संकट था। उन्होंने बेहद कम लागत के साथ फ्रूट बेचना शुरू किया, लेकिन उनकी मेहनत और सही समय पर मिली सरकारी मदद ने उनकी जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल दी। लीला खटी की इस कामयाबी के पीछे उनकी कड़ी मेहनत के साथ साथ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM का बड़ा योगदान रहा। लीला क्षेत्र की 10 महिलाओं के साथ मिलकर मधुर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी। इस समूह के जरिए उन्हें बैंक से आर्थिक मदद मिलने शुरू हुई। लीला को शुरुआत में बैंक से बहुत छोटी राशि मिली। पहले 7,000 रुपये मिले, फिर 30,000 और फिर 60,000 रुपए की मदद मिली। इसके बाद धीरे धीरे ये मदद 8,00,000 रुपए तक पहुंच गई। दोस्तों, नियम ये है कि आप जैसे जैसे ईमानदारी से लोन की किश्त जमा करते जाते हैं, आपका क्रेडिट बढ़ता जाता है और बैंक आगे और भी मदद करता है। फलों के इस कारोबार और बैंक से मिली मदद के बूते लीला ने न सिर्फ आज़ादी पाई बल्कि एक माँ के रूप में अपने सारे कर्तव्यों को निभाया। उन्होंने अकेले अपने दम पर अपने 5 बच्चों की परवरिश की। आज उनके बच्चे सेटल हैं और फल बेचकर ही लीला ने अपना खुद का घर और मकान भी बनवाया है। उम्र के इस पड़ाव पर जब लीला को ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ती, लीला की ये कहानी संदेश देती है कि उम्र की कोई सीमा नहीं होती। अगर जज्बा हो तो आप किसी भी उम्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

आशा जी की आवाज में ये गीत आपने सुना खुशबू फिल्म से। दोस्तों, एक समय था जब छुट्टियां शुरू होते ही सभी को नानी दादी के घर जाने की बड़ी दिलचस्पी होती थी। जैसे जैसे समय बदला, इसमें भी तकनीक ने अपनी

आशा जी की आवाज में ये गीत आपने सुना खुशबू फिल्म से। दोस्तों, एक समय था जब छुट्टियां शुरू होते ही सभी को नानी दादी के घर जाने की बड़ी दिलचस्पी होती थी। जैसे जैसे समय बदला, इसमें भी तकनीक ने अपनी जगह बना ली। जी हाँ दोस्तों, आजकल की छुट्टियों का ट्रेंड जो है तेजी से बदल रहा है। पारंपरिक रूप से नानी दादी के घर बिताए जाने वाली गर्मियों की छुट्टियों की जगह अब बच्चे AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग और रोबोटिक्स जैसे नए जमाने के स्किल्स सीखने जैसे कैंप्स में जाना पसंद करते हैं। माता पिता भी बच्चों को रचनात्मक और भविष्य के लिए तैयार करने वाले समर कैंप्स में भेजना पसंद कर रहे हैं। और इस बदलते ट्रेंड के प्रमुख कारण है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे तकनीकी रूप से मजबूत हों, ताकि वो आने वाले समय में तकनीक की दुनिया में पीछे ना रहें। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है दोस्तों कि कोडिंग और रोबोटिक्स से बच्चों की तार्किक क्षमता यानी लॉजिकल थिंकिंग और समस्या सुलझाने का जो कौशल है वो बढ़ता है। इसलिए भी माता पिता बच्चों को इन कैंप्स में भेजना ज़्यादा पसंद करते हैं। और साथ ही माता पिता चाहते हैं कि बच्चे मोबाइल पर गेम खेलने या TV देखने की बजाय कुछ नया और प्रोडक्टिव सीखें, जिससे वो उनके भविष्य में काम भी आए। दोस्तों, इन कैंप्स में बच्चे खुद से वीडियो गेम, वेबसाइट या छोटे रोबोट्स बनाना सीखते हैं और कैंप के आखिर में इन्हें सर्टिफिकेट भी मिलता है जो उनके बायोडाटा और भविष्य के लिए काम आता है। है ना फायदे का सौदा।

रहे कंटेनर या शीशी कांच की होनी चाहिए ताकि लौंग के सभी पोषक तत्व जेल में आ जाएं। 24 या 48 घंटों बाद लौंग को इसमें से बाहर निकाल लें और अब आपका मॉइस्चराइजर तैयार है। इसे इस्तेमाल करने के लिए रात को सोने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से धो लें। अब इस मॉइस्चराइजर को थोड़ा सा हाथ पर लेकर चेहरे और गर्दन की अच्छे से मसाज करें और उसे रात भर लगा रहने दें और सुबह उठकर सामान्य पानी से चेहरा धो लें। और दोस्तों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है हमें ज़रूर बताएं। नोट कर सकते हैं आप हमारा मेल आईडी fmgoldga@gmail.com। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतज़ार।

मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। घर आंगन कार्यक्रम में हर चीज की बात हो और आपकी सुंदरता की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। दोस्तों आज हम आपको सिखाएंगे घर पर लौंग का मॉइस्चराइजर बनाना। जी हाँ, लौंग मॉइस्चराइजर बनाने के लिए आप जो है बताने से पहले उसके फायदे आपको बता देते हैं। लौंग मॉइस्चराइजर मुहासों, दाग धब्बों और झुर्रियों को दूर करने के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक उपाय है। इसे बनाने का सबसे आसान और असरदार जो तरीका है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसके लिए एक छोटे बाउल में एलोवेरा जेल और गुलाब जल को अच्छी तरह मिला लें। अब इसमें 6 या 8 लौंग को साबुत डाल दें और इसे अच्छे से मिलाएं और इसमें 1 विटामिन ई का कैप्सूल निचोड़ लें। फिर इसे किसी शीशी या एयरटाइट कंटेनर में भरकर 24 से 48 घंटे के लिए रख दें। ध्यान

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे हैं हाथ की सफाई फिल्म से। और स्टूडियो की घड़ी हमें इशारा कर रही है आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो चला है। तो मेल आईडी एक बार फिर से नोट करें fmgoldga@gmail.com। तो हमें रहेगा आपके प्यारे प्यारे संदेशों का इंतज़ार। इसी के साथ घर आंगन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: और आंगन।
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का ये सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
1: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सेंट गोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चर

0: और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठकें भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित करती है। आकाशवाणी समाचार के लिए पेरिस, फ्रांस से महेश सोपड़े।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में 26,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और अन्य काटने के उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों के उपयोग से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर कोई अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकलपीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 1:10 हो रहे हैं और ये वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम एक ही फिल्म से का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का नमस्कार और स्वागत है आप सबका आज के इस प्रोग्राम में।

श्रोताओं, भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी हैं जो सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक युग बन जाती है। 1960 में रिलीज हुई मुगले आजम ऐसी ही एक फिल्म है जिसने भारतीय सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन के आसिफ ने किया, अमन कमल

माल अमरोही, वजाहत मिर्ज़ा, एहसान रिजवी और के आसिफ की लिखी इस कहानी ने सलीम और अनारकली के प्रेम को ऐसे अंदाज में पर्दे पर लेकर आई कि आज भी इसका जिक्र होते ही फिल्म की यादें ताज़ा हो जाती हैं। एक तरफ प्रेम, दूसरी तरफ सत्ता और स्वाभिमान का संघर्ष, यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी रही। रिलीज़ के इतने वर्षों बाद भी मुगले आज़म का जादू कम नहीं हुआ। इस फिल्म की भव्यता, कॉस्ट्यूम्स, शानदार संवाद, दमदार अभिनय, खूबसूरत संगीत और बड़े बड़े सेट आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने उस दौर में चर्चा का विषय बने। लेकिन मुगले आज़म सिर्फ अपनी कहानी के लिए ही नहीं बल्कि इससे जुड़े कई दिलचस्प किस्सों के लिए भी याद की जाती है। तो आइए दोस्तों, आज के इस शाही सफ़र में चलते हैं और बात करते हैं भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार फिल्मों में से एक मुगले आज़म की और जानेंगे इससे जुड़ी कुछ रोचक बातें जो शायद ही आपने पहले सुनी होगी।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इन द प्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो हमारी फिल्म है वो है मुगले आजम, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, बात करते हैं उन कलाकारों की जिन्होंने मुगले आजम के किरदारों को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। लेकिन मुगले आजम की शुरुआती स्टारकास्ट कुछ और थी। फिल्म पर काम 1940 के दशक में शुरू हुआ था और उस समय चंद्रमोहन, डीके सप्रू और नरगिस जैसे कलाकारों को लिया गया था। लेकिन 1947 में देश के विभाजन के बाद फिल्म का निर्माण रुक गया। बाद में जब फिल्म दोबारा शुरू हुई तो अकबर के रूप में पृथ्वीराज कपूर, शहजादा सलीम बने दिलीप कुमार और अनारकली के रूप में नजर आई मधुबाला। इसके अलावा दुर्गा खोटे, अजीत, नाजिर, जॉनी वॉकर, बेबी तबस्सुम और शीला दलाया साथी कलाकारों के रूप में नजर आए थे। इस फिल्म को यादगार बनाने में कलाकारों की मेहनत का भी बड़ा योगदान रहा। फिल्म के क्लाइमेक्स में काल कोठरी वाले सीन के लिए मधुबाला को असली लोहे की भारी जंजीर पहननी पड़ी थी। लंबे समय तक उन्हें पहनकर शूटिंग करने की वजह से उनके हाथों पर निशान तक पड़ गए थे। वहीं दिलीप कुमार और पृथ्वीराज कपूर ने भी अपने किरदारों को वास्तविक दिखाने के लिए भारी पोशाकों और कवच में शूटिंग की। के आसिफ अपने काम में किसी तरह का समझौता नहीं करते थे। पृथ्वीराज कपूर का सलीम चिश्ती की दरगाह पर जाने वाले सीन को तपती धूप और गर्म रेत पर फिल्माया गया था। के आसिफ ने कहा था कि अगर तकलीफ ज़्यादा हो तो इशारा कर दीजिएगा, शूटिंग रोक दी जाएगी। लेकिन पृथ्वीराज कपूर बिना रुके शॉट को पूरा किया। शॉट खत्म होने के तक उनके पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ चुके थे। ये घटना बताती है कि उस दौर के कलाकार अपने किरदारों को जीवंत बनाने के लिए कितनी लगन से काम करते थे। शायद यही वजह है कि आज भी जब मुगले आजम का जिक्र होता है तो उसके कलाकारों के समर्पण को उतने ही सम्मान और प्यार के साथ याद किया जाता है जितना फिल्म के रिलीज के समय किया जाता था। और अब बात फिल्म के एक बेहद लोकप्रिय गीत मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयोरी। इस गीत को तैयार करते समय खास ध्यान रखा गया था कि इसमें पुराने दौर की ठुमरी और दादरा की झलक दिखाई दे। वहीं इस गीत में कथक की खूबसूरती को दिखाने के लिए नृत्य निर्देशक लच्छू महाराज जी ने मधुबाला को घंटों कथक का अभ्यास कराया ताकि गीत का हर भाव पर्दे पर परफेक्ट लगे। खास बात ये रही कि पूरे गीत की शूटिंग मधुबाला ने खुद की, किसी डुप्लीकेट का इस्तेमाल नहीं किया। आइए सुनते हैं इसी सदाबहार गीत को।

श्रोताओं, इस गीत को सुनने के बाद आप खुद भी समझ गए होंगे कि इस गीत में और इसके दृश्य, जब ये नृत्य हो रहा था और मधुबाला जी ये नृत्य कर रही थी, तो आपने भी अगर ये फिल्म देखी होगी या ये गीत सुना होगा तो देखा होगा कि मधुबाला ने कितनी सुंदरता से इस कथक के भावों को उतारा है और कितनी सुंदरता से ये डांस को किया है। श्रोताओं, आगे बात करते हैं। इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे हम सचमुच मुगल काल में पहुंच गए हैं। के आसिफ के परफेक्शन का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1952 में दोबारा शुरू हुई इस फिल्म को पूरा होने में करीब 8 साल लग गए। फिल्म में युद्ध के दृश्यों को वास्तविक दिखाने के लिए बड़ी संख्या में घोड़ों, ऊँटों और सैनिकों का इस्तेमाल किया गया था। इतना ही नहीं, कुछ दृश्यों के लिए भारतीय सेना की भी मदद ली गई थी। उस दौर में जब ज़्यादातर फिल्मों की शूटिंग एक या दो कैमरे से होती थी, मुगले आज़म की कई दृश्यों को फिल्माने के लिए एक या दो नहीं बल्कि मल्टी कैमरों का इस्तेमाल किया गया था। यही वजह थी कि हर सीन बड़े पर्दे पर इतना प्रभावशाली दिखाई दिया। फिल्म के सेट, पोशाकें और गहनों पर भी खास ध्यान दिया गया था। देश के अलग अलग शहरों के कारीगरों ने मिलकर इन चीज़ों को तैयार किया था। हर छोटी सी छोटी चीज़ों में भी शाही अंदाज दिखाई दे, इसका पूरा ध्यान रखा गया था। अकबर का किरदार निभा रहे पृथ्वीराज कपूर के लिए उन्होंने लगभग 4,000 रुपये के खास जूते बनवाए थे। जब कैमरामैन आरडी माथुर ने आसिफ से कहा कि ये जूते तो पर्दे पर ठीक से दिखाई भी नहीं देंगे, तो आसिफ जी का जवाब था, मेरे अकबर को तो पता होगा कि उसने क्या पहना है। और वही एहसास उनकी चाल में एक मुगल शहंशाह की शान बनकर नजर आएगा। कहा जाता है कि फिल्म में दिखाई गई भगवान कृष्ण की मूर्ति भी शुद्ध सोने की बनी हुई थी। तो श्रोताओं, चलते हैं अगले गीत की ओर, लेकिन उस गीत से पहले सुनेंगे एक छोटा सा संदेश।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो फिल्म है वो है मुगले आजम, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। तो श्रोताओं, चलते हैं अगले गीत की ओर।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो फिल्म है वो है मुगले आजम। श्रोताओं, मुगले आजम का सबसे चर्चित सेट था शीश महल, जिसे बनने में लगभग 2 साल का समय लगा। के आसिफ को इसकी प्रेरणा जयपुर के आमेर किले के शीश महल से मिली थी, लेकिन उन्हें भारत में वैसा शीशा नहीं मिला जैसा वे चाहते थे, इसलिए विशेष शीशा बेल्जियम से मंगवाया गया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ फिल्म को बेहतर बनाने पर था। वहीं फिल्म की लागत करीब 1.5 करोड़ रुपये तक पहुँच गई थी, जो उस समय के हिसाब से बेहद बड़ी रकम थी। एक समय तो ऐसा भी आया जब फिल्म के फाइनेंसर शाहपुर जी ने तय किया कि वो फिल्म का निर्देशन आसिफ से लेकर सोहराब मोदी को दे देंगे, लेकिन मधुबाला और दिलीप कुमार दोनों ने के आसिफ का साथ दिया और कहा कि फिल्म को पूरी वही करेंगे। मुगले आजम को हिंदी, तमिल और अंग्रेजी 3 भाषाओं में बनाया जा रहा था। हर दृश्य और संवाद को 3-3 बार शूट किया जाता था। इसी वजह से फिल्म की शूटिंग के दौरान इतने फुटेज रिकॉर्ड हुआ कि उससे कई और फिल्में बनाई जा सकती थी, लेकिन के आसिफ ने वही दृश्य चुने जो उनकी नज़र में सबसे बेहतरीन थे। और शायद यही वजह है कि मुगले आजम सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक अध्याय बन गई। तो श्रोताओं,

श्रोताओं, फिल्म का संगीत तैयार किया था नौशाद ने और गीत लिखे थे शकील बदायूनी ने। दोनों की ये जोड़ी उस दौर में कई यादगार गीत दे चुकी थी, लेकिन मुगले आजम उनके करियर की सबसे खास फिल्मों में गिनी जाती है। कहा जाता है कि जब के आसिफ इस फिल्म का सपना लेकर नौशाद के पास पहुंचे तो वे अपने साथ पैसों से भरा एक ब्रीफकेस भी ले गए थे। आसिफ चाहते थे कि फिल्म का संगीत ऐसा हो जिसे लोग बरसों तक याद रखे, लेकिन पैसों की बात सुनकर नौशाद नाराज हो गए। बाद में दोनों के बीच गलतफहमियां दूर हुई और फिर नौशाद ने इस फिल्म का संगीत तैयार करने की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। इसके बाद जो हुआ वो तो इतिहास बन गया। नौशाद ने फिल्म के संगीत में भारतीय शास्त्रीय संगीत की मिठास, लोक संगीत की सादगी और वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा की भव्यता को खूबसूरती से पिरोया। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के गीत इतने महत्वपूर्ण थे कि वे फिल्म की कुल अवधि का लगभग एक तिहाई हिस्सा बन गए। फिल्म के अधिकांश गीतों को अपनी मधुर आवाज से सजाया था लता मंगेशकर ने, वहीं मोहम्मद रफ़ी, शमशाद बेगम और उस्ताद बड़े गुलाम अली खां जैसे महान कलाकारों की आवाज़ों ने भी इस संगीत को और भी यादगार बना दिया। दोस्तों, मुगले आजम के संगीत से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा भी है कि आसिफ चाहते थे कि फिल्म में तानसेन की आवाज़ के लिए किसी ऐसे कलाकार को लिया जाए जिसका शास्त्रीय संगीत में कोई मुकाबला ना हो। नौशाद इसके लिए उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का नाम सुझाया, लेकिन शुरुआत में उस्ताद फिल्म के लिए गाने को तैयार नहीं हुई। काफ़ी कोशिशों और बातचीत के बाद वे राजी हुए। कहा जाता है कि उन्होंने इतनी ज़्यादा फीस मांगी जिसे सुनकर उन्हें लगा शायद के आसिफ पीछे हट जाएं। उस दौर में 25,000 रुपये बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी, लेकिन उस्ताद की बात सुनते ही के आसिफ ने बिना एक पल गवाए अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकाली और कहा बस सिर्फ 25,000 रुपये मंजूर है। इसके बाद उस्ताद बड़े गुलाम अली खां ने फिल्म के लिए प्रेम जोगन बनके और शुभ दिन आयो राज दुलारा जैसी यादगार रचनाएं रिकॉर्ड की, जो आज भी भारतीय शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत के इतिहास में विशेष स्थान रखती है। तो चलिए सुनते हैं एक और यादगार गीत।

दोस्तों, मुगले आजम कितनी शानदार फिल्म थी इसका अंदाज़ा इसकी रिलीज़ के समय दर्शकों के उत्साह से भी लगाया जा सकता है। साल 1960 में जब फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हुई तो सिनेमाघरों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई। तेज़ बारिश भी लोगों के उत्साह को कम नहीं कर पाई। उस दौर में 75 पैसे और 2 रुपये से मिलने वाले टिकट ब्लैक में 100 से 200 रुपये तक बिके थे। 4 अगस्त 1960 को जब फिल्म का भव्य प्रीमियर हुआ तो इसके प्रिंट को हाथी पर रखकर मराठा मंदिर थिएटर तक लाया गया। वो अपने आप में एक अनोखा दृश्य था और पूरे शहर में इसकी चर्चा थी। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के भव्य प्रीमियर में इसके 2 सबसे बड़े सितारे दिलीप कुमार और मधुबाला मौजूद नहीं थे।

श्रोताओं, इस फिल्म को 3 अवार्ड्स मिले। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया, साथ ही फिल्म को बेस्ट फिल्म, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी और बेस्ट डायलॉग के फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। फिल्म की लोकप्रियता का अंदाज इसी बात से लगा सकते हैं कि मराठा मंदिर सिनेमाघर में ये लगभग 77 वीक तक हाउसफुल चली।

0: इसी के साथ ही आज के सफर को यहीं विराम देते हैं। अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अभी अनुमति दीजिए, हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: जिंदाबाद है मोहब्बत, जिंदाबाद।
0: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। दिन के 1:40 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं समाचार।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों नाल वीवाटेक सम्मेलन विच शामिल होणगे। वह अज पैरिस विच फ्रांस के प्रमुख व्यापारक आगुआं नाल उच्च पद्धरी मीटिंगां भी करनगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विकसित भारत के टीचे नूं हासिल करने लई जरूरी है कि समाज का कोई भी वर्ग विकास यात्रा विच पिछे ना रह जाए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतुब्रत बैनर्जी नूं पश्चिमी बंगाल विधानसभा च विरोधी धिर दा नेता नियुक्त करने के फैसले से कोई अंतरिम रोक लाने तों इनकार कर दिता है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बीती रात एक सड़क हादसे च 7 लोगों की मौत हो गई है। FAH महिला नेशनस कप हाकी विच भारत आज यूरुग्वे नूं 3-2 नाल हरा के सैमीफाइनल च पहुंच गया है। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों नाल वीवाटेक सम्मेलन विच शामिल होणगे। ओह भारत की तकनीकी तरक्की ते नवीनता नूं दुनिया सामने रखणगे। यह यूरोप का सब तो वड्डा

0: एक निवासी ने सरकार दे यतना दी शलाघा कर दे किया है कि इसने देश नू नक्सलवाद तो मुक्त करन दे अपने वादे नू निभाया है।
1: उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
0: झारखंड के गुमला जिले के निवासी तेंबू राव ने किया कि जदों तो मोदी सरकार बनी है नक्सलवाद हौली हौली खत्म हो गया आते लोग शांति ते सद्भावना नाल रह रहे ने।
2: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से नक्सलवाद के जब्त में था, हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं। बाकी गांव का विकास हो रहा है, धीरे धीरे रोड सड़क बन गया है, काफी अच्छा है अभी।
0: आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी दहाकिया दी हिंसा दौरान लोकतंत्र विकास संविधान दी जीत दा प्रमाण है। ब्यूरो रिपोर्ट नाल मैं सरबजीत कौर, आकाशवाणी खबरां जलंधर।
3: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बीती रात एक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 औरतें शामिल ने। पुलिस ने दसा कि हादसा रात 2 बजे के करीब वापरिया। मुढ़ली जांच तो पता लगा है कि हादसा उस समय वापरिया जो ड्राइवर का वाहन से कंट्रोल नहीं रहा तो यह खड्ड में डिग पिया। पुलिस और स्थानक निवासियों की मदद नाल सारियां लाशां खड्ड विचों कढ लई गईयां ने। चंबा के पुलिस सुपरडेंट विजय सकलानी ने कहा कि लाशां नूं पोस्टमार्टम लई चंबा के सरकारी मैडिकल कॉलेज भेज दिता गया है। अज श्री गुरु अर्जन देव जी का 420वां शहीदी दिहाड़ा पूरी श्रद्धा ते सत्कार नाल मनाया जा रहा है। तरनतारण स्थित गुरद्वारा श्री दरबार साहब विखे विशेष समागम कराए जा रहे ने। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने पंचकूला विच गुरद्वारा श्री नाडा साहब विखे पहुंच के मत्था टेकिया ते श्री गुरु अर्जन देव जी नूं श्रद्धा के फुल भेंट किए। इस तरह पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने भी श्री गुरु अर्जन देव जी नूं उन्हां दे शहीदी दिहाड़े ते श्रद्धांजलि भेंट की है। FIH महिला नेशनस कप हाकी विच अज न्यूजीलैंड विच भारत ने उरुग्वे नूं 3-2 नाल हरा दिता है। भारत दी दीपिका ने 2 ते दीपिका सोरेंग ने 1 गोल किया। भारत ने पूल ए विच सिखर ते रह के सैमीफाइनल लई क्वालीफाई कर लिया है। सैमीफाइनल विच भारत दा मुकाबला 20 जून नूं चिली ते कोरिया विचकार होण वाले मैच दे जेतू नाल होएगा। फीफा विश्व कप 2026 विच अज सवेरे कोलंबिया ने उज़्बेकिस्तान नूं 3-1 नाल हरा दिता है। इस तों पहलां घाना ने पनामा ते 1-0 दी शानदार जित दर्ज कीती। इस दौरान इंग्लैंड ने अपनी मुहिम की शुरुआत क्रोएशिया खिलाफ 4-2 की जित नाल कीती है। कप्तान हैरी केन ने पेनल्टी समेत 2 गोल किए। अज राती ग्रुप ए विच चैक गणराज का मुकाबला दक्षणी अफरीका नाल होगा। दूजे मैच विच मैक्सीको ते दक्षणी कोरिया आमो सामने होणगे। अंत विच चोणवीआं खबरां ते इक नज़र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों नाल वीवाटेक सम्मेलन विच शामिल होणगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विकसित भारत के टीचे नूं हासिल करन लई जरूरी है कि समाज का कोई भी वर्ग विकास यात्रा विच पिछे न रह जाए। कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बैनर्जी नूं पछमी बंगाल विधानसभा च विरोधी धिर दे नेता नियुक्त करने के फैसले ते कोई अंतरिम रोक लाने तों इनकार कर दिता है। FIH महिला नेशनस कप हाकी विच भारत उरुग्वे नूं 3-2 नाल हरा के सैमीफाइनल विच पहुंच गया है। इस दे नाल ही राष्ट्रीय खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रदेशक खबरां दा बुलेटिन शाम 6:20 ते होएगा। नमस्कार।
4: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के सरकर्दा ताजिरों के साथ आला सतह की कई मीटिंग्स करेंगे। वो वीवा टेक समिट में भी शिरकत करेंगे। मरकज माली साल 2026-27 में 26 किलोमीटर देही सड़कों की तामीर करेगा जिस पर 18,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऋतव्रत बनर्जी को असेंबली में अपोजिशन रहनुमा मुकर्रर करने के फैसले पर कोई उबरी हुक्म देने से इनकार कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक सड़क हादसे में एक ही गांव के 7 अफराद हलाक हो गए। अमरीका और ईरान के दरमियान एक मुफाहमतनामा पर अमल शुरू हो गया है जिसकी वजह से अमन मुजाकरात की उम्मीदें पैदा हो गई हैं। और हॉकी में भारत ने उरुग्वे को 3-2 से हराया जिसके बाद वो न्यूजीलैंड में FIH खवातीन के नेशंस कप में सेमीफाइनल में दाखिल हो गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के सरकर्दा ताजिरों के साथ बहुत सी आला सतह की मीटिंगें करेंगे। वो ये मीटिंगें भारत फ्रांस इकतसादी और सनती तआवुन को गहरा करने की कोशिशों के हिस्से के तौर पर करेंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
5: वजीर आजम सेंट गोबेन के चेयरमैन और सीईओ बेनोइट बेजीन के साथ बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि इसमें माहौल के लिए साजगार मैन्युफैक्चरिंग और मुस्तकबिल बुनियादी ढांचे पर तवज्जो दी जाएगी। वो स्मार्ट मोबिलिटी और रेल जदीदकारी में तआवुन के मौके तलाश करने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। टेक्नोलॉजी के शोबे में वजीर आजम मसनू जहानत इख्तरा और जिम्मेदार एआई हुक्मरानी के बारे में मिस्टर एआई के बानी साथी और सीईओ आर्थर मेंश के साथ बातचीत करेंगे। मीटिंगों का ये सिलसिला सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ रोडोल्फ साडे की मीटिंग के साथ ख़त्म हो जाएगा, जिसमें उम्मीद है कि वो समुद्र के रास्ते तिजारत बंदरगाहों को जदीद शक्ल दिए जाने और मुस्तहकम आलमी सप्लाई चेन पर तबादला ख्याल करेंगे। इन सरगर्मियों से भारत और फ्रांस के दरमियान बढ़ती हुई इक्तिसादी शराकत दारी की अहमियत का इजहार होता है। महेश चौबाडे की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
4: वजीर आजम फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक समिट में भी शिरकत करेंगे। ये समिट टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप की यूरोप की सबसे बड़ी तकरीब है, जिसमें उम्मीद है कि जनाब मोदी भारत के इख्तिरा से मुतालिक तरक्की पाते हुए इको निज़ाम और टेक्नोलॉजी की पेशरफ्त को उजागर करेंगे। वीवा टेक समिट में भारत का सबसे बड़ा पवेलियन है, जो भारत और यूरोप के दरमियान इख्तिरा से मुतालिक इको निज़ाम की शराकत दारी के बड़े इम्कान की अलामत है। मरकज 2026-27 के माली साल के दौरान देही इलाकों में 26,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें तामीर करेगा। देही तरक्की की वजारत के मुताबिक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और देही इलाकों में मुतल्लिका सरगर्मियों के लिए 18,900 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं। आला सतह की एक मीटिंग में देही इलाकों में सड़कों से मुतल्लिक प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ओडिशा और मध्य प्रदेश के 5 रोजा दौरे पर आज सुबह इंदौर पहुंची। उनका देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे पर गवर्नर मंगूभाई पटेल और वजीर आला मोहन यादव और आला हुकाम ने शानदार इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू बैतूल में रूहानी बेदारी के जरिए कबायली मुआशरे को बाइख्तियार बनाने के एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। झारखंड में आज राज्यसभा की 2 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम की उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा और आजाद उम्मीदवार परिमल नाथवानी मैदान में हैं। पोलिंग सुबह 9 बजे शुरू हुई, जो शाम 4 बजे तक जारी रहेगी, जबकि वोटों की गिनती शाम 5 बजे शुरू होगी और इसके बाद नतीजे का ऐलान किया जाएगा। असेंबली के तमाम 81 अरकान के अपना वोट डालने का इम्कान है। मिजोरम में राज्यसभा की वाहिद सीट के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। इस चुनाव में हुक्मरान जोराम पीपल्स मूवमेंट और अपोजिशन मिजो नेशनल फ्रंट के उम्मीदवारों के दरमियान सीधा मुकाबला है। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने आज नई दिल्ली में अवामी बहबूद के 3 रोजा कैंपों का इफ्तिताह किया। ये कैंप वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के मुहिम से तरगीब हासिल करके शुरू किए गए हैं। कैंप के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहतरमा गुप्ता ने कहा कि हुकूमत ने कौमी राजधानी के 42 मकामात पर इन कैंपों का इनेकाद किया है। उन्होंने यह भी कहा कि शहरी मरकजी और दिल्ली हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं।
6: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
4: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज तृणमूल कांग्रेस के एमएलए ऋतब्रता बनर्जी, जो इस पार्टी से अलग हो गए हैं, उन्हें असेंबली में अपोजिशन रहनुमा के तौर पर मुकर्रर करने से मुतालिक मगरबी बंगाल के स्पीकर के असेंबली के स्पीकर रथेंद्रा बोस के फैसले के बारे में कोई अबूरी राहत देने से इनकार कर दिया है। टीएमसी एमएलए सुभान देव चट्टोपाध्याय की तरफ से दाखिल की गई एक दरख्वास्त की समाअत करते हुए, जिसमें बनर्जी की नामजदगी और तकर्रुर को रद्द किए जाने को चैलेंज किया गया है, जस्टिस कृष्ण राव ने स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने मुद्दा अलह को 3 हफ्ते के अंदर अंदर अपने हलफनामे दाखिल करने की हिदायत दी है, जबकि दरख्वास्त दहिंदा को मजीद 2 हफ्ते का वक्त दिया है कि वह अपना जवाब दाखिल करे। इस मामले की अगली समाअत 28 जुलाई को होगी। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क हादसे में 7 अफराद हलाक

ये सभी लोग एक ही गांव के थे। इनमें 3 सगे भाई और एक शादीशुदा जोड़ा था। यह हादसा चुराह असेंबली हलके की पुखरी मसरूंद सड़क पर मानी जीरो के करीब पेश आया, जब एक बोलेरो गाड़ी काबू से बाहर हो गई और तकरीबन 500 मीटर दूर गहरी खाई में जा गिरी। चंबा के सुपरिंटेंडेंट पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में तहकीकात की जा रही है। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने अमृतसर में एक घर को कुर्क किया है जिसका ताल्लुक लश्कर ए तैयबा के एक कारिंदे से है। यह शख्स सरहद पार मनुष्यात और दहशतगर्दी के नेटवर्क के एक केस में मुलव्वस है। यह नेटवर्क पाकिस्तान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, थाईलैंड, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर मुल्कों में फैला हुआ है। सरकारी ज़राए के मुताबिक ये कारिंदा अंकुश कपूर इस नेटवर्क का भारत में एक बुनियादी कारिंदा है। NIA की तफ्तीश से इंकशाफ हुआ है कि अंकुश के राबते दुबई में मुकीम एक मुलजिम से हैं जिसका ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम लश्कर ए तैयबा से है। अंकुश को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था जिसकी शिनाख्त एक साजिश तैयार करने वाले एक बहुत ही अहम कारिंदे के तौर पर की गई है जिसका ताल्लुक नशीले मादों की स्मगलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और तकसीम से था। अमरीका और ईरान के दरमियान एक अहम मुफाहमतनामा लागू हो गया है जिसके तहत लगभग 4 महीने से जारी लड़ाई फौरी तौर पर ख़त्म हो गई है। इसके अलावा दोनों मुल्कों के दरमियान एक जामे अमन समझौते के खातिर 60 दिन तक गुफ्तगू जारी रहने की भी गुंजाइश रखी गई है। दोनों मुल्कों के दरमियान स्विट्जरलैंड में तयशुदा मीटिंग से पहले 14 निकाती समझौते पर इलेक्ट्रॉनिकली दस्तखत किए गए हैं। समझौते के तहत फौरी तौर पर लड़ाई बंद कर दी जाएगी। दोनों मुल्क दुश्मनाना कार्रवाइयों से गुरेज करेंगे। इलाकाई सिक्योरिटी के उमूर और ईरान के एटमी प्रोग्राम पर तवील अरसे से जारी तनाज़े को हल करने के लिए एक खाका तय करेंगे। मुफाहमतनामे के तहत अमरीका ईरान के गिर्द व नवाह में बहरी नाकाबंदी ख़त्म करना शुरू कर देगा और आबनाए हुरमुस के रास्ते बहरी जहाज़ों की आमद रफ्त को 30 दिन के अंदर अंदर मामूल पर लाने के लिए काम करेगा। न्यूजीलैंड में जारी ख़वातीन के FIH हॉकी कप में पूल ए में भारत ने उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी कामयाबी हासिल की है और वो पूल ए में सर फहरिस्त आ गया है। शुरू में भारत पर एक गोल किया था जिसके बाद दीपिका ने 2 और दीपिका सोरेंग ने उरुग्वे पर एक गोल किया। फुटबॉल में कोलंबिया ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप के में एक मैच में उज़्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर अपनी मुहिम का आगाज किया। ये मैच आज सुबह मेक्सिको शहर के इस्तादियो एस्तिका में खेला गया। इससे पहले ग्रुप एल में घाना ने पनामा पर 1-0 से जीत हासिल की थी। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के सरकर्दा ताजिरों के साथ आला सतह की कई मीटिंग्स कर रहे हैं। वो वीवा टेक्स समिट में भी शिरकत करेंगे। मरकज माली साल 2026-27 में 26,000 किलोमीटर देही सड़कों की तामीर करेगा जिस पर 18,900 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत आएगी। कलकत्ता हाईकोर्ट में ऋतव्रत बनर्जी को असेंबली में अपोजिशन रहनुमा मुकर्रर करने के फैसले पर कोई अबूरी हुक्म देने से इनकार कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले में एक सड़क हादसे में एक ही गांव के 7 अफराद हलाक हो गए। और अमरीका और ईरान के दरमियान एक मुफाहमतनामे पर अमल दरामद शुरू हो गया है जिसकी वजह से अमन मुज़ाकरात की उम्मीदें पैदा हुई हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी

0: संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल है, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्णा राव की एकल पीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाट बद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति

0: योजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंग रोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ORS, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए DTC बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
2: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमरीका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप

0: वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं और ये समय है कार्यक्रम एक ही कलाकार का। कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी दोस्त अर्चना गोयल। आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में बात उस शख्सियत की जिनकी आवाज में अपनापन था, शरीर में ताकत और चेहरे पर सरलता। एक ऐसा नाम जिसने दुनिया में ऐसा नाम बनाया कि लोग उन्हें ताकत, सादगी और भारतीयता की मिसाल मानने लगे, साथ ही जिन्होंने कुश्ती में देश का नाम रोशन किया। हम बात कर रहे हैं दारा सिंह की, जिन्होंने फिल्मी दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बनाई।

दारा सिंह का जन्म 19 नवंबर 1928 को अमृतसर के गांव धर्मूचक में बलवंत कौर और सूरज सिंह रंधावा के यहां हुआ था। कम आयु में ही उनका विवाह उनसे आयु में बड़ी लड़की से करा दिया गया। 17 वर्ष की उम्र में ही वो प्रद्युम्न रंधावा नामक बेटे के पिता भी बन गए। दारा सिंह का छोटा भाई सरदारा सिंह, जिसे सब रंधावा कहते थे, दोनों ने मिलकर पहलवानी शुरू कर दी। धीरे धीरे गांव के दंगलों से निकलकर शहरों तक उन्होंने अनेकों कुश्तियां जीतकर अपने गांव का नाम किया।

1947 में दारा सिंह सिंगापुर आ गए। वहां रहते हुए उन्होंने भारतीय स्टाइल की कुश्ती में मलेशियाई चैंपियनशिप तरलोक सिंह को पराजित कर क्वालालंपुर में मलेशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जीती। इसके बाद उनका विजय रथ अन्य देशों की ओर चल पड़ा। 1952 में वो भारत लौट आए और 1954 में भारतीय कुश्ती चैंपियन बने। इसके बाद ओरिएंटल चैंपियन किंग कॉन्ग को भी परास्त किया। 1968 में अमेरिका के विश्व चैंपियन लव थेस को पराजित कर वे फ्री स्टाइल कुश्ती के विश्व चैंपियन बन गए। उन्होंने 55 वर्ष तक पहलवानी की और 500 मुकाबलों में से किसी एक में भी पराजय का मुंह नहीं देखा। 1963 में उन्होंने अपने जीवन का अंतिम मुकाबला जीता और ज्ञानी जैल सिंह के हाथों अपराजय पहलवान का खिताब बरकरार रखते हुए कुश्ती से संन्यास ले लिया।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और हमारे आज के कलाकार हैं दारा सिंह। दोस्तों, दारा सिंह की पहचान सिर्फ ताकत नहीं, अनुशासन भी था। कहा जाता है कि वो नियमित व्यायाम और बेहद सादगी भरा जीवन जीते थे। कुश्ती की लोकप्रियता ने उन्हें फिल्मों तक पहुंचाया। शुरुआती दौर में वो एक्शन और स्टंट फिल्मों के बड़े सितारे बने। उनकी शुरुआत हुई फिल्म संग दिल से, बाद में लीड रोल वाली फिल्म किंग कॉन्ग आई। उनकी अधिकतर फिल्में मुमताज के साथ आईं। करीब 16 फिल्में साथ करने के बाद ये हाईएस्ट पेड कपल था, जिन्हें करीब 4 लाख एक फिल्म का मिलता था।

आप हैं पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी। आप हैं सुदर्शन मुखी जी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत भारत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोरैया, जालंधर से। और ये मैसेज हमें मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव का। आप हैं गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। चिरमरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोर, नारायण प्रसाद लहरे और दिनेश प्रसाद लहरे। साथ में है कालिंदी लहरे। वडेंखेड़ा पंजाब से टिंपू मोर टॉमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा। और अब बढ़ते हैं दारा सिंह जी के बारे में जानकारी के साथ। दारा सिंह ने 1980 के दशक में उनका रुख टेलीविजन की तरफ हुआ, जिसमें धारावाहिक रामायण में उन्होंने हनुमान का किरदार निभाया। इसके अलावा वीर भीमसेन और महाभारत फिल्म में भीम का किरदार निभाया। कई धार्मिक फिल्मों में उन्होंने भगवान शिव का किरदार भी निभाया। उनकी आखिरी फिल्म थी जब वी मेट। उनकी आखिरी पंजाबी फिल्म थी दिल मेरा पंजाबी और उन्होंने नेशनल अवार्ड विजेता फिल्म मैं माँ पंजाब दी में भी काम किया। एक्टिंग के साथ साथ दारा सिंह ने भक्ति में शक्ति और रुस्तम का निर्माण और निर्देशन दारा फिल्म्स के तले किया।

0: चल दिया।
1: ये क्या हुआ?
0: अरे हाय गजब हो गया।
2: और अब बारी आपके मेल शामिल करने की। हमें बहुत सारे श्रोताओं के मेल मिल रहे हैं, तो उनमें से हमने कुछ मेल्स को लिया है। और ये मैसेज हमें मिला है अपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से। मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज फरदीन, सुहान अब्बासी और अरजान अब्बासी, उनके परिवार के सभी लोग और ये कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं।

फिल्मों कुश्ती के अलावा दारा सिंह ने 1998 में भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल को ज्वाइन किया। राज्यसभा द्वारा मनोनीत दो वो पहले स्पोक्स पर्सन बने। 2003 से लेकर 2009 तक उन्होंने अपना कार्यकाल निभाया। दारा सिंह ने दो शादियां की जिनमें तीन बेटे और तीन बेटियां थीं। उनका पुत्र बिंदु दारा सिंह भी फिल्मों में नजर आते हैं। दारा सिंह ने हिंदी ही नहीं बल्कि पंजाबी सिनेमा में भी खूब काम किया और लंबे समय तक दर्शकों के प्रिय बने रहे। उनकी चर्चित फिल्मों में शामिल हैं किंग कॉन्ग, रुस्तमे हिंद, शेर दिल, हरकुलस, मेरा नाम जोकर, आनंद, मर्द, कल हो ना हो जैसी फिल्में रहीं।

बहुत लोग उन्हें अभिनेता के रूप में जानते हैं, लेकिन दारा सिंह सामाजिक जीवन में भी सक्रिय रहे। वे सार्वजनिक जीवन से जुड़े और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहे, इसलिए ही वो रुस्तम ए हिंद जैसे सम्मान के हकदार थे। 1912 से 1912 में 83 वर्ष की आयु में, माफ कीजिएगा, 2012 में 83 वर्ष की आयु में दारा सिंह दुनिया से चले गए। दारा सिंह सिर्फ अभिनेता नहीं, उस दौर की पहचान थे जब मेहनत, संघर्ष और व्यक्तित्व इंसान को महान बनाते थे। उन्होंने साबित किया कि अखाड़े की मिट्टी से निकला इंसान भी पर्दे पर अमर हो सकता है।

इंद्रप्रस्थ चैनल है। दिन के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 3 बज रहे हैं और ये वक्त है प्रोग्राम मैटिनी मेलोडीज़ का यानी गोल्डन एरा के फिल्म संगीत का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का नमस्कार और स्वागत है आपका एक बार फिर से इस प्रोग्राम में। श्रोता

इंद्रप्रस्थ चैनल है। दिन के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 3 बज रहे हैं और ये वक्त है प्रोग्राम मैटिनी मेलोडीज़ का यानी गोल्डन एरा के फिल्म संगीत का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का नमस्कार और स्वागत है आपका एक बार फिर से इस प्रोग्राम में। श्रोताओं, आज के दौर में एक संदेश भेजने में बंद होकर सफ़र करती थी और कई दिनों बाद अपने मंजिल तक पहुंचती थी। किसी प्रियजन के खत का इंतज़ार, डाकिये की घंटी की आहट और चिट्ठी पढ़ते समय चेहरे पर आने वाली मुस्कान, ये सब अपने आप में एक खूबसूरत एहसास था। आज के इस विशेष अंक में हम बात करेंगे खत, चिट्ठियों और पैगामों की और सुनेंगे ऐसे गीत जो इस भावनाओं को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बयां करते हैं। श्रोताओं, पहले प्रेम कहानियों का सबसे बड़ा साथी हुआ करता था एक खत। कई बार लोग रोज़ दरवाजे की ओर देखते रहते कि शायद आज कोई चिट्ठी आ जाए। उस एक कागज़ के टुकड़े में किसी की पूरी दुनिया समाई होती थी। आइए सुनते हैं एक ऐसे ही गीत जिसे प्रेम पत्र की मिठास आज भी महसूस की जाती है।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं मैटिनी मेलोडीज और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, अभी जो आप गीत सुन रहे थे वो गीत गाया था लता मंगेशकर ने और फिल्म का नाम था शक्ति। श्रोताओं, हम बात कर रहे थे पैगाम की, चिट्ठियों की, संदेशों की। जब लोग एक दूसरे से दूर होते हैं ना, तब चिट्ठियां ही रिश्तों को जोड़े रखती हैं। कभी खुशी की खबर तो कभी यादों का जिक्र तो कभी मिलने का वादा, सब कुछ एक खत में समा जाता है। आइए अब सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जो दूरियों में भी प्यार की गर्माहट बनाए रखता है।

अभी जो आप गीत सुन रहे थे, ये गीत लिया था आराधना फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। श्रोताओं, हर पैगाम कागज़ पर ही लिखा जाए ऐसा ज़रूरी नहीं। कभी आंखें संदेश देती हैं, कभी मुस्कान और कभी कोई गीत दिल की बात कह देता है। पुराने फिल्मों में कई बार गीत ही प्रेम का सबसे सुंदर पैगाम बन जाता था। तो आइए चलते हैं और सुनते हैं हेमंत कुमार की आवाज़ में ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज। श्रोताओं, हम बात कर रहे थे चिट्ठियों की। कई रिश्तों की शुरुआत एक चिट्ठी से हुई, कई प्रेम कहानियां खतों के सहारे आगे बढ़ी। उस दौर में लिखावट भी पहचान होती थी, लोग लिफाफा देखकर ही समझ जाते थे कि ये चिट्ठी किसकी है। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जो रिश्तों की उस गहराई को दर्शाता है।

दोस्तों, हम बात कर रहे थे खतों की, लिफाफे की और पैगाम की। कुछ खत ऐसे होते हैं जो समय के साथ पुराने तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी यादें कभी पुरानी नहीं होती। पुराने संदूक में रखी चिट्ठियाँ, किताबों में दबे हुए खत और उन पर लिखे शब्द आज भी बीते दिनों की खुशबू लिए हुए हैं। इसी भाव के साथ सुनते हैं आज का अंतिम गीत,

0: दोस्तों, खत सिर्फ कागज़ नहीं होते, ये भावनाओं का आईना होते हैं। उनमें इंतज़ार होता है, प्यार होता है, यादें होती हैं और कई बार पूरी ज़िंदगी की कहानी भी। उम्मीद है आज के गीतों ने आपको उन दिनों की याद दिलाई होगी जब चिट्ठियों का इंतज़ार भी एक खुशी हुआ करता था। तो इसी के साथ अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा गीत, गुनगुनाते रहिएगा संगीत, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ यानी आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ।
1: कभी यूं ही जब हुई वो झलसा।

उर्दू मजलिस के सामईन की खिदमत में शाहनवाज हाशमी का पुरखलूस आदाब। सामईन इकराम, हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी दिलजोई के सामान के साथ साथ आपकी सेहत का भी ख्याल रखें। वक्त वक्त पर समाजी जरूरियात और जहनी जरूरियात के मद्देनजर हम अपने प्रोग्राम

0: को तरतीब देते हैं। इसी के मद्देनज़र आज हम लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम हिफ्ज़ान सेहत। आज का मौजू नहायत ही अहम है और दौरे हाजिर की ज़रूरत भी। आज का मौजू है योगा और सेहत। सामईन कराम, योगा का आगाज़ वादी सिंध की तहजीब 2700 कबल मसीह में हुआ, जहां मेहर और मुजस्मों में योगियों की तस्वीरें मिलती है। उसके बाद पतंजलि के योगा सूत्र फलसफा और अमली निज़ाम की शक्ल दी गई है। अगर मजहबी बुनियाद पर देखें तो बुद्ध मत, जैन मत और हिंदू धर्म में योगा को रूहानी निजात यानी मोक्ष का जरिया समझा गया है। 19वीं और 20वीं सदी में स्वामी विवेकानंद और परमहंस योगानंद ने योगा को मगरिब में मुतारफ कराया और आज ये दुनिया भर में जिस्मानी वर्जिश और जहनी सुकून के तौर पर राइज है। योगा का संस्कृत लफ्ज युज से निकला है, जिसका मतलब है जोड़ना या इत्तेहाद। योगा का मकसद इनफरादी शऊर को कायनाती शऊर से जोड़ना यानी जिस्म, जहन और रूह में हम आहंगी पैदा करना। ये सिर्फ जिस्मानी वर्जिश नहीं बल्कि एक रूहानी फलसफा है जो जब्त नफ्स, मुराकबा और अखलाकी उसूलों पर मबनी है। और अगर हम फवायद पर बात करें तो योगा जिस्म को लचकदार और मजबूत बनाता है, दिल और फेफड़ों की सेहत बेहतर करता है, खून की गर्दिश और हाजमा को दुरुस्त भी करता है। दूसरी तरफ इसके जहनी और रूहानी फवायद भी हैं, जैसे योगा जहनी दबाव और बेचैनी को कम करता है, इर्तकाज और याददाश्त को बेहतर बनाता है, नींद को पुरसकून और गहरी बनाता है। योगा जिस्म और जहन के अलावा रूह पर भी असर अंदाज होता है। उसके रूहानी फवायद को अगर देखें तो ये खुद शनासी और अंदरूनी सुकून अता करता है। मुराकबे के जरिए इंसान को हकीकत कायनात से करीब करता है, मोक्ष या निजात की राह दिखाता है। तो सामईन कराम, आपको ये भी बताते चलें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने योगा को आलमी सतह पर मुतारफ कराने में तारीखी किरदार अदा किया है। 2014 में अक्वामे मुत्तहिदा में उनकी तजवीज़ पर 21 जून को बैनुल अक्वामी योम योगा करार दिया गया, जिसे 177 ममालिक ने हिमायत दी। इसके बाद 2015 से हर साल दुनिया भर में करोड़ों अफराद योगा डे मनाते हैं और ये भारत की कदीम रिवायत को आलमी सेहत व सुकून की अलामत बना चुका है। पहला आलमी योगा के दिन 21 जून 2015 को दिल्ली के राजपथ पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में 35,985 अफराद ने योगा किया, जिसने दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए। इसके अलावा न्यूयॉर्क, पेरिस, बीजिंग, काहिरा, कुआलालंपुर और दुनिया के दीगर शहरों में योगा डे मनाया गया। आपको ये भी बता दें कि योगा को आलमी सतह पर इसलिए कबूल किया गया कि यह जिस्मानी सेहत, जहनी सुकून और रूहानी बालीदगी का जामे जरिया है। योगा के कुछ अकसाम जो बहुत ज्यादा अवाम में मकबूल है, उनमें हठ योगा, जिस्मानी आसन और सांस की मशकें, राजा योगा, मुराकबा और जहनी इर्तकाज, कर्मा योगा, खिदमत और नेक आमाल, भक्ति योगा, अकीदत और मोहब्बत के जरिए कुर्ब इलाही, जनाती योगा, इल्म और फलसफे के जरिए हकीकत की तलाश। योगा हिंदुस्तान की कदीम रिवायत है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अकदामात के बाद ये दुनिया भर में एक आलमी तहरीक बन चुका है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा परवीन, जिनका ताल्लुक जामिया हमदर्द से है, जो दरसो तदरीस के साथ साथ इलाज व मुआलजा के शोबे में योगा के जरिए कामयाबियां हासिल कर रही हैं। आइए इस सफर का हम आगाज करते हैं और उनसे जानते हैं कि योगा किस तरह हमारी सेहत को बेहतर बना सकता है या बना रहा है।
1: थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं, जैसा आपने बताया कि मैं हिफ्ज़ान सेहत में हूँ, जामिया हमदर्द में, और काफ़ी साल से वहाँ मैं पढ़ा रही हूँ। मकसद हिफ्ज़ान सेहत का, जैसे आप उसके नाम से जाहिर होता है, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन यानी कम्युनिटी मेडिसिन। मतलब हम जो है वो इलाज के ऊपर इतना ज़्यादा यकीन नहीं रखते हैं, बल्कि हम प्रिवेंशन के ऊपर काम करते हैं
0: जी।
1: और इसकी एक मिसाल मैं आपको खुद से दूंगी कि कहाँ से मैंने अपना योगा स्टार्ट किया। पहले तो मैं, जैसे आपने बताया अभी कि योगा कहाँ से, क्या मायने में, एक संस्कृत वर्ड है ये, 5000 साल पहले ये स्टार्ट हुआ था
0: जी।
1: और फिर इसके माने यूज के माने यूनिटी के हैं, यूज के माने ज्वाइन करने के हैं, आप किस तरह से इसको जो है आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक बात है, जैसे वो आप पहले बता भी चुके हैं कि इसमें जो बात है वो है, आपको फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ आपको माइंड को भी उसके अंदर जो है वो लेना पड़ेगा, कि उसको अंदर जो है माइंड के साथ साथ अगर आप अपने ब्रेथ को भी ले लेंगे तो ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है वो एक परफेक्ट योगा जो है वो कहला सकता है, और उससे जो है वो काफ़ी जो है वो फ़ायदा किसी को भी जो है वो हासिल हो सकता है, चाहे माइंड की बात करें, चाहे फिजिकल एक्सरसाइज की बात करें, चाहे हम ब्रीदिंग की बात करें। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हम प्रॉपर एक्सरसाइज जिसे हम आसन्स बोलते हैं, आसनास बोलते हैं, प्रॉपर ब्रीदिंग जिसे हम प्राणायाम बोलते हैं, या फिर हम प्रॉपर रिलैक्सेशन बोलते हैं जिसे हम शवासन बोलते हैं, या हमें उसके साथ साथ प्रॉपर डाइट भी हमें कौन सी लेनी है क्या है वो भी इसका जुज है, और सबसे बड़ी बात कि हमें पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जो है वो चीज़ें जो है लेनी है। आप ये बात मानेंगे कि नोबडी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, कोई भी परफेक्ट नहीं है आदमी इसमें। हमें क्या करना है, योगा हमें बताता है कि कैसे लेट गो, कैसे हम किसी चीज़ को, हम किसको कैसे थैंक यू बोल सकते हैं, कैसे चीज़ों को हम जो है वो माफ़ कर सकते हैं, कैसे हम जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। उसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए से हम ये जो है कर सकते हैं। अगर हम कहें प्रॉपर आसनास की बात, तो मतलब प्रॉपर आसना, आसना हमें बताता है कि हम बॉडी को फिजिकली कैसे फ्लेक्सिबल जो है वो कर सकते हैं, आपकी कैसे हम अपने जॉइंट्स को लुब्रिकेट कर सकते हैं, कैसे हम अपने जॉइंट्स की जो है वो ऑयलिंग जो है वो कर सकते हैं, और कैसे अगर ऑयलिंग होगी हमारा लुब्रिकेट होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा सर्कुलेशन भी बॉडी का होगा, हमारे जो ऑक्सीजन सारे हमारे सेल्स को, हमारे टिश्यूज को, हमारे ब्रेन को वो अच्छी तरह से पहुंचेगी, और जाहिर है आप जो है वो फ्लेक्सिबल जो है वो किसी भी एज के अंदर जो है रह सकते हैं।
0: योगा की अगर हम बात करते हैं कि आपने ये सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन योगा करने के कुछ तरीके भी हैं, जैसे जाहिर सी बात है उसके फ़ायदे भी हैं तो नुकसान भी हो सकते हैं, कि जिन चीज़ों को हम फ़ायदा समझ कर रहे हैं उसको अगर हम अलग वक्तों में करते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदेह भी साबित होता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि योगा जो है, योगा का वक्त क्या है और कौन सा योगा हमारे लिए, एक आम इंसान के लिए फ़ायदेमंद है।
1: देखिए अगर मैं कहूँ तो जैसे आपको पता है कि कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, हम किसी वॉक के लिए भी करते हैं या योगा के लिए भी करते हैं, तो मॉर्निंग का टाइम हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सही होता है। इंसान सो के उठता है, रिलैक्स्ड होता है, बॉडी भी रिलैक्स्ड होती है, तो वो जो है वो बेहतरीन टाइम होता है। खाना खाने के बाद हम योगा को बिल्कुल मना करते हैं कि इसको नहीं करना चाहिए, जबकि हमारा मैदा जो है वो पूरा भरा हुआ हो। तो कोई भी एक्सरसाइज हो, कुछ भी हो, आपको मॉर्निंग आवर्स में के अंदर जो करनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरह से कि आपको टाइम नहीं मिल रहा है, हो सकता है आपकी नाइट शिफ्ट हो ना कुछ, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर सकते हैं। योगा में नुकसान कोई नहीं है, कभी भी किसी टाइम भी करने में कोई भी नुकसान नहीं है। ये हमें अपने दिल से जो है वो निकालना होगा, कभी भी करेंगे आप उसको जो है वो फायदा ही होगा। अब ये डिपेंड करता है आपने कौन सी, कितनी रिग्रस एक्सरसाइज करी है, आपने अपनी एज के हिसाब से करी है, आपने मौसम के हिसाब से करी है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व है।
0: देखिए इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में हर आदमी अपने आप में परेशान है, और कमाल ये है कि आज के इस दौर में आदमी क्यों परेशान है उसको खुद पता नहीं है कि क्यों परेशान है। लेकिन योगा ने कुछ चीज़ें ऐसी बनाई हैं, कुछ आसन ऐसे हैं योगा के जो आपकी इन परेशानियों को दूर करता है। तो इन परेशानियों को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या कौन से ऐसे आसन को और कब करना चाहिए?
1: देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि मॉर्निंग का टाइम है, तो हम जो स्टार्ट करते हैं वो खुदा का नाम लेके करते हैं। अब कोई भी रिलीजन में, किसी में हो, कुछ हो, हम जो दो मिनट के लिए बैठते हैं और अपने उस खुदा को याद करते हैं जिसने हमें ये बनाया और हमें इतनी एबिलिटी दी कि हम ये कर सकते हैं सब है। उसके बाद जो है हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्टार्ट करते हैं, हम एक सिंपल वॉक से स्टार्ट करते हैं। और हमें एक बात मैं बता दूं कि हमें ये नहीं कि हमें वॉक करने के लिए, भाई मेरे घर के बाहर तो जगह नहीं है, मैं जा नहीं सकती है, गर्मी है कुछ नहीं, हमें सिर्फ एक थोड़ी सी जगह ही चाहिए, आपके डाइनिंग टेबल के पास हो सकती है, आपके बेडरूम में हो सकती है, आपके स्टडी रूम में हो सकती है, हमें बस एक थोड़ी जगह चाहिए, हमें वॉक करने के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं चाहिए। हम एक जगह खड़े होकर भी 5 से 7 मिनट तक जो है वो वॉक कर सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी उसके आगे करने के लिए जो है वो यूज्ड टू हो जाए कोई भी आसन करने के लिए।
0: बिल्कुल ठीक है, आपने नहीं।

0: के लिए, एंग्जाइटी के लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो
1: हाँ
0: सबसे अच्छा प्राणायाम, जिसे हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते
1: जी
0: हैं, वो सबसे बेस्ट होती है। इवन देखा गया है कि अगर बिल्कुल नींद भी नहीं आती है, अगर आप 10 मिनट भी ब्रीदिंग करके आप सो जाओ तो आपको बहुत अच्छी जो है वो नींद आ जाएगी।
1: जी
0: आप सिंपल कुछ नहीं कर सकते, हम लोम विलोम कर सकते हैं कि आप जो है एक नोस्टिल को आप बंद करेंगे और दूसरी नोस्टिल से आप जो है वो सांस लेंगे, और फिर जो है वो पहले, जैसे अगर आपने लेफ्ट से लिया तो आप जो है वो राइट से उसको निकालेंगे, फिर इनहेल करेंगे राइट से और फिर लेफ्ट से निकालेंगे, ये आप जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, आपको बहुत सारा भस्त्रिका है, आपको बॉक्स ब्रीदिंग है कि आपको सांस लेना है और फिर उसको सांस को होल्ड करना है। आप जितनी देर तक भी होल्ड सकते हैं आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, और उसके बाद आपने उसको एक्सहेल करना है और उसके बाद भी आपको उसको होल्ड करना है,
1: जी
0: फिर आप ये जो है वो कर सकते हैं। आप 10 मिनट जो है वो ये कर सकते हैं। फिर आप भस्त्रिका है जिसमें आपको जो है वो हम लोग मना करते हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर वगैरह होते हैं उनके लिए हम मना करते हैं कि आपको बहुत तेजी के सांस सांस लेना है और फिर छोड़ना है। जैसे मैं बता देती इस तरह से जो है वो करना है। तो जितने भी प्राणायाम है, जितनी भी एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इस सारी की सारी हमारी एंग्जाइटी को, हमारे मेंटल स्ट्रेस को कहीं ना कहीं जो है वो कम जो है वो करती है, उसको जो है रिड्यूस करती
1: बिल्कुल
0: है।
1: सही फरमाया आपने। अब एक चीज़ और है कि आज के दौर की अगर हम बात करें, वही फिर आ जाता है कि भागती दौड़ती ज़िंदगी में जब हम भाग रहे हैं अपने हदफ के पीछे, भागते जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं कि हमारा हदफ क्या है, उस हदफ के पीछे भागते जा रहे हैं, तो इसमें दो चीज़ें हमारे सामने आती है। एक सबसे बड़ी चीज़ है कि नींद की कमी होती है, हम सो नहीं पाते हैं, और शायद नींद की कमी होने की वजह से हम जो है कब्ज़ के शिकार हो जाते हैं। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जिस्म से हमारी ताकत को भी ख़त्म कर देता है, हमारे चेहरे से भी नूर को ख़त्म कर देता है, हमारे चेहरे से भी रौनक ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए कुछ है क्या?
0: देखिए ये तो इतनी कॉमन प्रॉब्लम है कि
1: जी
0: आज सेकंड जो है वो पेशेंट है वो मेरे पास वही आता है, और वो यंगर जनरेशन जो 22 22 साल के हैं वो बताते हैं
1: जी
0: प्रॉब्लम डिजिटल। आप सब सोएंगे आप देर से तो आप जागेंगे
1: देर
0: जो
1: से
0: है वो देर से, ठीक है। अच्छा मैंने जो देखा है 80%, मैं आपको बता रही हूँ मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है वो पेशेंट्स का, 80% 11 बजे के बाद जो है वो डिनर करते हैं। अच्छा ठीक है, जिनकी नाइट ड्यूटीज है, कुछ है, कोई वर्क प्रॉब्लम है तो अदरवाइज, लेकिन लोगों ने रूटीन बना रखा है कि वो देर से जो है वो खाना खाएंगे। देखिए योग में भी है, सब में भी है, आपको अर्ली डिनर करना चाहिए, अर्ली डिनर। मैं खुद ही है, 6 से 7 बजे के बीच में मेरा अर्ली डिनर जो है वो हो जाता है, और डिनर जो है वो लाइट होना चाहिए। सोने में और खाने में रात के में कम से कम 4 घंटे का जो है फर्क रहना चाहिए। हम रात में बहुत हैवी मील ले लेते हैं, हम रात में जो है वो बहुत ज़्यादा कोई जंक फूड वगैरह ले लेते हैं, ठीक है। तो ये अब आप देखिए सिर्फ योग ही नहीं है, आप मैंने बताया योग के अंदर डाइट भी है।
1: बिल्कुल
0: अब उसके अंदर डाइट के अंदर अब आप पानी कितना पीते हैं, जो कॉन्स्टिपेशन का सबसे बड़ा जो है वो कॉज है कि आप कितने लीटर पानी पूरे दिन में आप पीते हैं, तो आप पानी जो बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, नहीं कराएंगे, तो ये तीन। और आपकी डाइट क्या है, आपके अंदर उसमें आप कोई फाइबर लेते हैं कि नहीं लेते हैं, आप उसके अंदर ग्रीन वेजिटेबल्स लेते हैं कि नहीं लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर इंक्लूड है। मैं बताऊं, इंसान अपने खुद ही सबसे बड़ा दुश्मन है, उसने अपनी लाइफ को खुद इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में हैं, डाइट हमारे हाथ में है, एक्सरसाइज हमारे हाथ में है, पानी पीना हमारे हाथ में, लेकिन हम उससे जो है वो फायदा नहीं उठा सकते।
1: देखिए हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और कहा यह गया था कि मशीनों का ज़माना है, मशीनी दौर में हम जी रहे हैं। सुबह हम उठते हैं तो भागना है, हमें ऑफिस जाना है, इसलिए सही से नाश्ता नहीं कर पाते हैं। दोपहर में हम ऑफिस में होते हैं तो खाना ढंग से खाने की ज़रूरत नहीं, पेश आती है कि कुछ और जाना है, मीटिंग है, ये है वो है, तो हम खाना भी नहीं खा पाते हैं। ले देकर हमारे पास रात बचता है। तमाम हकीमों ने, डॉक्टरों ने और वैद्य ने और योगा के जो टीचर हैं सभी कहते हैं कि रात में आप कम खाना खाइए, तो वक्त कहाँ मिलेगा कि हम खाना खाएं? तो हम जैसे लोग कहाँ जाएं? रात में एक वक्त मिलता है हमें खाना खाने का, और वही एक वक्त में हम खाना खाते हैं। तो क्या ऐसी कोई चीज़ है या कोई ऐसा योगा या कोई ऐसा तरीका जिससे हम अपनी चीज़ों को, अपनी ख्वाहिशों की तकमील भी कर लें और अपनी सेहत को भी बरकरार रखें?
0: देखिए आपके सामने जिंदा मिसाल मौजूद है, मैं खुद वर्किंग हूँ, मेरा टाइम 9 to 5 है
1: जी
0: और मुझे घर आते आते 6 बज जाते हैं, लेकिन आप मेरी बॉडी, आप जिस तरह से करेंगे ना आपकी बॉडी उसी तरह से अडेप्ट कर लेगी उन चीज़ों को, ठीक है
1: जी। आप बता रही थी अपने बारे में, मिसाल दे रही थी कि आप अपनी मिसाल खुद हैं, तो वाकई मैं आपको देख रहा हूँ, आपके चेहरे पे जो ताजगी है, जो नूर है, वाकई देखने में लग रहा है कि आप चीज़ों को संभाल के रखा हुआ है, अपनी सेहत को बरकरार रखा हुआ है। लेकिन हम लोग इसको कैसे करें, ये हम आम इंसान की या हम जैसे लोग जो ऑफिस में जा

0: करते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि बिज़ी बताते हैं, बहुत ज़्यादा काम करने वाले दिखाते हैं और इस चक्कर में हम कुछ नहीं कर पाते हैं।
1: देखिए, खुदा ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बताया है।
0: जी
1: ठीक है, आप ये मानेंगे कि योगा के ऊपर हम इतना इंफेसिस कर रहे हैं, ये क्या है, ये सिर्फ एक माइंड गेम है।
0: जी,
1: आप अपने माइंड को जिस तरह डाइवर्ट करेंगे आप उसी तरह से हो जाएगा। अगर आपको सोच बार बार ये सोच लगेंगे कि मुझे भूख लग रही है जबकि आपका पेट भरा हुआ है, 10 मिनट के बाद आपको भूख लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पूरी बॉडी का, आप जैसे आप अपनी बॉडी को कंट्रोल करेंगे, जैसे आप अपनी बॉडी को कहेंगे कि ये हो रहा है, बॉडी का वही ऑर्गन, वही टिश्यू उसी तरह से जो है वो काम करना शुरू होता है। देखिए, हमारे यहाँ जैसे कहते हैं कि नमाज पढ़ने से पहले कहते हैं कि अगर 40 दिन तक पढ़ते रहो तो आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। 40 दिन का क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप उसकी रोज करना स्टार्ट करो तो वो फिर हैबिट के अंदर आ जाता है। यही सारी चीज हर चीज में है, चाहे वो डाइट के अंदर हो, चाहे वो एक्सरसाइज के अंदर हो, चाहे वो योगा के अंदर हो, किसी चीज के अंदर भी हो। तो इसी तरह से अगर आपने अपने माइंड को करना शुरू कर दिया, मैं बताती हूँ कि मैं संडे तक में भी जो है वो योगा की जो है नहीं करती। लोग बाग कहते हैं कि नहीं, आज संडे है, मैं वर्किंग हुई कुछ, मगर वो मेरे एक माइंड के अंदर आ गया है और मुझे कभी अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है उठने के लिए। मुझे पता है कि ये मेरी योगा का टाइम है और मुझे उस टाइम पे योगा करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह, ना तो मुझे इस उम्र में, आई एम 64 ईयर्स, ना तो मुझे डायबिटीज है, ना ही मुझे हाइपरटेंशन है। तो खाली एक फिर वही मैं बता रही हूँ कि एक सारी चीज़ें मिलती हैं इसके अंदर। वहाँ आपकी पॉजिटिव थिंकिंग भी मिलती है, वहाँ आपका डाइट भी मिलता है, वहाँ आपका एक्सरसाइज भी मिलती है, और आप कितने एक्टिव रह रहे हो ये तो सब आपके ऊपर डिपेंड करके रहता है ना। कि दो लोग हैं अगर और दोनों को फीवर है 100 है, तो एक कहता है कि नहीं मुझे तो बहुत बीमार हूँ, मैं तो सिर्फ आज लेटूंगा आराम करूंगा। दूसरा कहता है नहीं, मैं एक टेबलेट खा के और मैं काम पर चला जाऊंगा, मैं ठीक है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। चूंकि आप खुद खातून हैं, तो हमारी ख्वातीन के लिए आप क्या कहना चाहेंगी, उनको क्या बताएंगी कि किस तरीके से वो अपने खानदारी में योगा को शामिल करें और किस तरह
1: रहती हैं, अपना जो है वो ख्याल वो कम रखती हैं। अच्छा, हमें एक एक पट मैं कहती हूँ कि ठीक है, हमें टाइम नहीं है, कहते हैं कि हमें बच्चों को स्कूल भेजना है, ये कुछ करना, टाइम नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे मौके हैं कि जहाँ आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम कहते हैं अगर काफ एक्सरसाइज करना है, काफ जो आजकल जो है वो सेकेंड हार्ट जो है वो कहलाता है। अब आप किचन में खड़ी हुई, आप फॉर एग्जाम्पल दूध गर्म कर रही हैं, आप आराम से अपना काफ रेजेस कर सकती हैं, आप दूध भी कर सकती हैं और आप अपने जो है वो काफ को जो है वो रेस कर सकती हैं और उसमें आपका काफ रेजेस की एक्सरसाइज हो जाएगी। वहीं आप कुछ कर रही हैं,
0: ये एक्सरसाइज कैसे किया जाता है, ये अगर
1: यहाँ आप पंजों के बल पे आपको खड़ा होके और फिर नीचे करना होता है, फिर पंजों के बल खड़े हुए फिर हुए, तो इस तरह से जो आपके काफ मसल्स हैं, जो पिंडलियां जिसे हम पिंडली कहते हैं, वो रेज हो जाएंगी। तो वो उससे आपको एक स्ट्रेच मिलेगा। तो ये आप खाना बना रही हैं, दूध गर्म कर रही हैं, कुछ और काम कर रही हैं, वहां आराम से कर सकती हैं। कुछ शोल्डर एक्सरसाइज हैं, आप खड़े होके किचन में जो है वो शोल्डर एक्सरसाइज जो है वो कर सकती हैं। बहुत सी खातिन
0: कैसे कर सकते हैं
1: वो, कुछ नहीं, आप खड़े हुए हैं, आपको कंधों को खाली ऊपर नीचे करना है। आप हाथ के बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो आप हाथ शोल्डर एक्सरसाइज जो है वो कर सकती हैं, खाली कंधों को ऊपर नीचे नहीं करना है। आप नेक को भी जो है वो एक्सरसाइज, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इतना ज्यादा कॉमन हो गया है, आपको खाली क्या करना है, नेक को ऊपर नीचे करना है, आपको दाएं बाएं करना है, आपको क्लॉकवाइज करना है, आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है। और एक मैं आपको एक्सरसाइज बता देती हूँ कि खासतौर से थायराइड आजकल बहुत कॉमन जो है वो हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि आपको फेस अपना ऊपर करना है और नीचे वाले जबड़े को चलाना है 15 से 20 बार ऐसे करके, ताकि आपका नीचे वाला जबड़ा पूरा हिले। तो ये एक थायराइड के लिए एक बहुत ही अच्छी जो है एक्सरसाइज है। तो ये मैंने बताया जो माइंड गेम है, हमें अपने माइंड को डाइवर्ट करना है कि हम इसके साथ साथ ये भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल जी हाँ, जैसा कि आपने अभी बताया कि जो खातून हैं जो घर में रहती हैं, खाना बनाती हैं, वो किचन में भी वो खड़े होकर अपने कंधों की एक्सरसाइज कर सकती हैं, अपने गर्दन की एक्सरसाइज कर सकती हैं, अपने जबड़े की एक्सरसाइज कर सकती हैं, अपने पिंडली और मसल्स की एक्सरसाइज कर सकती हैं, और आपने सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से बताया। इसके अलावा हमारे उन लोगों के लिए जो रेडियो सुन रहे हैं, जो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जो हमें नहीं देख पा रहे हैं, उनके लिए हम अगर कुछ बताना चाहें तो कौन से ऐसे एक्सरसाइज हैं या कौन से ऐसे आसन हैं जिसको वो कर सकते हैं, करने के बाद जो है अपनी सेहत को बेहतर तरीके से रख सकते हैं।
1: देखिए, सबसे कॉमन तो आजकल जो है वो डायबिटीज, जिसे हम डायबिटीज मेलिटस कहते हैं, तो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन जो है वो हो रहा है। हमारे योग में बहुत सारे ऐसे आसन से जिनका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो पेंक्रियास के ऊपर होता है, इंसुलिन सेंसिटिव होते हैं, तो उसे हम कहते हैं अर्धनारीसेन आसन, कि आपको जो है एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर जो है बैठने के बाद जो है वो क्रॉस करना होगा। ठीक है, और क्रॉस करने के बाद जिस तरफ आपका घुटना

0: है आपको उसी तरफ अपना मुंह करना होगा, तो उससे क्या होता है कि उस आपका जो घुटने का इफेक्ट है वो आपके पैंक्रियास के ऊपर आता है। फिर यही आपको एक बार राइट साइड से करना होता है, एक बार जो है वो लेफ्ट साइड से जो है वो करना होता है। तो ये एक बेहतरीन आसन है, अर्धनारीसेन आसन, जो हम डायबिटीज के लोगों को जो है वो जो है
1: जी,
0: खासतौर से बताते हैं।
1: वे डायबिटीज़ और ज़ायबिटीज़ की बात कर रहे हैं तो ये मामला तो ऐसा है कि ये बीमारी, अब पहले ये कहा जाता था कि ये अमीरों की बीमारी हुआ करती थी, यानी जो लोग बहुत आराम पसंद होते थे, आराम तलब होते थे, अमीर से मुराद ये मामला था कि आराम पसंद है, आराम तलब है। लेकिन ये बीमारी देखने में आया कि अब छोटे बच्चों को भी हो रही है और सभी को, ये कोई किसी खास तबके की नहीं रह करके सभी में हो गई, तो इसकी वजह क्या है डॉक्टर साहब?
0: इसकी वजह तो अभी मैंने आपको बताई थी, लाइफ स्टाइल आपका किस तरह से। अब देखिए जेनेटिक आ रही है तो उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो आएगी, लेकिन आज की दुनिया में हमारा लाइफ स्टाइल कैसा हो गया है वो सारी बीमारियां उसी की देन है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो ओबेसिटी हो, चाहे वो दिल की कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हो, सारा हमारी लाइफ स्टाइल के ऊपर ही सारा जो है वो डिपेंड होकर रह गया है कि हम जो है देर से सो रहे हैं, देर से हम उठ रहे हैं, खाना हम देर से खा रहे हैं, हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अगर हम टीवी के सामने बैठे हैं तो हम पूरा जंक जो है वो खाए जा रहे हैं। तो इससे तो संभलना होगा, या हम
1: जी
0: डिजिटल पे अपने मोबाइल पे जो है वो जो है दो दो तीन तीन घंटे हैं। और मैं बताऊँ योग में बहुत सारी ऐसी आंखों की भी इतनी अच्छी एक्सरसाइज हैं, ये
1: जी
0: छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं, मैं आपको बता देती हूँ
1: जी,
0: कभी
1: बिल्कुल
0: भूल
1: बिल्कुल
0: जाऊंगी
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: कि कुछ नहीं है, आपको अपनी पलकों को जल्दी जल्दी जल्दी जो झपकना है, बहुत जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जो है झपकना है, तो उससे आपकी आंखों पे थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे भारी हो रही है,
1: जी
0: लेकिन इससे आंखों का सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, उसकी रोशनी के ऊपर भी असर होता है। फिर
1: अच्छा
0: आपको आंखों से एक बार राइट देखना है, एक बार लेफ्ट देखना है, राइट देखना है, लेफ्ट देखना है, राइट आहिस्ता आहिस्ता, लेफ्ट राइट, इस तरह से जो है वो देखना है। फिर अपनी आईज को आपने रोटेट करिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप कुर्सी पे बैठ के भी, अगर आप ऑफिस में हैं, आपका लंच टाइम है, आप 10 मिनट में उसमें बैठ के भी जो है वो एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हैं। या आप
1: जी
0: अपनी आंखों के सामने आप अपनी एक फिंगर रखेंगे और उस फिंगर को आप जो है वो दूर लेके जाएंगे, उसको बराबर उसको फिंगर को देखेंगे और उसको जो है वो पास लेके जाएंगे, मतलब उसके फिंगर के ऊपर आपका बराबर कंसंट्रेशन रहेगा, तो ये आपकी आंखों के लिए बहुत ही बेहतरीन एक जो है वो एक्सरसाइज है, इस तरह से जो
1: बिल्कुल,
0: है बैठ के आप कहीं भी जो है वो कर सकते
1: तो
0: हैं।
1: ये आंख के साथ साथ दिमाग के लिए भी है मुझे
0: बिल्कुल
1: तो लगता है।
0: बिल्कुल,
1: जी
0: आपका इसमें कंसंट्रेशन बढ़ेगा,
1: बिल्कुल
0: कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इसका मतलब है आपका दिमाग जो है वो एक्टिव हो रहा है उस
1: एक्टिव हो
0: चीज
1: रहा
0: को
1: है।
0: कैच करने के लिए।
1: जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो दो तीन चीज़ें आपने बहुत अच्छी बताई जो मेरे लिए भी फ़ायदेमंद है और हमारे सामईन के लिए भी है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि योगा तो हो गया, एक्सरसाइज हो गई, उसके अलावा जो है हम आपके पास जाते हैं जब कोई बीमार होता है, यानी हम बीमार होते हैं तो हम आपके पास जाते हैं, आप हमें दवा जो है सजेस्ट कर देती हैं, दवा बताती हैं, हम उस दवा को खा लेते हैं। लेकिन जैसा कि आपने शुरू में ही कहा था कि बचाव बेहतर है, दवा से बचाव बेहतर है, तो बचाव के लिए हम ऐसा क्या करें कि हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत ना पड़े? हालांकि डॉक्टर से ये सवाल करना बड़ा अजीब सा मुझे लग रहा है, लेकिन ये बताइए कि हमें डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा क्या हम करें? ऐसा या तो हम खाने पीने में ऐसी कौन सी चीज़ें लेकर आएँ, अपने खाने पीने को कैसे हम बेहतर बनाएं, या फिर योगा में हम कैसे योगा को हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें जो हमारे ऊपर भी बहुत वज़न भी ना लगे, यानी गिरा भी ना गुजरे, और हम आसानी के साथ उसको करते चले जाएं, खाने पीने में भी उस बदलाव को हम शामिल कर लें जिसकी वजह से हमें डॉक्टर के पास न जाना पड़े इलाज के लिए।
0: देखिए जामिया हमदर्द ने मजीदिया यूनानी हॉस्पिटल है,
1: जी
0: उसके अंदर मैं 2 दिन जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ओपीडीज करती हूँ।
1: जी
0: मतलब यह है कि मुझे दवाइयों पे बिल्कुल नहीं देना चाहती, मैं उसको कहीं ना कहीं इन्हीं की तरफ लाना चाहती हूँ। सबसे
1: जी
0: पहले बैठ के मैं हिस्ट्री पूछती हूँ कि आप क्या काम करते हो, आपका कितने बजे सोते हो, आप कितने बजे उठते हो, आप क्या खाना खाते हो, कितने बजे आप खाना खाते हो, कोई एक्सरसाइज किस तरह से करती, कितना आपको मेंटल स्ट्रेस है,
1: बिल्कुल
0: उसी के हिसाब से मैं उसको जो है वो ट्रीट करती हूँ। देखिए 2-3 बातें हैं जो अगर हम यही इंक्लूड कर लेंगे अपनी लाइफ में तो ये मतलब 99% लोग पानी नहीं पीते हैं, इतना पानी, एडिक्वेट पानी नहीं पीते हैं जिनको जितनी की उनकी बॉडी को ज़रूरत होती है हाइड्रेट करने की।
1: जी
0: उसके बाद उनको गैस्ट्राइटिस हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की तो एक खास वो है बीमारी हो रही है। तो ये है कि जितना आप ज्यादा पानी पियेंगे उसमें आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेट होगी, ये है, अवॉइड करते हैं। अब वो अलग वजह है, कुछ लोग वर्किंग प्लेस पे हैं इसलिए वो करते हैं वो, लेकिन आपको बताना है कि आपको पानी जो है वो ज्यादा जो है वो पीना है। आपको बताना है कि घी तेल का कम इस्तेमाल जो है वो करना है, ज्यादा घी तेल के, जैसे आपको हमारे यहाँ की जो है वो डिशेज जो है वो काफी उसमें वो होता है, तो आपको घी तेल का जो है वो बहुत से कम का कम जो है वो इस्तेमाल करना है। मैदा का इस्तेमाल आप अपनी जो है वो डाइट में बिल्कुल ना करें। बेकरी प्रोडक्ट का कोई भी इस्तेमाल जो है वो अपनी उसमें ना करें। आपको सिर्फ एक सिंपल डाइट जो है रखनी है, मिलेट्स आपको जो है वो अपनी डाइट के अंदर रखने हैं, जवार बाजरा आजकल जो हो रहा है वो आपको अपनी उसमें, रोटी भी खा सकते हैं आप, उसका दलिया भी जो खा सकते हैं, जौ का दलिया बहुत ज्यादा जो है वो मुफीद होता है, बहुत हल्का होता है, ये करना है। और कभी कभी हम क्या कहते हैं कि हम स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लो आप, थोड़ी थोड़ी देर के बाद थोड़ा थोड़ा करके ले लो, ये नहीं कि फिर क्या होता है कि हम एकदम से भूख लगती है और हम ज्यादा खा लेते हैं, या शाम में हम एकदम से भूख लगती है ज्यादा खा लेते हैं। अगर हम छोटी छोटी स्मॉल फ्रीक्वेंट और वो भी जो है वो जंक नहीं खा के, जैसे हमने अब थोड़ा सा हमने चना काला चना है वो हमने उबाल के खा लिया, या हमने कुछ स्प्राउट्स जो है वो खा लिए, या हमने कुछ ऐसा हेल्दी जो है वेजिटेबल सूप पी लिया, तो अगर थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे दो दो घंटे के बाद, तो हमें वो जो हमें अर्ज जो होती है डिनर के टाइम पे या उसको हम किसी तरह से जो कम जो है वो कर सकते हैं। नट्स का बहुत ज़्यादा रोल है, अगर आप कोई बात नहीं वॉलनट वगैरह जिसे हम अखरोट कहते हैं, ये आप दो तीन भी आप खाएं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग को भी बहुत ज़्यादा जो है उसके लिए जो फायदेमंद जो है वो हो सकता है। और रात में यह है कि हल्की गजाएं, बहुत सारे जो है वो अब आपको देखना चाहिए इसमें प्रॉपर प्रोटीन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये जा रहा है, ये ना चाहो कि उसमें एक्सेसिव कोई शुगर हो। तो एक और सर्टेन एज के बाद 40 साल के बाद आपको एक शुगर और सॉल्ट का इंटेक तो आपको अपनी लाइफ में कम ही करना होगा आगे एक जिंदगी जो है वो अच्छी जीने के लिए। तो आपको ये देखना होगा कि आपका सोर्स क्या है, उसके साथ साथ खाने के साथ साथ फिर वही कि पॉजिटिव थिंकिंग। और अगर आप खाना खा रहे हो और बहुत ज्यादा गुस्से में खाना खा रहे हो तो इसका इफेक्ट बॉडी के अंदर अलग होगा, और अगर आप खाना खा रहे हो एक पॉजिटिव रिलैक्स होकर खा रहे हो तो उस खाने का असर आपकी बॉडी के ऊपर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट जो है होगा।
1: जी डॉक्टर आशा साहिबा, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई। अब आखिर में हमारे लिसनर को कोई पैगाम देना चाहेंगी?
0: देखिए मैं ये कहना चाहूँगी ख़ासतौर से क्योंकि एज ए फीमेल, मैं खुद फीमेल हूँ और मैंने जो है वो योगा जो है करते हुए मुझे 17-18 साल हो गए बराबर, और मैं यही कहूँगी औरतों के लिए कि आपको अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना है। आप ये मत सोचिए कि हमें टाइम नहीं मिलता, 24 घंटे होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम होता है आपको, फिर जो है आपको जब ख्याल आएगा जब वो टाइम निकल चुका होगा। तो अपनी लाइफ के लिए कम से कम 10 मिनट आप निकाल सकती हैं, वो कहीं भी निकाल सकती हैं, वो किचन में भी निकाल सकती हैं, वो वॉशरूम में भी निकाल सकती हैं, वो अपने ड्राइंग रूम में भी निकाल सकती हैं, आपको बहुत ज़्यादा तामझाम करने की कहीं भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे 10-15 मिनट जो है वो अब बहुत सारे जो है ऑनलाइन जो है इतना आ गया है कि आप देख के जो है वो आपको नहीं आता, ऑनलाइन खोलिए योगा की इतनी क्लासेस है वो आप कर सकते हैं। तो इस सब चीजों पे आप खुद अपना जो है वो ध्यान रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप सही रहेंगी तो आप अपने पूरे परिवार को सही रख सकती हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा परवीन साहिबा, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने योगा के तिब्बी फायदे पर रोशनी डाली। सामईन इकराम, योगा सिर्फ वर्जिश नहीं बल्कि एक तर्ज जिंदगी है, ये हमें जिस्मानी सेहत, ज़हनी सुकून और रूहानी बालीदगी अता करता है। आइए आज से हम योगा

0: को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और अपने वजूद को हम आहंगी और सुकून की तरफ ले जाएं। चलते चलते आपको ये भी बता दूं कि इस प्रोग्राम को तर्तीब दिया था इंतज़ार सैफ़ी ने। तो सामईन इकराम, इसी उम्मीद के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और प्रोग्रामों के साथ, कुछ और मेहमानों के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान शाहनवाज़ हाशमी को प्रोग्राम ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर शाम के 4 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी में, उसके तुरंत बाद अंग्रेजी में।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निकम। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण से होगा। ये भाषण भारत की तेजी से बढ़ती वैश्विक डिजिटल उपस्थिति पर केंद्रित होगा। विवाटेक सम्मेलन के इस संस्करण में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंडप होगा। प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा की 5 दिन की यात्रा पर हैं। यात्रा के पहले दिन मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में उनका स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति बैतूल में आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समुदायों का सशक्तिकरण कार्यक्रम में शामिल हुई। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि विकास की यात्रा में समाज का कोई भी वर्ग पीछे न छूटे।
3: 2047 विकसित भारत बनाने के लिए हम सोचे हैं। पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, ये देश एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। राष्ट्र पुरुष का प्रत्येक अंग हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक अक्षत होना चाहिए, क्षति नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ये भारत में रहने वाले जनता, कोई भी समाज पीछे ना रह जाए।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से ओडिशा की यात्रा पर रहेंगी। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत

भारतीय जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन का समय मिल गया है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्रीय समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से अपनी नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा। ईरान 30 दिन के अंदर होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों के लिए सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा। इस समझौते के अंतर्गत संघर्ष विराम में लेबनान भी शामिल है। इससे इसराइल और हिजबुल्ला से जुड़े सीमा पार तनाव कम हो सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 से पहले योग से जुड़ी कई गतिविधियां शुरू हो गई हैं। पिछले कुछ वर्षों में अमीरात में योग अनौपचारिक समूहों से आगे बढ़कर विद्यालयों, कार्यस्थलों और सार्वजनिक संस्थानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत की ओर से दीपिका ने 2 गोल और दीपिका सोरेंग ने 1 गोल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मेक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। इससे पहले कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। ये सूचना हमें मिली है, जानकी देवी सूचित करती हैं कि उनकी पुत्री अंजू, जिसकी उम्र 22 वर्ष, कद 5 फुट 1 इंच है, जिस्म मजबूत और उनको अंतिम बार गली नंबर 7 नई बस्ती आनंद रोड नंदग्राम में देखा गया है। यदि आप अंजू से संबंधित कोई जानकारी या सूचना रखते हैं तो थाना नंदग्राम गाजियाबाद को सूचित करें। श्रीमती ऊषा देवी पत्नी रामचंद्र सूचित करती हैं कि उनकी पुत्री आरती, जिसकी उम्र 27 वर्ष, शरीर सामान्य, कद 152.4 सेंटीमीटर है, वह 29 अप्रैल 2026 से अपने घर से बिना बताए चली गई है। आरती से संबंधित जानकारी के लिए आप थाना नंदग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। खोए हुए व्यक्ति का नाम है विनोद, पुत्र हरिलाल, निवासी नई बस्ती हरवंश नगर, 3 मई 2026 को आखिरी बार अपने घर पर देखा गया था। विनोद की आयु 28 वर्ष, शरीर सामान्य, कद 165 सेंटीमीटर है। उसके विषय में कोई सूचना यदि आप रखते हैं तो थाना नंदग्राम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद को सूचित करें। थाना नंदग्राम से ही एक सूचना हमें मिली है। श्री नंदलाल सूचित करते हैं कि उनकी पत्नी श्रीमती पूनम, जिनकी आयु 27 वर्ष, शरीर सामान्य, कद 4 फुट 5 इंच है और दाहिनी हाथ पर टैटू बना हुआ है, वह लापता है। उनकी सूचना थाना नंदग्राम गाजियाबाद से ली जा सकती है। ये सूचना हमें मिली है अर्जुन पुत्र माताफेर, जो 26 अप्रैल 2026 से अपने घर 83/2 मॉडल टाउन वेस्ट थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद से लापता हैं। अर्जुन की उम्र 39 वर्ष, बदन इकहरा, चेहरा लंबा, कद 5 फुट और करीब चेहरे पर उनके झाइयां हैं। उनके विषय में जानकारी देने वाले को ₹5,000 इनाम दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए थाना कोतवाली नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद से संपर्क कर सकते हैं। खोए हुए व्यक्ति का नाम है राशि, उम्र 8 वर्ष, सामान्य शरीर, कद 3 फुट 4 इंच, वह 30 अप्रैल 2026 से 8 बजे कल्लूपुरा थाना कोतवाली नगर से लापता है। पता है श्रीमती जूली पत्नी रणबीर, ललित का किराए का मकान नंबर 196 कल्लूपुरा अथवा थाना कोतवाली नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद को सूचित कर सकते हैं। खोए हुए व्यक्ति का नाम है पूजा कुमारी, अंतिम बार गांव खांडसा गुरुग्राम में देखा गया। उनकी उम्र है 18 महीने 5 वर्ष और 14 दिन, रंग गोरा, चेहरा लंबूदरा, शरीर दरमियाना मजबूत, कद 5 फुट है, वह सामान्य परिस्थितियों में घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। इनके बारे में अधिक जानकारी थाना सेक्टर 37 गुरुग्राम से प्राप्त की जा सकती है। गुमशुदा लड़की अनन्या पुत्री सतीश कुमार, निवासी ग्राम मनोरपुर थाना अमरोट जिला छपरा बिहार, हाल का पता है किराएदार गांव नरसिंहपुर थाना सेक्टर 37 जिला गुरुग्राम। अनन्या की उम्र 13 वर्ष, वह अंतिम बार 6 अक्टूबर 2025 को देखी गई, कद 5 फुट है। उनके संबंध में कोई सूचना या जानकारी यदि आप रखते हैं तो थाना 37 सेक्टर गुरुग्राम को दी जा सकती है। तो ये थी जानकारी गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित।
हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

0: शमा महफिल में जलती है दीवानों के लिए, और ये महफिल सजी है आप जैसे खास मेहमानों के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आदित्य।
1: और मैं हूँ पारुल। आप सुन रहे हैं युववाणी, आपकी आवाज। दोस्तों, आज की दुनिया दो चीजों के बिना शायद अधूरी सी लगती है, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स। एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्र हमारी डिजिटल दुनिया को शेप कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्पोर्ट्स हमें डिसिप्लिन, टीम वर्क और रेजिलियंस सिखाते हैं।
0: बिल्कुल पारुल, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों ही फील्ड्स लगातार इवॉल्व हो रही हैं। टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स को निरंतर बेटर बनाते जा रहा है,
1: और स्पोर्ट्स ह्यूमन कनेक्शन का इम्पोर्टेंस समझाता है। आदित्य, ये दोनों ही फील्ड अलग तो लगते हैं, लेकिन एक दूसरे से गहरी तरह जुड़े हैं, है ना?
0: हाँ पारुल, इनफैक्ट ह्यूमन कनेक्शन से याद आया, पारुल मैं अक्सर मेट्रो में जब सफ़र करता हूँ तो देखता हूँ कि लोग रियल दुनिया के बजाय रील दुनिया में ज़्यादा व्यस्त होते हैं।
1: बिल्कुल आदित्य, लोग अपने मोबाइल से इतने प्यार में हैं कि अगर फ़ोन की बैटरी 1% हो जाए तो दिल की धड़कनें 100% बढ़ जाती हैं। और सोचिए, हम एक ऐसी जनरेशन है जिसके पास दुनिया भर की नॉलेज एक पॉकेट में है, फिर भी हम अक्सर अपने आसपास बैठे इंसान को जानने की कोशिश तक नहीं करते।
0: सही कहा पारुल। तो श्रोताओं, क्यों ना फिर वो दौर वापस ले आए जब हम फोन से दूर और अपनों के ज्यादा करीब थे।
1: हाँ आदित्य, ये जो इंसान की जरूरत एक दूसरे से जुड़ जाने की है, इसे कोई एल्गोरिदम कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। तो आइए सुनते हैं एक ऐसा गीत जो इस तेज रफ्तार दुनिया में हम सबके दिलों की आवाज बनकर गूंजता है, जो याद दिलाता है कि जिंदगी सिर्फ नोटिफिकेशंस में नहीं बल्कि उन लम्हों में है जो सच्चे दिल से जीते हैं।

ये गाना मेरे दिल के तो बहुत करीब है। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले सेगमेंट की, आज की बात से। आदित्य, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे बचपन से दिल के करीब तो था, लेकिन वक्त और जीवन की भागदौड़ में हम कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं।

0: हमारे बचपन से दिल के करीब तो था, लेकिन वक्त और जीवन की भागदौड़ में हम कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं।
1: पारुल, बचपन की बात से तो मुझे सिर्फ बचपन की मस्ती ही याद आती है। दोस्तों के साथ लोगों के घर की घंटी बजा के भागना, फ्रिज का डोर धीरे धीरे बंद करना इस उम्मीद में कि हम लाइट को बंद होते देख सकें, या फिर कार्ड गेम्स खेलना, चाहे वो WWE हो या फिर क्रिकेट अटैक्स।
0: वेल, क्लोज इनफ। हमारा आज की बात का विषय है बचपन के खेल कूद और गेम्स। याद है जब हम बचपन में सब आइस एंड वाटर खेला करते थे, हाइड एंड सीक?
1: हाँ हाँ, जैसे ऊंच नीच का पापड़ा, पकड़म पकड़ाई।
0: चेन चेन भी याद है? वाह, वो भी क्या दिन थे।
1: तो हम सब के बचपन की यादें ताज़ा करने सुनते हैं हमारे बचपन का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट गाना। गाने के बोल हैं छोटा बच्चा जान के।

0: श्रोताओं नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं 21 जून को योग दिवस है और इस योग दिवस के आलोक में हम जुड़ रहे हैं योगाचार्य सुरक्षित गोस्वामी जी के साथ। गोस्वामी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: गोस्वामी जी, योगा कर्मसु कौशलम, इसका वास्तविक अर्थ क्या है और आज के युवाओं के जीवन में इसकी क्या प्रासंगिकता है?
1: योगः कर्मसु कौशलम गीता के दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को योग की परिभाषा बता रहे हैं। अस्तित्व में गीता में योग की तीन परिभाषाएं आती हैं कि योग क्या है। तो जो कर्म योगी होते हैं, जो काम में विश्वास करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर्म करता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कभी खाली रह सके। कर्म कैसे किया जाए उसकी आर्ट को, उसकी टेक्निक को भगवान ने गीता बताया है। वो कह रहे हैं कि योगः कर्मसु कौशलम, कि जो योग है वो कर्मों की कुशलता है। योगः कर्मसु कौशलम का मतलब है कि कर्म जब आप कर रहे हो तो आप कर्म कर रहे हो और पूरी तरह से अवेयर होकर कर्म कर रहे हो। उसमें फल की इच्छा ना हो, उसमें अहंकार ना हो, आसक्ति ना हो, बस कर्म में पूरी निष्ठा के साथ पूरा स्किलफुल होकर आप उस काम को करते जाएं।
0: जी बिल्कुल। आज हमारी सरकार हो या कोई संगठन हो, सभी इस बात पर एक मत है कि युवा शक्ति भारत को आगे ले जाने में एक बहुत बड़ा योगदान देगी। राष्ट्र निर्माण में हर कोई अपने अपने तरह से योगदान देता है। अगर युवा शक्ति की बात करें और साथ में इसमें योग को हम जोड़ते हुए देखें, तो योग के माध्यम से राष्ट्र निर्माण कैसे हो सकता है, आप क्या कहेंगे?
1: देखो, मन बहुत बिखर रहा है, मन में एक दौड़ है, मन में एक हलचल है, मन में एक चंचलता है। बिखरा हुआ मन किसी भी कार्य को बेहतर तरीके से नहीं कर सकता, लेकिन सधा हुआ मन किसी भी कार्य को बड़े बेहतर तरीके से कुशलतापूर्वक कर सकता है। आज यदि हम देखें, व्यक्ति इंस्टा पर जब रील में होता है तो कितने देर तक एक रील में वो टिकता है, वो कुछ सेकंड में दूसरी रील की तरफ भागना चाहता है। हमारा मन और बिखरा है और चंचल हो रहा है। ऐसे में योग उस बिखरे हुए मन को साधने में हमारी मदद करता है। हर व्यक्ति एक राष्ट्र निर्माण में सहयोगी होता है जब वो अपना कर्म पूरी तरह से, अच्छी तरह से, निष्ठा के साथ, एकाग्रता के साथ उसको कर्तव्य मानकर करता है। यदि वो योग का अभ्यास करेगा, योग के आसन और प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करेगा, तो उसका शरीर स्वस्थ होगा, उसका मन स्वस्थ होगा, मानसिक शांति उसको प्राप्त होगी, भीतर एक हल्कापन होगा और तन में भी एक हल्कापन होगा। जब स्वस्थ तन और मन के साथ व्यक्ति कोई भी काम करेगा तो वह कार्य बहुत ही बेहतर तरीके से होगा, सफल तरीके से होगा। और जब हर व्यक्ति इसी भाव के साथ में काम करेंगे, यानी कि योग के अभ्यास से अपने को तैयार होकर जब हम काम करेंगे, तो वह एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए हम सहयोगी हो जाएंगे। योग भूमिका बांधता है, योग एक आधार है, एक फाउंडेशन है, आपको निर्माण करता है। योग हमें बल देता है, हमें स्वास्थ्य को बेहतर करता है, हमारे मन को बेहतर करता है, बुद्धि के निर्णयों को बेहतर करता है, हमारी इच्छाओं को, हमारी वासनाओं को, हमारे संस्कारों को एक व्यवस्था देता है, एक संतुलितता देता है। और हम जब संतुलित होते हैं और संतुलन के साथ जब काम करते हैं तो हम राष्ट्र निर्माण में सहयोगी हो जाते हैं।
0: जी बिल्कुल। युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास और उनके भीतर सकारात्मक सोच को लाने में

आप सुन रहे हैं युववाणी और अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट का। मन से माइक्रोफोन तक के इस सेगमेंट में आज हम आपको सुनवाने वाले हैं योगाचार्य सुरक्षित गोस्वामी जी और संतोष द्विवेदी जी का वार्तालाप।

0: काम करते हैं तो हम राष्ट्र निर्माण में सहयोगी हो जाते हैं।
1: जी बिल्कुल, युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास और उनके भीतर सकारात्मक सोच को लाने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका है और ये भूमिका ही आगे राष्ट्र निर्माण में योगदान देती है। सुरक्षित जी, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल युग में हर किसी की तरह युवा भी आजकल तनाव का शिकार है, कई बार अवसाद का भी शिकार हो जा रहा है, तो ऐसे में योग कितना बड़ा माध्यम बन सकता है इससे निजात पाने में?
0: देखो, अवसाद जो डिप्रेशन है वो एनर्जी का स्टक हो जाना है, एनर्जी का कहीं रुक जाना है, यानी कि हमारा जो शरीर है वो एक एनर्जी है, यहाँ सब कुछ एनर्जी है, शरीर के सारे ऑर्गन एक एनर्जी है। एनर्जी जब पूरे शरीर में व्यवस्थित तरीके से कार्य करती है तो शरीर स्वस्थ रहता है, और जब एनर्जी अव्यवस्थित हो जाती है, बिखर जाती है, कहीं इकट्ठा हो जाती है, उसकी नोट्स बन जाती, ग्रंथियां बन जाती हैं, तो शरीर में बीमारी आती है। ऐसे ही मन जब किसी एक विचार को पकड़ लेता है, किसी पास्ट के दुख को पकड़ लेता है और वहां से वो निकल नहीं पाता तो वो अवसाद का रूप ले लेता है। योग के अभ्यास उसी एनर्जी को फ्री फ्लो करने में मदद करते हैं, इसलिए योग के आसन अलग अलग शरीर की मुद्राएं, अलग अलग आकृतियां बनाते हैं जिससे एनर्जी का फ्लो फ्री हो जाए और जहां भी कोई रुकावट आ रही है वो रुकावट दूर हो जाए। इसी के साथ साथ जब आसन के साथ प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो वो प्राणायाम के जो अभ्यास है वो एनर्जी को फिर बैलेंस करते हैं। जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म स्तर से बैलेंस करते हैं। तो इस तरह से आसन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास तन और मन के केवल अवसाद ही नहीं, अनेक साध्य और असाध्य रोगों को दूर करने में बहुत ही सहयोगी हो जाते हैं, क्योंकि ये फाउंडेशन पर काम करते हैं।
1: जी बिल्कुल, नशे की आदत से बचना हो या फिर पढ़ाई लिखाई में भटकन से बचना हो, उसमें भी योग की एक बड़ी भूमिका होती है।
0: बिल्कुल, व्यक्तित्व निर्माण में ये सहायक है, यानी कि दिनचर्या को एक व्यवस्था देता है, हमारे कर्मों के प्रति एक अवेयरनेस पैदा करता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, कितना खाना है, कब खाना है, कैसा खाना है, कब सोना है, कैसे व्यवहार करना है, कौन से शब्द रखने हैं, संबंधों में है तो वहां कैसे व्यवहार करना है, ऑफिस में है तो वहां कैसे व्यवहार हो, एक बुद्धिमत्ता डेवलप हो जाती है, एक अवेयरनेस और एक विवेक पैदा हो जाता है योग के अभ्यास से। फिर ऐसे ही है कि जैसे आपके हाथ में टॉर्च हो और आप किसी जंगल में रात जा रहे हैं और टॉर्च के साथ आप चल रहे हैं तो फिर आपको कितना दूर भी आप जा सकते हैं क्योंकि आपके पास रोशनी है।
1: सुरक्षित जी, जैसे हम देखते हैं कि 2014 के बाद से योग को लेकर के भारत और विश्व में काफी सजगता आई है, योग के महत्व को स्वीकार किया गया है, योग अब लोगों की जीवनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग के इस बढ़ते प्रभाव को आप भारत की सांस्कृतिक शक्ति के रूप में कैसे देखते हैं?
0: भारत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर योग है, अध्यात्म है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ रहना सिखाया है, यहाँ जीना सिखाया है, यहाँ सांस लेना सिखाया है, यहाँ बैठना सिखाया है, यहाँ मन को एकाग्र करना सिखाया है, ये सारी विधाएं योग की विधाएं हैं। तो ये योग की विधा पूरे विश्व को, मानव जाति को सिखाती है कि जीवन जीना कैसे है। जैसे आप कोई भी एक मिक्सी खरीद के लाते हैं तो उसकी एक मैनुअल बुक साथ में आती है, वो बताती है कि इस मिक्सी को कैसे चलाएं। ये शरीर है, हमें मिला है माता पिता से, लेकिन इसको चलाना कैसे, इंद्रियों का प्रयोग कैसे, मन का प्रयोग कैसे, प्राणों का प्रयोग कैसे, बैठाएं कैसे, कैसे इस जीवन की यात्रा को लेकर चले, वो कौन सिखाता है? योग ने वो सिखाया है। और जब योग ये सिखाता है कि जीवन को कैसे लेकर चले तो शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। तो ये भारतीय संस्कृति का एक आधारभूत स्तंभ है। और 2014 के बाद जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योग को विश्व पटल पर बहुत ही पुरजोर तरीके से रखा और योगा डे के रूप में यूएनओ ने इसको मोहर लगा दी, तब इसका जो महत्ता है वो घर घर पहुंची है, विश्व के कोने कोने पहुंची है। भारत की पुरातन विद्या है जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरे विश्व पटल पर रखा गया, और इसी कारण से ये योग ही है जो भारत को विश्व गुरु बनाता है, ये योग ही है जो पूरा विश्व भारत की तरफ देखता है कि स्वास्थ्य की बात हो तो भारत, मानसिक स्वास्थ्य की बात हो तो भारत, और अध्यात्म की बात हो तो भारत, और मुक्त हो जाना चाहते हैं तो भारत में जो योग विद्या है वही आधार है मुक्ति का भी।
1: सुरक्षित जी, एक योगाचार्य के रूप में अगर संक्षेप में आपसे जानना चाहूं कि आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: पहली बात, भोजन पर ध्यान दें। दूसरी बात, अपनी नींद पर ध्यान दें, अच्छा सोएं, क्योंकि आज व्यक्तियों की नींद कम होती जा रही है।

0: करेंगे क्योंकि मन बिखर रहा है, इसलिए नींद पर ध्यान दें। और तीसरी बात है, रोज योग का अभ्यास करें, आधा घंटा योग के आसन करें, 15 मिनट प्राणायाम का ध्यान का अभ्यास करें और 10-15 मिनट के लिए ध्यान के लिए बैठ जाएं। यानी कि एक घंटा अपने लिए दे दें, 23 घंटे जगत के लिए दे दें, आप पाएंगे वो एक घंटा ही सिर का ताज बन जाएगा।
1: सुरक्षित गोस्वामी जी, आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: संतोष जी और योगाचार्य सुरक्षित गोस्वामी जी की इस बातचीत से हमें योग के बारे में कितना जानने को मिला है ना पारुल?
3: बिल्कुल आदित्य, पता है योग दिवस काफी करीब है और उसे 21 जून को मनाया जाएगा।
2: बिल्कुल पारुल, इसी के साथ श्रोताओं लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक और सुनते हैं इस गाने को।

0: है ना पारुल?
1: बिल्कुल आदित्य, पता है योग दिवस काफी करीब है और उसे 21 जून को मनाया जाएगा।
0: बिल्कुल पारुल, इसी के साथ श्रोताओं लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक और सुनते हैं इस गाने को।

0: वाह, बहुत ही बढ़िया गाना था ये। स्वागत है श्रोताओं, जिन साथियों ने अभी ट्यून इन किया है, आप सुन रहे हैं युववाणी कार्यक्रम, जहां पे अब हम जानेंगे वीकली सेगमेंट में कि साइबर सिक्योरिटी का महत्व क्या है हमारी ज़िंदगी में।
1: दोस्तों, अगर हम अपने आसपास देखें तो

0: एशियन सफर यहीं समाप्त हो गया।
1: लेकिन एक दिलचस्प बात है कि टूर्नामेंट में भारतीय मूल के 4 खिलाड़ी अलग अलग देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इनमें शामिल है सरप्रीत सिंह न्यूजीलैंड के, सैमुअल मुत्तुस्वामी डीआर कांगो के लिए, निशांत वेलुपिल्लई ऑस्ट्रेलिया के लिए और तहसीन मोहम्मद जमशीद कतर के लिए।
0: और अब फुटबॉल के फैंस के लिए एक एक्साइटिंग अपडेट। ग्लोबल सुपरस्टार शकीरा एक

0: कितना फन सॉन्ग था ना श्रोताओं। अब चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, क्विक बज, जिसमें हम जानेंगे कुछ क्विक अपडेट्स।
1: द फीफा वर्ल्ड कप 2026 विच ऑफिशियली किक स्टार्टेड ऑन 11th जून एंड द टूर्नामेंट इज हेल्ड इन द यूएसए, कैनेडा एंड मेक्सिको दिस टाइम। द टूर्नामेंट विल लास्ट फॉर अराउंड 1.5 मंथ एंड कंक्लूड विद इट्स फाइनल्स हेल्ड ऑन 19th ऑफ जुलाई।
0: Today, in ICC Women's T20 World Cup, the match is between West Indies and Scotland.
1: These were the updates from all around. It's time for a song.

0: और अब चलते हैं हमारे आज के अंतिम सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है टुडे इन हिस्ट्री।
1: दोस्तों, 2021 में हमने अपने एक बहुत ही प्रिय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट को खोया है, मिल्खा सिंह जी। इंडिया के सबसे आइकॉनिक स्प्रिंटर्स में से एक, जिन्होंने पूरी दुनिया में द फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं।
0: और पारुल, जो चीज़ मिल्खा सिंह जी को सिर्फ एक एथलीट से महान इंसान बनाती है, वो उनका दिल था। क्या आप जानते हैं कि जब मिल्खा सिंह जी की फिल्म जिंदगी पर बने भाग मिल्खा भाग तो बनी थी, तो मिल्खा जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी की राइट सिर्फ ₹1 में दिए थे।
1: वाकई आदित्य, मिल्खा सिंह जी की आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी लेगेसी हम सबके बीच हमेशा जिंदा रहेगी।

0: आप सिर्फ एक स्प्रिंटर नहीं थे, आप एक इंस्पिरेशन थे, हैं और हमेशा रहेंगे। शुक्रिया मिल्खा सिंह जी, इंडिया को आप पर नाज है और हमेशा रहेगा। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स दोनों ही हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं, बस ज़रूरत है तो सही बैलेंस की। और असली जीत वो सिर्फ ट्रॉफी में नहीं, बल्कि हर नए एक्सपीरियंस और सबक में छुपी होती है।
1: जाते जाते पारुल, मैं हमारे यूथ के लिए एक जावेद साहब की पसंदीदा शायरी सुनाना चाहूँगा कि क्यों डरे ज़िंदगी से क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं एक आखिरी गीत के साथ।
0: दोस्तों, अब मिलते हैं हम अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं मैं पारुल और मेरे को होस्ट आदित्य। आशा करते हैं आप खुश रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों का पीछा करते रहिए। नमस्कार, आप जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए युववाणी।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। 5 बजने को हैं, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए पेरिस में फ्रांस के शीर्ष उद्योगपतियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। श्री मोदी शाम में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवर्टिक सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। विवर्टिक सम्मेलन के इस संस्करण में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंडल है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के सेंट गोबेन कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोनोएद वजीन से मुलाकात की। बैठक में विनिर्माण सामग्री और निर्माण क्षेत्र में अवसरों पर

0: चर्चा हुई। श्री मोदी ने कहा कि भारत में सेंट गोबेन की मजबूत उपस्थिति और निवेश देश के युवाओं के लिए अवसर सृजित कर रहे हैं। श्री मोदी ने लॉजिस्टिक्स कंपनी सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोडल्फ सास से भी मुलाकात की। इस दौरान समुद्री परिवहन, लॉजिस्टिक्स और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग को मजबूत करने पर बल दिया गया। श्री मोदी ने भारत में ग्रुप की मजबूत और बढ़ती उपस्थिति का उल्लेख किया। फ्रांस में भवन निर्माण की प्रमुख कंपनी सेंट गोबेन ने कहा है कि भारत उसके लिए महत्वपूर्ण विनिर्माण और निर्यात का केंद्र बन रहा है। पेरिस में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोनोवेद बजीन ने कहा कि चेन्नई के पास कंपनी की एक बड़ी विनिर्माण इकाई न केवल घरेलू मांग के साथ ही खाड़ी देशों, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया को भी निर्यात करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता से काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले तीन दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं और मार्च से लेकर अब तक 10.02 लाख पीएनजी कनेक्शंस गैसिफाई किए गए हैं। 3.22 लाख कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है।
0: पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,317 मीट्रिक टन एलएनजी से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने अब तक 3,639 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी में सहायता की है। पिछले तीन दिनों में 47 नाविक वापस आए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने

भारत 2026 में लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय के अंतर्गत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 9:30 बजे ग्रुप ए के मुकाबले में अमेरिका के अटलांटा में चेकिया का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। लॉस एंजलिस में रात्रि 12:30 बजे से स्विट्जरलैंड का मुकाबला बोस्निया और हर्जेगोविना से होगा। आज सुबह कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान पर 3-1 से जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: लोकरंजनी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी बहन भाइयों को नमस्कार। अतुल भाई
1: जी,
0: भाई रोज की तरह ही हम अपने सभी श्रोताओं के लिए लेकर हाजिर हुए हैं अपना ये प्यारा सा लोकरंजनी कार्यक्रम।
1: बिल्कुल, और देखिए इस कार्यक्रम लेकर गए हैं प्यारे प्यारे से लोकगीत अपने सभी सुनने वाले बहन भाइयों के लिए।
0: बिल्कुल,
1: तो सुनवाते हैं ज्योत्सना की आवाज में ये प्यारा सा लोकगीत।

मेरी सारी कमाई गवाई रसिया, अदालत में दावा करूंगी रसिया। बहुत ही प्यारा सा लोकगीत अभी हमारे सभी बहन भाइयों ने सुना रचना शर्मा की आवाज़ में। और पायल बहन घड़ी की सुई इशारा कर रही है अपने सभी बहन भाइयों से विदा लेने का। तो कार्यक्रम लोक रंजनी सुनने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी नमस्कार। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पाराशर।

0: अभी आप लोक रंजनी कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आज आप सभी को धर्मेंद्र और
3: शिवांश का
2: नमस्कार।
3: नमस्कार
2: शिवांश, अगर खेलों की बात करें तो इस समय तो वर्ल्ड कप की जैसे झड़ी सी लगी हुई है। एक तरफ फुटबॉल का रोमांच पूरी दुनिया के सिर चढ़कर बोल रहा है और दूसरी तरफ अगर क्रिकेट की बात करते हैं तो वहां पर भी T20 महिला विश्व कप चल रहा है। साथ ही शिवांश ये भी बताएं कि ISSF जूनियर वर्ल्ड कप भी इस समय चल रहा है और वहां से भारत के लिए एक अच्छी खबर आज आई है। गोल्ड मेडल भारत ने जीत लिया है पहला, तो बहुत सारी खबर है।
3: जी बिल्कुल धर्मेंद्र जी, हमारे भारतीय स्पोर्ट्स में तो गोल्ड आने के लिए मतलब क्या ही बताएं, इतनी अच्छी खबर सुनके तो हमारे श्रोताओं को अच्छा लगेगा ही।
2: जी हाँ, और हम आपको ये भी बताएं कि मकाऊ ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भी हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत सारी खबरें हैं, तो शुरुआत क्यों ना करें दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल के साथ। और फुटबॉल विश्व कप चल रहा है ये तो आप सभी जानते ही हैं और वहां पर एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले लगातार चल रहे हैं, बड़े चौंकाने वाले परिणाम भी आ रहे हैं। कल भी एक ऐसा परिणाम आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पुर्तगाल की टीम एक नई टीम के खिलाफ संघर्ष करती हुई दिखाई दी और अंत में वो मैच ड्रॉ रहा। क्या कुछ है फुटबॉल वर्ल्ड कप में कल और आज खेले गए मुकाबलों में, और आज और कल होने वाले मुकाबलों में क्या कुछ होने वाला है, सुनते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।

के बाद कांगो डीआर ने शानदार वापसी की। अफ्रीकी टीम ने लगातार आक्रमण की और पहले हाफ के अतिरिक्त समय में बराबरी का गोल दाग दिया। आर्थर मासुआकू के सटीक क्रॉस पर योने विस्सा ने दमदार हेडर लगाकर इतिहास रच दिया। ये कांगो डीआर का वर्ल्ड कप इतिहास का पहला गोल था जो उसने 1974 में पहली बार टूर्नामेंट के खेलने के 52 साल बाद हासिल किया। मैच में पुर्तगाल के पास गेंद पर कब्जा ज्यादा रहा लेकिन वो ऐसे प्रभावी हमलों में नहीं बदल सकी। पूरी टीम केवल एक ही शॉट लक्ष्य पर लगा सकी। रोनाल्डो और उनकी टीम को कांगो की मजबूत डिफेंस ने खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। दूसरे हाफ की शुरुआत में जोआसो कैसिलो ने शानदार ओवरहेड किक से गोल किया लेकिन ऑफसाइड होने के कारण इसे रद्द कर दिया गया। इसके बाद भी पुर्तगाल ने जीत के लिए प्रयास किए मगर कांगो डीआर का डिफेंस लगातार

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जहां एक ओर अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी ने करिश्माई प्रदर्शन से अपने अभियान का आगाज किया, वहीं उनके चिर प्रतिद्वंदी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल टीम को बड़ा झटका लगा। ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल को डीआर कांगो के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। ह्यूस्टन स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में पुर्तगाल ने शुरुआत से ही दबदबा बनाया और 6वें मिनट में जोआसो नेवेस के गोल की बदौलत बढ़त हासिल कर ली। पेड्रो नेटो के शानदार क्रॉस पर नेवेस ने बेहतरीन हेडर लगाकर गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाया और टीम को 1-0 से आगे कर दिया। हालांकि शुरुआती झटके

मालदीनी की बराबरी कर ली। हालांकि रिकॉर्ड के बावजूद रोनाल्डो गोल करने में नाकाम रहे और अपने विश्व कप गोलों की संख्या में इजाफा नहीं कर सके। मैच खत्म होने के बाद मुस्कान कांगो डीआर के खिलाड़ियों के चेहरों पर थी, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप इतिहास का पहला गोल और पहला पॉइंट हासिल कर यादगार उपलब्धि दर्ज की। उधर बारिश से भरे टोरंटो में खेले गए विश्व कप के मैच में घाना ने पनामा को 1-0 से हरा दिया। दूसरे हाफ के स्टॉपेज टाइम के 5वें मिनट में कैलेब यिरेनकी ने शानदार काउंटर अटैक करते हुए आसानी से गोल दाग दिया। घाना ने अपने हाफ से तेजी से गोल को आगे बढ़ाया और ब्रेंडन थॉमस असांटे ने बाएं फ्लैंक से गोल को 18 यार्ड बॉक्स के भीतर पहुंचाया। उन्होंने बीच में यिरेनकी के लिए एक पास दिया, जिसे उन्होंने गोल में बदल दिया। पहले हाफ में खेल काफी शांत रहा, लेकिन दूसरे हाफ में दोनों टीमों ने अपनी गति काफी बढ़ा दी। हालांकि निर्णायक गोल होने तक गोल करने के मौके बहुत कम मिले। इसी विश्व कप के ग्रुप एल मुकाबले में इंग्लैंड ने दमदार प्रदर्शन करते हुए क्रोएशिया को 4-2 से शिकस्त दी। डलास स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने 2 गोल दागे, जबकि जूड बेलिंगहम और मार्कस रैशफोर्ड ने भी गोल कर टीम की जीत सुनिश्चित की। दूसरी ओर क्रोएशिया के लिए मार्टिन बातुरीना और पीटर मूसा ने गोल किए, लेकिन उनकी मेहनत टीम को हार से नहीं बचा सकी। इंग्लैंड ने मैच की शुरुआत आक्रामक अंदाज में की और 12वें मिनट में कप्तान हैरी केन ने पेनल्टी को गोल में बदलकर टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। शुरुआती बढ़त के बाद इंग्लैंड ने खेल पर नियंत्रण बनाए रखा और लगातार क्रोएशियाई डिफेंस पर दबाव बनाया। पहले हाफ के 36वें मिनट में क्रोएशिया ने शानदार वापसी की। मार्टिन बातुरीना ने बेहतरीन गोल दागकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। हालांकि इंग्लैंड ने जल्द ही जवाब दिया और 42वें मिनट में हैरी केन ने अपना दूसरा गोल कर टीम को 2-1 की बढ़त दिला दी। जब लग रहा था कि इंग्लैंड बढ़त के साथ ब्रेक में जाएगा, तभी अतिरिक्त समय में क्रोएशिया ने पलटवार किया। 45+5वें मिनट में पीटर मूसा ने गोल कर स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया। इसी स्कोर के साथ दोनों टीमें हाफ टाइम तक पहुंची। दूसरे हाफ की शुरुआत होते ही इंग्लैंड ने फिर आक्रमण तेज कर दिया। 47वें मिनट में जूड बेलिंगहम ने शानदार गोल करते हुए इंग्लैंड को 3-2 की बढ़त दिला दी। इस गोल के बाद क्रोएशिया बराबरी की तलाश में जुटा रहा, लेकिन इंग्लैंड का डिफेंस मजबूती से डटा रहा। मैच के अंतिम चरण में क्रोएशिया ने वापसी की कोशिश की, लेकिन 85वें मिनट में मार्कस रैशफोर्ड ने गोल दागकर इंग्लैंड की बढ़त 4-2 कर दी। इसके बाद क्रोएशिया वापसी नहीं कर सका और इंग्लैंड ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने ग्रुप एल में महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए, जबकि क्रोएशिया को टूर्नामेंट में झटका लगा। और अब बात आज होने वाले मुकाबलों की। फीफा विश्व कप के लगातार हो रहे कांटे के मुकाबले में आज स्विट्जरलैंड और बोस्निया हर्जेगोविना के बीच दिलचस्प मुकाबला होगा। स्विट्जरलैंड अपनी पहली जीत हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अपने पहले मैच में कतर के खिलाफ निराशाजनक ड्रॉ के बाद स्विट्जरलैंड बोस्निया हर्जेगोविना के खिलाफ मुकाबले में 3 अंक हासिल करने के दृढ़ संकल्प के साथ उतरेगा, ताकि 2026 विश्व कप के ग्रुप बी के नॉकआउट दौर में जगह बनाने की दौड़ में बढ़त हासिल कर सके। उधर बोस्निया हर्जेगोविना को अप्रत्याशित परिणाम देने का पूरा भरोसा है। वह कनाडा के खिलाफ अपने सकारात्मक प्रदर्शन के बाद अपेक्षाकृत शांत मन से मैच में उतरेगा। उधर विश्व कप में अपनी पहली जीत की तलाश में जुटी सह मेजबान कनाडा और एशियाई दिग्गज कतर की टीमें ग्रुप बी के मुकाबले में आमने सामने होंगी। ये मैच वैंकूवर के बीसी प्लेस स्टेडियम में खेला जाएगा। विश्व कप 2026 के अपने पहले मैच में दोनों टीमों ने 1 गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए 1-1 से ड्रॉ खेला। कनाडा ने बोस्निया हर्जेगोविना के खिलाफ 1 अंक हासिल किया, जबकि 2022 के मेजबान कतर ने स्विट्जरलैंड के खिलाफ भी यही नतीजा दिया। पहले मैच के बाद ग्रुप की सभी 4 टीमें बराबरी पर हैं। विश्व कप में पहली बार कनाडा से बड़ी उम्मीदें हैं और टोरंटो में खेले गए उनके पहले मैच में यह दबाव टीम पर साफ दिखाई दिया। उधर कतर ने अपने पहले मैच में कड़ा संघर्ष किया और स्टॉपेज टाइम के 4th मिनट में बराबरी का गोल दागकर 1 अंक हासिल किया। विश्व कप ग्रुप स्टेज के मैचों में उनका एकमात्र गोल 3रा सबसे देर से किया गया। इस मैच से पहले कतर लगातार 7 मैचों में जीत हासिल नहीं कर पाया है और इन सभी मैचों में उन्होंने 1 या उससे कम गोल किए हैं। आज मौजूदा 2 बार के एशियाई चैंपियन 2023 के गोल्ड कप के ग्रुप स्टेज में मैक्सिको को 1-0 से हराने के बाद कॉन्काकैफ टीम के खिलाफ अपनी पहली जीत दर्ज कर सकते हैं। मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आज एस्टाडियो एक्रोन में होने वाले मुकाबले में लगातार दूसरी जीत के साथ अपने अपने विश्व कप अभियान की शुरुआत करने का लक्ष्य रखे हुए हैं। ग्रुप ए में अपना पहला मैच जीतने के बाद मैक्सिको और दक्षिण कोरिया दोनों जानते हैं कि एक और जीत उन्हें 1 मैच शेष रहते हुए राउंड ऑफ 32 में जगह दिला देगी और संभवतः पहला स्थान भी सुनिश्चित कर देगी। सह मेजबान टीम मैक्सिको ने टूर्नामेंट के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका पर शानदार जीत दर्ज की थी,
लेकिन

0: उस कमजोर टीम से कोई खास प्रतिरोध नहीं मिला। लेकिन आज एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दक्षिण कोरिया, जिसने पिछली बार चेकिया के खिलाफ वापसी करते हुए जीत हासिल की थी और अपने साहसिक और आक्रामक फुटबॉल से सबका ध्यान खींचा था, अपनी मजबूत शुरुआती फॉर्म को जारी रखने की कोशिश करेगा। मैच शुरू होने से पहले कागजों पर दोनों टीमों के बीच फीफा रैंकिंग में सिर्फ 11 स्थानों का अंतर है और आज एक तनावपूर्ण लेकिन रोमांचक मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है। हम आपको बता दें कि ग्रुप ए में आज कमजोर टीम मानी जा रही साउथ अफ्रीका का मुकाबला चेकिया से होगा। ये मैच भी काफी दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि दोनों टीमें रैंकिंग में काफी नीचे हैं और अभी तक बहुत बढ़िया फुटबॉल का प्रदर्शन इस विश्व कप में नहीं किया है। फुटबॉल के बाद अब चलते हैं बैडमिंटन के कोर्ट पर। वहां पर भी काफी दिलचस्प मुकाबले चल रहे हैं। भारत की तगड़ी चुनौती है, बता रहे हैं हमारे साथी शिवांश रक्षित।
1: मकाओ ओपन 2026 में आज खेले गए मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी थरुन मन्नेपल्ली को चाइना के डोंग के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। मेन सिंगल्स में थरुन मन्नेपल्ली को दोनों ही गेम में हार का सामना करना पड़ा। मिक्स डबल्स में ईशान भटनागर और श्रुति मिश्रा को चीन की ली होंग और हुआंग के जिन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। तीनों ही गेम्स में पहला गेम तो भारत के नाम हुआ, लेकिन अगले ही दो गेम चीन के नाम हुआ। राउंड ऑफ 16 में विमेन सिंगल्स में रक्षिता श्री संतोष रामराज को किम मिन सून के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। दोनों ही गेम्स साउथ कोरिया द्वारा जीता गया। मेन सिंगल्स में रौनक चौहान को चीन के हु जे एन द्वारा भी हार का सामना करना पड़ा। दोनों ही गेम्स चाइना द्वारा जीते गए। विमेन सिंगल्स में श्रीयांशी वली शेट्टी को किम मिन जी, जो कि साउथ कोरिया की प्लेयर है, उन्होंने भारतीय खिलाड़ी को दोनों ही गेम में हरा दिया। विमेन सिंगल्स में राउंड ऑफ 16 में अश्मिता चलिहा ने यूएसए की इशिका जायसवाल को दोनों ही गेम्स में हरा दिया।
0: जी हाँ, बैडमिंटन से एक और खबर आ रही है, हालांकि वो अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ईशा रानी बरुआ पराजित हो गई हैं। जो दक्षिण कोरियाई उनकी प्रतिद्वंदी थी पार्क गा युन, उनके खिलाफ एक संघर्ष तो उन्होंने किया लेकिन शिकस्त झेलनी पड़ी है। पहला गेम जो रहा वो दक्षिण कोरियाई की खिलाड़ी के नाम पर 21-19 से रहा। दूसरे गेम में भी काफ़ी कड़ा संघर्ष किया भारतीय खिलाड़ी ने, ईशा रानी ने, लेकिन आखिरकार उन्हें 23-21 से शिकस्त झेलनी पड़ी। तो ये खबर अभी अभी आई है और हम आपको अपडेट कर रहे हैं। अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर। वहां पर आपको पता है कि महिला वर्ल्ड कप के मुकाबले चल रहे हैं। कल भारत ने बेहद अच्छा प्रदर्शन किया, लगातार अपनी दूसरी जीत हासिल की है। क्या कुछ खास हो रहा है महिला वर्ल्ड कप में, सुनते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 10वें मैच में कल रात भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। इस तरह भारत ने पहली बार महिला टी20 विश्व कप में रन के हिसाब से सबसे बड़ी जीत दर्ज की। नीदरलैंड्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 209 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप में अपना पहला अर्धशतक जड़ा। स्मृति मानधना ने लगातार दूसरा अर्धशतक लगाया। दोनों ने पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की। नीदरलैंड्स की टीम 210 रनों के लक्ष्य के जवाब में 114 रन पर ऑल आउट हो गई। इस मैच के बारे में क्या कहती हैं कप्तान हरमनप्रीत कौर?
2: We were really good with the bat. It wasn't that easy wicket, but I think the way Smriti and Shivali batted, they gave us a very good platform. So I think credit goes to them the way they both batted.
0: गेंदबाजी में श्री चरणी ने 4 विकेट लिए। शेफाली वर्मा ने गेंद से भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट लिए। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर वैशाली माथुर ने उनकी गेंदबाजी की तारीफ की।
3: शेफाली वर्मा सिर्फ यही नहीं, वो कहीं भी देखेंगे कि इंडियन टीम के इंडिया ए टीम में भी वो बॉलिंग करती है एंड वहां पर भी वो इसी तरह का एक अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है और वहीं से वो कॉन्फिडेंस यहां इंडियन टीम में उनके लिए बिल्ड होके आया है। उनको रीड करना इतना ईजी नहीं था क्योंकि वो सिर्फ एक ही वेरिएशन में बॉल नहीं डालते, वो दो वेरिएशन में बॉल डालते, एक वो ऑफ स्पिन डालती है, एक वो टॉप स्पिन भी डालती है। तो उसमें डिफरेंस है दोनों में। टॉप स्पिन में थोड़ा सा बैटर को डिफिकल्टी होती है जज करने में एज कम्पेयर टू ऑफ स्पिन। सो उसमें जब उनको बॉल विकेट मिली थी तो वो उन्होंने टॉप स्पिन करके बॉल डाली थी एंड वो हल्का सा हम कह सकते हैं कि स्लाइटली उनको एक टर्न मिला था उस टाइम।
0: हम आपको बता दें कि भारतीय टीम लगातार दूसरा मैच जीतकर अपने ग्रुप में

0: तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। उधर एनेरी डर्कसेन के अर्धशतक के दम पर साउथ अफ्रीका ने कल बर्मिंगम के एजबेस्टन में पाकिस्तान को 2 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही अफ्रीकी टीम ने आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी पहली जीत दर्ज की, जबकि पाकिस्तान की ये दूसरी हार है। इससे पहले भारतीय महिला टीम ने उसे 64 रन से हराया था। पाकिस्तान ने निर्धारित 20 ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 126 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए थे। साउथ अफ्रीका ने 8 विकेट खोकर 19 गेंद शेष रहते 126 रन का टारगेट हासिल कर लिया। महिला T20 विश्व कप में कल खेले गए एक और मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के सामने बांग्लादेश ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। बांग्लादेश की टीम को 63 गेंद पहले ही 9 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने कप्तान सोफी के फैसले को सही साबित किया और बांग्लादेश को 20 ओवर में 8 विकेट पर 77 रन पर रोक दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 9.3 ओवर में ही जीत हासिल कर ली। ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया की दूसरे मैच में यह दूसरी जीत है, जबकि बांग्लादेश की पहली हार। उधर वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड दोनों टीमें एक जैसे रिकॉर्ड के साथ लीड्स पहुंची हैं, लेकिन उनकी उम्मीदें बिल्कुल अलग हैं। वेस्टइंडीज ने मौजूदा चैंपियन न्यूजीलैंड के खिलाफ 163 रनों का पीछा करते हुए अपने अभियान की शुरुआत की। वहीं स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रनों से हराकर महिला T20 विश्व कप में अपना पहला मैच जीता और इतिहास रच दिया। यहां एक और जीत दोनों टीमों को ग्रुप बी में मजबूत स्थिति में पहुंचा देगी, जिससे मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। क्रिकेट की खबरों को जारी रखते हुए आगे बढ़ें तो पुरुष क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 2-2 हाथ जारी है। लखनऊ में खेले गए दूसरे वनडे में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज अपने नाम कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर में 402 रन बनाए। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 44 ओवर और 3 गेंद में 232 रन पर ऑल आउट हो गई। दारविश रसूली चोट के कारण रिटायर्ड आउट हुए और फिर बल्लेबाजी के लिए नहीं लौटे। भारत के लिए कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शतकीय पारियां खेली। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 224 रन जोड़कर टीम को 400 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट झटके। गुरनूर बरार, जिन्होंने पिछले मुकाबले में डेब्यू किया था और वहां भी 3 विकेट लिए, यहां भी 3 विकेट झटक कर गेंदबाजों में सबसे आगे चल रहे हैं। क्या कहते हैं अपने प्रदर्शन पर गुरनूर?
1: मैं अपने आप पे बिलीव करता हूं और जो मैं अपना काम कर रहा हूं उस पे ही वो है कि मैं हार्ड लेंथ था के तेज डालूं। वो जो बातें होती है कि क्या करेगा या क्या है, वो रिजल्ट्स मैटर नहीं करते मेरे लिए। मेरे लिए प्रेपरेशन मैटर करती है और वो हर रोज़ मैं वो चीज़ रिपीट कर पा रहा हूँ या नहीं, वो चीज़ मैटर करती है। तो वो ये 2 मैचों में काफ़ी अपनी तरफ से मैं और ज़्यादा अच्छा करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मैं और ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। ये जो मैंने आज बॉल डाली उससे भी आई कैन डू बेटर। तो वो ये है कि होपफुली जैसे कमिंग मैचेस में मैं और ज्यादा बेटर होऊंगा।
0: हम आपको बताएं कि अफगानिस्तान की ओर से रहमत शाह ने सबसे ज्यादा 79 रन बनाए। टीम के लिए नांगेलिया खरोटे ने 4 और राशिद खान ने 3 विकेट लिए। भारत ने धर्मशाला में पहला वनडे 7 विकेट से जीता था। सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 20 जून को चेन्नई में खेला जाएगा। उधर इंडिया ए ने ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में जगह बना ली। उसने बुधवार को करो या मरो के मैच में अफगानिस्तान ए को 101 रन के बड़े अंतर से हराया। दाम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम में 320 रन का टारगेट चेस कर रही अफगानिस्तान ए की टीम 36.5 ओवर में 218 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। 15 साल के भारतीय ओपनर वैभव सूर्यवंशी 28 बॉल पर 38 रन बनाकर आउट हुए। यह लगातार चौथी पारी है जिसमें वे 50 नहीं बना सके हैं। वैभव इस सीरीज के 4 मैचों में 117 रन ही बना सके। इस सीरीज में उनका बेस्ट प्रदर्शन 44 रन रहा है।
2: तो आइए अब जानते हैं हॉकी के ऊपर खबर के बारे में और इसके बारे में बताए हैं हमारे साथी धर्मेंद्र।
0: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 2025-26 पुरुष FIH प्रो हॉकी लीग में कल रात अपनी पहली सीधी जीत दर्ज की। मैन इन ब्लू ने नीदरलैंड के रॉटरडम में हजेलार्वेग स्टेडियम में खेले गए इस टूर्नामेंट के अपने 10वें मैच में वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हराया। मैच में भारतीय हॉकी टीम ने पहले क्वार्टर में मनदीप सिंह के गोल की बदौलत बढ़त हासिल कर ली। शिलानंद लाकड़ा ने 13वें मिनट और नीलाकांत शर्मा ने 35वें मिनट में गोल किए। मेजबान टीम के लिए राफेल हार्डकोफ ने 45वें मिनट में एक सांत्वना गोल किया। इस जीत के बाद भी भारत पॉइंट टेबल में 9वें स्थान पर है और टेबल में उनके पीछे सिर्फ पाकिस्तान 10वें स्थान पर है। पाकिस्तान के पास अब तक एक भी अंक नहीं है और उनका रेलिगेशन तय है। अब तक खेले गए 10 मैचों में भारतीय टीम 6 मैच सीधे हारी है और एक मैच पेनल्टी शूटआउट में हारी है। इस जीत के अलावा भारत की टीम ने शूटआउट में भी एक जीत हासिल की थी। जर्मनी के खिलाफ जीत निश्चित रूप से भारत का मनोबल बढ़ाने वाली है और आगे टूर्नामेंट में इसका फायदा मिल सकता है। क्या कहते हैं इस मैच को लेकर भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और खिलाड़ी ललित उपाध्याय, वो सुनते हैं।
3: देखिए, शुरू से भारतीय टीम का जो प्रदर्शन हॉकी टीम का देख रहे हैं हम लोग, वो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और अच्छे वे में जा रहा है। जो हम लोग शुरू से बात करते थे कि हॉकी के बारे में, कि हॉकी ऊपर आ रही है, हॉकी शुरू से अपना जो खोई हुई ग्लोरी है वापस ला रही है, तो ये सब बिग थिंग और ये काफी एक बार प्रूफ कर चुकी है हॉकी। हॉकी के लोगों को इंटरेस्ट जताने के ऊपर है कि वो कितना हॉकी को दे रहे हैं। हॉकी देने लगा है स्टार्ट, वापस करने लगा है। और रही बात जो अभी मैच हुआ वर्ल्ड चैंपियन को हराना, हॉकी इस टाइम इंडिया टीम किसी को भी बीट करने के लिए कैपेबल है और वो ये बड़े जो टॉप लेवल के टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें उसने अपने कैलिबर पोटेंशियल सब शो किया है। कल के मैच में भी सेम उन्होंने वही चीज किया। इंडिया अपने स्किल के लिए और अपने फिटनेस के लिए जानी जाती है, उन्होंने उसको सही वे में प्रॉपर वे में यूटिलाइज किया, जिसका फलस्वरूप यह जो कोचों की स्ट्रेटेजी थी, जो कप्तान हरमनप्रीत है उनकी जाहिर सी बात है लीडरशिप में टीम खेल रही है, यंग और उसमें सीनियर्स प्लेयर भी हैं, तो उनका जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत ही अच्छा उनका डिफेंसिव के साथ साथ जो अटैकिंग स्ट्रक्चर है दोनों काफी अच्छा चल रहा है। उसी के बदलो तो उनको गोल भी मिल रहा है और वो डोमिनेट कर रहे हैं मैच को, कंट्रोल कर रहे हैं।
0: और हम आपको बताएं कि इसी मैच के दौरान एक अविश्वसनीय रिकॉर्ड बना। मिडफील्ड के स्टार खिलाड़ी मनप्रीत सिंह ने जर्मनी के खिलाफ मैच के साथ ही अपना 413वां इंटरनेशनल मुकाबला खेला और एक शानदार उपलब्धि हासिल कर ली। इसके साथ ही मनप्रीत ने पूर्व दिग्गज खिलाड़ी दिलीप तिर्की का 412 मैच खेलने का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। 2011 में 19 साल की उम्र में डेब्यू करने वाले मनप्रीत पिछले 15 सालों से भारतीय हॉकी टीम के लिए रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं। हॉकी इंडिया ने इस बड़ी उपलब्धि पर मनप्रीत को बधाई दी और उन्हें 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की। मनप्रीत अपने करियर को लेकर क्या कहते हैं वो सुनते हैं उन्हीं की जुबानी।
4: बहुत अप्स एंड डाउन रहे हैं इस जर्नी में, क्योंकि अगर ऐसे मैं 2011 में आया था टीम में, ठीक है, तो 2018 में मैं ओलंपिक के लिए आया था, 18 साल का था तभी मैं गया था और हम लोगों ने 12वें नंबर पे फिनिश किया था, लास्ट नंबर था उसमें ओलंपिक में, तो काफी वो एक नाइटमेयर था मेरे लिए। बट उसके बाद काफी अच्छी जर्नी रही। फिर 2014 में हम लोगों ने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता, कॉर्नवाल गेम में हम लोगों ने सिल्वर जीता, फिर 2016 में बट वहाँ पे हम लोगों ने 8वें नंबर पे फिनिश किया ओलंपिक्स में, रियो ओलंपिक्स में। उसके बाद भी काफी अपसेट डाउन रहे लाइफ में, बट काफी अच्छा ये रहा कि 2020 टोक्यो ओलंपिक्स हुई थी वहाँ पे हम लोगों ने 41 ईयर्स के बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो लाइफ उसके बाद फिर पेरिस आया, पेरिस में हम लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो लाइफ काफी अपसेट डाउन है बट जो एंडिंग थी वो काफी अच्छी रही अभी तक, तो जर्नी मैं काफी खुश हुई जर्नी से।
0: मनप्रीत की एक खासियत है कि वे मैदान पर कभी थकते नहीं दिखते। तेजी, नेतृत्व और निरंतरता के लिए मशहूर मनप्रीत ने भारतीय हॉकी को दुनिया के नक्शे पर फिर से मजबूती से जगह दिलाई है। अब 33 साल के मनप्रीत विश्व हॉकी के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं। वे पुरुष अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे ज्यादा कैप्स की सूची में 5वें स्थान पर हैं। उनसे आगे केवल 4 खिलाड़ी हैं। वे दुनिया के एकमात्र सक्रिय खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने 400 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। ललित उपाध्याय बता रहे हैं मनप्रीत के साथ अपना अनुभव।
3: सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगा कि भारतीय टीम के लिए प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको जितना समय मिले वो आप भाग्यशाली हैं। उसके साथ ही साथ दूसरा ये कि जब जब इंडियन जर्सी पहनते हैं आप ये सोचते हैं कि मेरा लास्ट मैच है, लेकिन उसके साथ ही साथ अगर आप इतना लंबा करियर आप खेलते हैं और आप इस रिकॉर्ड से इस माइलस्टोन के साथ, तो ये बहुत ही स्पीचलेस थिंग है, ये बहुत ही काबिले तारीफ है कि उन्होंने अपना इतना लंबा करियर के साथ इतने लंबे मैच खेला और आज इंडियन में सबसे टॉप मोस्ट कैप प्लेयर बन गए हैं। इट्स अ बिग थिंग और वो शुरू से अच्छा खेलते आ रहे हैं, कप्तानी भी किए हुए हैं और ठीक है, एक प्लेयर का समय रहता है, अप्स एंड डाउन चलते रहते, तो उन्होंने सब चीजों को फेस किया जैसे हर खिलाड़ी फेस करता है, तो इट्स अ बिग थिंग।
5: एक अंतिम सवाल, जो उनके साथ का आपका अनुभव रहा है कुछ साझा करना चाहेंगे?
3: हाँ बिल्कुल, मैं मतलब काफी टाइम से मतलब 2010 में हमने खेला भी था, तो मैं कैप्टन भी था, मेरी कप्तानी में भी उन्होंने साथ में खेला हुआ है, हम लोग हॉकी इंडिया ही थी उस टाइम भी आगे थी और अडा कमेटी थी, तो हम लोग ने एमसीसी टूर्नामेंट खेला हुआ था, उससे पहले भी वो मेरे साथ 16 इंडिया कैंप किए हुए थे और साथ में हम लोग 16 भी खेले हुए थे, तो एक अच्छा बहुत लंबा करियर भी रहा है और अच्छी साथ है, फनी नेचर है उनका भी, और दूसरी चीज ये है कि लगे रहते हैं मिडफील्ड में, अपना पूरा अनुभव दिखाते रहते हैं, एक कॉन्फिडेंस आता है स्ट्राइकर्स को भी कि हमें बॉल कैसे लेना है, कैसे देना है, मैच में भी, मैच के बाहर भी अच्छी बॉन्डिंग रहती है। तो ये सब चीजें

0: प्लेयर के लिए काफी पॉजिटिव होती हैं।
1: भारत को प्रो लीग के इस सेशन में अभी और 6 मैच खेलने हैं। उसका अगला मुकाबला आज ही एक बार फिर से जर्मनी के साथ होना है, जबकि 21 तारीख को नीदरलैंड से मुकाबला होगा। इसके अलावा इंग्लैंड और पाकिस्तान के साथ भी भारतीय टीम 2-2 मैच खेलेगी। ये थी बात भारतीय पुरुष हॉकी टीम की, और अब बात महिला टीम की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला FIH नेशंस कप 2026 में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए अपने अंतिम पूल मुकाबले में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया और खिताब की ओर एक और मजबूत कदम बढ़ाया। मैच की सबसे बड़ी स्टार रही दीपिका, जिन्होंने 2 गोल दाग कर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। पहले क्वार्टर में टीम इंडिया को दिक्कत का सामना करना पड़ा था। उरुग्वे ने आक्रामक खेल दिखाते हुए 13वें मिनट में गोल किया और 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। शुरुआती गोल के बाद भारतीय टीम पर दबाव बढ़ गया, लेकिन खिलाड़ियों ने संयम बनाए रखा और लगातार आक्रमण जारी रखा। दूसरे क्वार्टर में भारत को बराबरी करने का मौका मिला। टीम की प्रमुख फॉरवर्ड दीपिका ने शानदार फिनिश के साथ 24वें मिनट में गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाया और स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। इस गोल ने भारतीय खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाया और टीम ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। तीसरे क्वार्टर में भारत ने बढ़त हासिल कर ली। दीपिका सोरेंग ने 43वें मिनट में बेहतरीन मूव को गोल में बदलते हुए टीम को 2-1 से आगे कर दिया। भारतीय टीम इसके बाद लगातार दबाव बनाती रही और उरुग्वे को ज्यादा मौका नहीं दिया। हालांकि चौथे और अंतिम क्वार्टर में मुकाबला फिर रोमांचक हो गया। उरुग्वे की ओर से विलार मैनुएला ने 55वें मिनट में गेंद को गोल पोस्ट में डालकर स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया। ऐसा लग रहा था कि मैच ड्रॉ की ओर बढ़ सकता है। भारत के स्टार खिलाड़ी दीपिका ने तब एक बार फिर कमाल दिखाया। उरुग्वे के बराबरी के गोल के महज 1 मिनट बाद दीपिका ने शानदार गोल दागकर भारत को 3-2 की बढ़त दिला दी। अंतिम मिनटों में भारतीय टीम ने मजबूत रक्षात्मक खेल दिखाया और उरुग्वे को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। निर्धारित समय समाप्त होने तक भारत ने अपनी बढ़त बरकरार रखी और महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। इस जीत के साथ भारतीय महिला हॉकी टीम ने ग्रुप चरण का समापन शीर्ष स्थान पर किया। टीम का आत्मविश्वास काफी ऊंचा है और अब उसकी नजरें सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में जगह बनाने पर होगी। भारत का सेमीफाइनल मुकाबला चिली के साथ 20 जून को भारतीय समय के अनुसार सुबह 9:30 बजे होगा। और अब चीन में चल रहे वर्ल्ड बॉक्सिंग कप स्टेज 2 की रिपोर्ट।
2: बुधवार को चीन के गुईयांग में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2026 के तीसरे दिन भारतीय मुक्केबाज निखिल, दीपक और स्नेह विजयी रहे। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग की मुक्केबाजी में प्रतिस्पर्धा करते हुए निखिल ने ब्राजील के केल्वी पर 5-0 से सर्वसम्मत निर्णय से शानदार जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। बुधवार को पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में दीपक ने 2025 विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता जापान के सेवन ओकाजावा को 5-0 के फैसले से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में स्नेह ने दक्षिण कोरिया की सियोन पर 4-1 से जीत हासिल करने के बाद अंतिम 8 में जगह बनाई। इसी बीच दो भारतीय मुक्केबाज मालसाव मतलुआंगा और माही लामा प्री क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गए। मालसाव मतलुआंगा को जॉर्डन के अशेष हुसैन के खिलाफ 4-1 से हार का सामना करना पड़ा, जबकि माही लामा मंगोलिया के मोनखोर नामुन के खिलाफ 5-0 से हार कर बाहर हो गए। आज 65 kg भार वर्ग में अविनाश जामवल को प्री क्वार्टर फाइनल में किर्गिस्तान के मिर्जोखित के सामने 0-5 से हार का सामना करना पड़ा। महिलाओं के 51 किलोग्राम वर्ग में खेलते हुए मीनाक्षी, जो 48 किलोग्राम की मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन और उस डिवीजन की वर्ल्ड नंबर 1 है और अब ओलंपिक 51 किलोग्राम वर्ग वेट क्लास में शिफ्ट हो रही हैं, उन्होंने पोलैंड की नतालिया को 5-0 से एक तरफा हार दी। अब तक के टूर्नामेंट में 5 भारतीय मुक्केबाज क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि निखिल 55 किलोग्राम भार वर्ग में, दीपक 70 किलोग्राम, मीनाक्षी 51 किलोग्राम, प्राची 57 किलोग्राम और स्नेह 65 किलोग्राम, वही ज्योति 48 किलोग्राम और जुगनू 85 किलोग्राम सेमीफाइनल में पहुंचकर देश के लिए पदक पक्के कर चुके हैं। आइए आपको ये भी बता देते कि 5वें दिन के कार्यक्रम क्या रहने वाले हैं। 5वें दिन 4 भारतीय मुक्केबाज अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। महिला वर्ग में मीनाक्षी 51 किलोग्राम वर्ग में सामना करेंगी कजाकिस्तान की अलुआ बल्की बेकोवा से। स्नेह

0: 67 किलोग्राम भार वर्ग में पोलैंड की किंगा क्रोवका से और प्राची 57 किलोग्राम भार में चीनी ताइपाई की शी यी वू से होगा। पुरुष वर्ग में निखिल 65 किलोग्राम भार वर्ग में मुकाबला करेंगे अजरबैजान के अमीन से। सेमीफाइनल में भारतीय मुक्केबाज ज्योति 48 किलोग्राम महिला वर्ग में और जुगनू भी 85 किलोग्राम भार वर्ग में सेमीफाइनल खेलेंगे।
1: और जर्मनी के शूल में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप से भारत के लिए बेहद अच्छी खबर है। भारत ने पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है। 10 मीटर एयर पिस्टल महिला वर्ग में टीम ने गोल्ड जीता है। वंशिका चौधरी, नव्या और संस्कृति बाना ने ये गोल्ड मेडल जीता है। व्यक्तिगत मुकाबलों में भी भारत के गोल्ड मेडल की उम्मीद है। और हम आपको बता दें श्रोताओं कि कल आपका पसंदीदा खेल खिलाड़ी कार्यक्रम इसी फ्रीक्वेंसी पर शाम 5:30 बजे की जगह रात 8 बजे सुना जा सकेगा। तो प्रोग्राम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ मुझे धर्मेंद्र और
0: मुझे शिवांश
1: को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार
1: नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में फ्रांस के कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
1: सेंट कोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंच ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमएसीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। विवाटेक सम्मेलन के इस संस्करण में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंडप है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री इस समय विवाटेक सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: For the 10th edition of VivaTech. This is Europe's biggest technology event. I congratulate President Macron and the organizers for the success of VivaTech. Friends, 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement.
0: सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है।
3: पत्तन रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही है। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले तीन दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,300

71 मेट्रिक टन एलएनजी से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने अब तक 3,639 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी की सराहना की है। पिछले 3 दिन में 47 नाविक वापस आए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी बहन भाइयों को हमारी
1: राम
0: राम
1: राम।
0: तो पायल बहन हम हाजिर हो गए हैं ग्राम संसार कार्यक्रम लेकर के।
1: और बिल्कुल अतुल भाई, देखिए हर बृहस्पतिवार को हमारे जितने भी श्रोता हैं, जितने भी भाई बहन हैं, सभी को इंतजार रहता है आज के इस कार्यक्रम का। और क्यों ना हो, क्योंकि आज होता है खास कार्यक्रम, जो कि होता है SMS पर आधारित लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम। और अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से भाई लोगों की फरमाइश तो हम पूरी करते ही हैं, साथ ही साथ कुछ ज्ञान भरी चर्चा भी रहती है।
0: बिल्कुल, देखिए आज जो है 18 जून है, और 18 जून को देखिए महारानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस जो है वो मनाया जाता है।
1: बिल्कुल भाई, देखिए 1858 में इसी दिन उन्होंने ग्वालियर में अंग्रेजों से लड़ते हुए मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे।
0: बिल्कुल, और देखिए मात्र 23 वर्ष की उम्र में
1: बिल्कुल
0: अपने प्राणों की आहुति दे करके देखिए देश की आज़ादी की क्रांति में देखिए एक बिगुल फूंक दिया था उन्होंने।
1: वो क्रांति की जो लड़ाई थी, यानी कि 1857 की कहते हैं ना, चमक उठी 1857 में, वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
0: बिल्कुल, तो ये तो रही भाई जी जानकारी जान लक्ष्मीबाई शहीद दिवस के बारे में। और अब SMS भी हमारे पास में देखिए हमारे श्रोताओं ने काफ़ी भेज दिए हैं। और पहले जो हमारे कलाकार हैं पायल बहन, वो हैं ऋषिपाल खदाना और कोशिंदर खदाना, इनके लिए भी हमारे पास में SMS आ गए हैं। और ये SMS हमारे पास में आया है पायल बहन चंडीगढ़ से, भेजने वाले हैं सतीश अनेजा और इनका पूरा परिवार। वडिंगखेड़ा पंजाब से फरमाइश भेज रहे हैं मिंटू टॉम्स और इनका पूरा परिवार। गांव चौहलदा बागपत उत्तर प्रदेश से फरमाइश भेज रहे हैं संजय ढींगिया और इनका पूरा परिवार। सूरतगढ़ राजस्थान से हमें ये SMS मिला है, भेजने वाले हैं भूपेंद्र मिशन और इनका पूरा परिवार। हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से SMS भेज रहे हैं विजेंद्र विश्वकर्मा और इनका पूरा परिवार।
1: ऋषिपाल और कौशिंदर खदाना को ही सुनने के लिए हमारे पास SMS आया है नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से, और भेजने वाली हैं मुसरत जहां नाज और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये SMS हमारे पास आया है कुगदा कुमरी छत्तीसगढ़ से, भेजने वाले हैं बलराम बया और इनके परिवार के सदस्य। ये SMS हमारे पास आया है अकरम हुसैन प्रिंस डाक बाबू का और इनके परिवार के सभी सदस्यों का, और इन्होंने ये SMS हमें भेजा है कलेरा बिहार से। और भाई मोहम्मद आसिफ खान और निखत परवीन ने भी बिहार से हमें ये SMS भेजा है।
0: ये SMS हमें मिला है गांव चौधरीवास हरियाणा से, भेजने वाले हैं मांगेराम सतौड़ और इनका पूरा परिवार। ये SMS हमारे पास में आया है पायल बहन ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, भेजने वाले हैं रामशरण विश्वकर्मा और इनका पूरा परिवार। पटेल नगर मैलोट से भी हमारे पास में SMS आया, भेजने वाले हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया और इनका पूरा परिवार।
1: भोला कॉलोनी घरोंडा जिला करनाल हरियाणा से हमें SMS भेजा है विजेंद्र कुमार जयजान और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। साहू नगर यवतमाल से हमें SMS भेजने वाले भाई हैं राहुल मनवर और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये SMS हमारे पास आया है गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से, और भेजने वाले भाई हैं सैयद मसरूर और इनके परिवार के सभी सदस्य।
0: दादरी गेट भिवानी से भी हमारे पास में SMS

0: ऐसा भेजने वाले हैं कृष्ण मेहरा और इनका पूरा परिवार। छत्तीसगढ़ हसदा नंबर 2 से फरमाइश भेज रहे हैं कमलेश साहू और इनका पूरा परिवार। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से फरमाइश भेज रहे हैं ताज मोहम्मद अंसारी और इनका पूरा परिवार। गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं विक्रम कडवासरा और इनका पूरा परिवार।
1: जमानिया गाजीपुर से ये SMS हमें भेजा है सुरेश जायसवाल और इनके सभी परिवार के सदस्यों ने। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से हमें SMS भेजा है मोहम्मद साहिद अब्बासी और इनके परिवार के सभी सदस्य। छत्तीसगढ़ डोंगर गांव से ये SMS भेजा है राष्ट्रपाल गजबिये और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने।
0: रामगढ़ कैंट से फरमाइश भेज रहे हैं महेंद्र मोदी और इनका पूरा परिवार। गांव नथाना पंजाब से फरमाइश भेज रहे हैं हरजिंदर सिंह छिद्दा और इनका पूरा परिवार। सादुल शहर राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं पायल बहन राम कुमार रेवाड और इनका पूरा परिवार। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से फरमाइश भेज रहे हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह और इनका पूरा परिवार। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से हमारे पास में फरमाइश आई है, भेजने वाले हैं रवि कुमार राहुल और इनका पूरा परिवार।
1: पिंगावाला चौक जलंधर से ये SMS हमें भेजा है संदीप मक्कर और परिवार के सभी सदस्यों ने। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से ये SMS आया है अनिल मोहन और इनके परिवार के सभी सदस्यों का। ये SMS हमारे पास आया है पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से, भेजने वाले हैं मेहर अरोड़ा और इनके परिवार के सभी सदस्य।
0: तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर ऋषिपाल खदाना और कोशिंदर खदाना की आवाज में ये रागनी और किस्सा रहेगा सरवर नीर का।
2: अकल

0: तो अतुल भाई, ये किस्सा था सरवर नीर का। और भाई रागनी हमने सुनवाई ऋषिपाल और कौशिंदर खदाना की आवाज़ में, और मौका वो जब भटियारी की सरा से रानी इमली जो है सौदागर की जगह पर जो है वो खाना लेके जाती है, तो उस मौके की ये रागनी भाई उसके भटियारी की सरा से जब जाती है रानी इमली के और सौदागर के जो है सवाल जवाब, बहुत ही बढ़िया रागनी। और अगले जो हमारे कलाकार हैं उनके लिए भी हमारे पास SMS आ चुके हैं।
1: बिल्कुल पायल भैन, अगले हमारे कलाकार हैं देवेंद्र सिंह, और इनके लिए भी SMS आया है। और ये SMS आया है हमारे पास में रिंगनी छत्तीसगढ़ से, भेजने वाले हैं दिनेश वर्मा और इनका पूरा परिवार, भटिंडा रोड मंडी डबवाली से SMS भेज रहे हैं राजेंद्र नारंग और इनका पूरा परिवार।
0: ये SMS हमारे पास आया है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, और भेजने वाले भाई हैं PS नहावकर और इनके परिवार के सभी सदस्य। ढाणा नरसान भिवानी से भी हमें SMS किया है जगदीश चंडालिया और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। दुबिया नवेदा जिला गाजीपुर से ये SMS आया है प्रतीक राय और प्रांजल राय और इनके परिवार के सभी सदस्यों का। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ये SMS हमें भेजा है ओम प्रकाश राय और इनके परिवार के सभी सदस्यों का।
1: और ये SMS हमारे पास में आया है पायल बहन दुर्गा कालानी हांसी से, भेजने वाले हैं राजू मिगलानी और इनका पूरा परिवार। GTB मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब से फरमाइश भेज रहे हैं मोहम्मद अनवर अंसारी और इनका पूरा परिवार। ये SMS हमारे पास में आया है पायल बहन जनकपुरी सहारनपुर से, भेजने वाले हैं जॉन डिकेस्टो और इनका पूरा परिवार। ये SMS हमें मिला है अनारकली बजराव बाजार जगराओं पंजाब से, भेजने वाले हैं सुनील पाठक, कमल पाठक और इनका पूरा परिवार। ये SMS हमारे पास में आया है कबीर कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से, भेजने वाले हैं देवशंकर तामुरिया और इनका पूरा परिवार।
0: चौधरीवास हिसार से हमें SMS भेजा है राजू अग्रवाल विवेक प्रियांशी ने, और ये

0: एसएमएस हमारे पास आया है एमएलबी रोड ग्वालियर से भेजने वाले भाई हैं सुरेश खुराना पप्पी और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये एसएमएस हमारे पास आया है धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से भेजने वाले भाई हैं निसार सलमानी और इनके परिवार के सभी सदस्य।
1: ये एसएमएस हमारे पास में आया है रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से भेजने वाले हैं अखिलेश कुमार शाहू और इनका पूरा परिवार। मेरठ कैंट से हमें फरमाइश भेज रहे हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़। ये फरमाइश हमारे पास में ये बेहरवाला खुर्द सिरसा से भेजने वाले हैं बलवंत जाखड़ और इनका पूरा परिवार। हनुमानगढ़ टाउन से फरमाइश भेज रहे हैं सुल्तान सिंह ताड़ और इनका पूरा परिवार। गांव नाई वाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं वेद मिड्डा और इनका पूरा परिवार।
0: ये फरमाइश हमारे पास आई है शिव कुमार चौहान की और इनके परिवार के सभी सदस्यों की। बाबा कुटीर रायगढ़ से ये फरमाइश हमें भेजी है। ये फरमाइश हमारे पास आई है गांव मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से और भेजने वाले भाई हैं रमेश कुमार कंबोज और इनके परिवार के सभी सदस्य। ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से भी हमें फरमाइश भेजी है और भेजने वाले भाई हैं सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और इनके परिवार के सभी सदस्य।
1: तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर देवेंद्र सिंह की आवाज़ में ये रागनी।

0: शांति का धन सफल कमाई सबर करे सुख हो से। बहुत ही बढ़िया जो है ये रागनी हमने सुनवाई अपने सभी बहन भाइयों को देवेंद्र सिंह की आवाज़ में। और अतुल भाई देखिए एक बात बहुत ही अच्छी हमारे जो है ना बुजुर्ग कह गए हैं पुराने के कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पुत्र आज्ञाकारी और चौथा सुख कुलवंती नारी। तो इसमें सबसे पहला सुख जो है ना वो है निरोगी काया का। और निरोगी काया तब होगी जब आप कहीं ना कहीं भाई अपने आप को साध लेंगे, अपने शरीर को साध लेंगे और योग का सहारा कहीं ना कहीं लेंगे।
1: बिल्कुल, देखिए 21 जून को योग दिवस भी आ रहा है और निश्चित रूप से अगर हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सुबह को थोड़ा सा शरीर को समय देते हैं, अपने को वर्जिश करते हैं और तुम्हारा योग करते हैं, तो निश्चित रूप से जो है हमारे शरीर के जो है थोड़े थोड़े रोग खत्म हो जाते हैं
0: और उससे बहुत ही स्फूर्ति शरीर के अंदर, तन और मन दोनों की शांति और स्फूर्ति शक्ति बनी रहती है। बिल्कुल बनी रहती है। तो कहीं ना कहीं योग का सहारा हमें सबको लेना चाहिए। और सहारा क्या लेना चाहिए, योग निश्चित तौर पर करना चाहिए। तो देखिए बातें अपने बहन भाइयों से हम आगे भी करेंगे और हमारे जो आज के दूसरे कलाकार हैं वो हैं यशपाल, और इनके लिए भी हमारे पास देखिए बहुत सारे SMS आ रहे हैं। ये जो SMS आया है ये आया है भोपालगढ़ राजस्थान से, भेजने वाले भाई हैं धर्मेंद्र छिपा और इनके परिवार के सभी सदस्य। जलालाबाद वेस्ट से ये हमें SMS भेजा है सुरेश गगनेजा और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। दादा बाबू रोड झारखंड से ये SMS आया है मोहम्मद यासीन अनजान और इनके परिवार के सभी सदस्यों का।
1: ये SMS हमारे पास में आया है जसपुर उत्तराखंड से, भेजने वाले हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी और इनका पूरा परिवार। हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से फरमाई भेज रहे हैं रजाक मोहम्मद और इनका पूरा परिवार। दतरेंगी भाटा पारा छत्तीसगढ़ से फरमाई भेज रहे हैं हीरा मणि वर्मा और इनका पूरा परिवार। और कलानौर हरियाणा से फरमाई भेज रहे नरेंद्र शर्मा और इनका पूरा परिवार। और पायल बहन ये SMS हमारे पास में आया है गाँव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से, भेजने वाले हैं राजेंद्र कुमार बलकित कौर इनका पूरा परिवार। संबलपुर कांकेर से फरमाइश भेज रहे हैं फागुराम यादव और इनका पूरा परिवार। गांधीनगर गुजरात से फरमाइश भेज रहे हैं सुरेश राठौड़ और इनका पूरा परिवार। पलारी छत्तीसगढ़ से भी हमारे पास में SMS आया है, भेजने वाले

0: कुमार देवांगन और इनका पूरा परिवार।
1: शहर भागा पुराना पंजाब से ये हमें SMS भेजा है सरदार परमजीत सिंह और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। ये SMS हमारे पास आया है कनेरा मोहल्ला पटियाला से भेजने वाले भाई हैं मुकेश भत्ता और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये फरमाइश हमारे पास आई है ये करावल नगर दिल्ली से भेजने वाले भाई हैं रामनाथ प्रजापति श्रीमती सुमन देवी और ये फरमाइश हांडीखेड़ा से हमें भेजी है राधेश्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा ने। ये फरमाइश हमारे पास आई है लौडाड़ा जिला बागपत से भेजने वाले भाई हैं जगमोहन सिंह प्रजापत और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये फरमाइश हमारे पास आई है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से भेजने वाले भाई हैं सुरेश ग्रोवर और इनके परिवार के सभी सदस्य।
0: ये फरमाइश हमारे पास में जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से भेजने वाले मुकेश कश्यप और उनका पूरा परिवार। जटवाड़ा गाजियाबाद से भी फरमाइश भेज रहे हैं शीशपाल अकेला और इनका पूरा परिवार। गांव फरासी जिला हिसार से फरमाइश भेजे राजकुमार डूडी और इनका पूरा परिवार। तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर यशपाल की आवाज में ये रागनी।
2: बोला

तो पायल बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे यशपाल की आवाज़ में ये रागनी, और इसी रागनी के साथ आज का हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी राम राम, राम।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां पारंपरिक तरीके सीमित साबित होते हैं, वहां नवाचार प्रभावी समाधान प्रदान कर सकता है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने भारत में डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कृषि क्षेत्रों में तेजी से हो रहे प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में उपलब्धियों के माध्यम से मानव क्षमता की नई सीमाओं का विस्तार कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए। श्री मोदी ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
2: 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
1: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
3: सेंट कोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। सरकार ने कहा कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,370 मीट्रिक टन LNG से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनः परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त परिसर अभियान के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की। विश्वविद्यालय के 53,000 से अधिक छात्रों ने देश को नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा ली। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मीनाक्षी हुडा विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज अपने मुकाबले खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंच

3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी किसान बहन भाइयों को हमारी
1: राम राम, राम।
0: तो पायल बहन हम फिर से हाजिर हो गए हैं कृषि जगत कार्यक्रम लेकर के। और भाई कृषि जगत कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने सभी किसान बहन भाइयों के लिए नई नई जानकारियां लेकर के आते हैं, और आज भी ऐसी ही जानकारी लेकर के आए हैं वर्तमान सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम।
1: बिल्कुल, और इसमें जो है अपने सभी बहन भाइयों को हम ये वार्ता सुनवाएंगे महिला सशक्तिकरण और FPO के संग जो है ये
0: क्षेत्र में जो है विकास
1: के लिए
0: किस प्रकार से विकास किया है सरकार ने, और इसकी जानकारी दे रहे हैं बृहस्पति कुमार पांडे। तो पायल बहन लेते हैं ये थोड़ी सी जानकारी।
2: आज का जो चर्चा का विषय है वह है महिलाओं का सशक्तिकरण और FPO। बीते 12 सालों में क्या बदलाव आए हैं महिलाओं की स्थिति में और किसानों की स्थिति में क्या बदलाव आएंगे। सबसे पहले महिलाओं की स्थिति अगर देखी जाए तो ग्रामीण महिलाओं को आमतौर पर घर के काम काज करने वाली और चूल्हा चौका तक ही सीमित देखा जाता रहा है, लेकिन पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में जो बदलाव देखने को मिल रहा है वह वैश्विक लेवल पर महिलाओं को सुदृढ़ बनाता है। अगर हम बात करें भारत सरकार की सबसे सफल और महत्वाकांक्षी योजना ड्रोन दीदी की, तो इसने महिलाओं की न केवल आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है बल्कि महिलाओं को एक नई पहचान देने का काम किया है। पहले जो घर के काम काज तक सीमित रहती थीं या खेतों में काम करती थीं या कम पढ़ी लिखी थीं, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वह रिमोट ड्रोन ऑपरेटर के तौर पर काम करेंगी, ड्रोन उड़ाएंगी। लेकिन सरकार के ड्रोन दीदी योजना के आने के बाद 10वीं पास महिलाओं को एक ऐसा अवसर सामने आया जिसके जरिए उन्होंने न केवल अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की बल्कि कृषि में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ड्रोन दीदी परियोजना की शुरुआत लगभग 1261 करोड़ रुपए के धनराशि के साथ की गई थी, और इसमें सबसे बड़ी जो बात थी देश के 15,000 समूहों को टारगेट करके रखा गया था कि जो महिलाएं 10वीं पास हैं, जिनके पास घर का काज करने के अलावा बाहर जाकर के वो काम कर सकती हैं, ऐसे महिलाओं को चिन्हित किया गया और उन्हें भारत सरकार द्वारा 10 से 15 दिन की रिमोट ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग के दौरान न केवल उनको ड्रोन संचालित करने की ट्रेनिंग दी गई बल्कि कृषि में छिड़काव के लिए उपयोग आने वाली कीटनाशक दवाओं के बारे में, खाद उर्वरक के बारे में, उसके डोज के बारे में भी जानकारी दी गई। इस योजना का परिणाम यह रहा कि जो महिलाएं घर के कामकाज तक सीमित रहती थीं, जिन्हें सिर्फ हाउसवाइफ के नाम से जाना जाता था, उनकी जो सीजन में कमाई थी वह लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये पर मंथ तक पहुंच गई, और उनके जरिए जो खेतों में कीट और बीमारियों का प्रकोप होता था उससे जो फसल को नुकसान होता था उसका भी बचाव होना संभव हो पाया। सबसे बड़ी बात कि महिलाओं को ड्रोन के इस्तेमाल के दौरान जो क्रॉप एरिया था उसमें दवा का डोज देने, उसके अलावा बीमारियों और कीट की पहचान करने, उसके नियंत्रण करने की व्यवहारिक जानकारी प्राप्त हुई है। इससे कृषि में जो केवल पुरुषों का एक छत्र अधिकार था उसमें न केवल महिलाओं का भी अधिकार शामिल हो पाया है बल्कि कृषि में जो हानि का स्तर था उसमें भी कमी लाए जाने में सफलता मिली है। अगर हम बात करें ड्रोन दीदी के सफलता की तो देश भर में करीब 15,000 SHG यानी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं ड्रोन संचालित कर रही हैं, और सरकार के जरिए इन्हें न केवल निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया गया है बल्कि 8 लाख रुपए का अनुदान भी ड्रोन क्रय करने के लिए प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त जो धनराशि खर्च होती है वह स्वयं सहायता समूह को अपना अंश लगाना होता है, और यह देखने को मिला है कि घर के काम काज के साथ महिलाएं जो है खेतों में भी काम कर रही हैं, ड्रोन उड़ा रही हैं, और साथ ही कृषि में के हानि के स्तर को भी कम करने में सफलता मिली है। महिला सशक्तिकरण की बात यहीं समाप्त नहीं होती है। पहले जो है किसानों को फसल उपज करने का तो अधिकार था लेकिन यह माना जाता रहा है कि किसान जो है अपनी उपज करते थे लेकिन उन्हें मूल्य तय करने का अधिकार नहीं था। 12 साल के इस दौर में यह भी दौर देखने को मिला है जब किसानों को अपने कृषि उत्पादों का मूल्य तय करने का पूर्ण अधिकार सरकार ने प्रदान किया है, और साल 2020 में सरकार ने एक ऐसी योजना लॉन्च की जिसमें से बिचौलियों और आढ़तियों का जो एक छत्र राज था वो पूरी तरीके से समाप्त कर

में सरकार कामयाब रही है और 10,000 एफपीओ का टारगेट सरकार ने रखा। और एफपीओ जो है, जैसा कि सभी लोग इस समय जान रहे हैं कि किसानों का एक ऐसा समूह है जो किसान उत्पादन करते हैं। इसमें ऐसे किसान शामिल हैं जो छोटी जोत के हैं, मझोले जोत के हैं, जो थोड़ा थोड़ा उत्पादन करते हैं, और जब उन्हें बिक्री करनी होती थी तो उनका मूल्य जो है बिचौलिया तय करते थे, आड़ती तय करते थे, इसलिए उन्हें अक्सर हानि का सामना करना पड़ता था। सरकार ने इसी नजरियों को ध्यान में रखते हुए एफपीओ की धारणा को साकार किया और 10,000 एफपीओ गठन करने का टारगेट रखा, जिसमें नाबार्ड, एसएफएसी जिसे लघु कृषि व्यापार संघ के नाम से जाना जाता है, इन एजेंसियों को अगुवाई दी कि देश भर के तमाम राज्यों, सुदूर क्षेत्र के गांवों में ऐसे किसानों को संगठित करके एफपीओ गठित किया जाए और एफपीओ अलग अलग मुद्दों पर काम करे। कुछ क्षेत्र में जहां काला नमक धान की खेती होती है, सुगंधित धान जिसे कहते हैं, ऐसे किसानों को संगठित करके एफपीओ बनाया जाए। दूध पर काम करने वाले किसानों को संबंधित करके डेयरी का एफपीओ बनाया जाए। मछली उत्पादन करने वाले किसानों को संगठित करके मछली का एफपीओ बनाया जाए। तो किसानों को लेकर के जो विजन तय किया था सरकार ने, वह 31 दिसंबर 2025 को पूरा हो चुका है और देश भर में 10,000 से ज्यादा एफपीओ का गठन किया जा सका है। आज देश भर में किसान खुद अपने मूल्य तय करता है। हम तमाम ऐसे एफपीओ की बात भी करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपने उत्पादों को ले जाने में सक्षम रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि एफपीओ के जरिए किसानों के आय में कितना अंतर आया, उत्पादन में कितना अंतर आया, कीट बीमारियों के नियंत्रण में कितना अंतर आया और इसमें महिलाओं का किस तरीके से सशक्तिकरण हो पाया है। जो भी एफपीओ गठित किए गए उनके लिए सरकार ने बहुत सारी सहूलियतें प्रदान की है। सबसे पहले जो सहूलियत है वह यह है कि सरकार ने एफपीओ के गठन और प्राथमिक संचालन के लिए लगभग 15 से 18 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया है। इसमें ऐसे एफपीओ को 3 साल तक उसके संचालन, उसके सीईओ की सैलरी, ऑफिशियल खर्चा को चलाने के लिए 15 से 18 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा अगर किसान अपना कोई बिजनेस प्लान बनाता है अपने उत्पादों के जरिए, उसके प्रोसेसिंग, उसका मूल्यवर्धन यानी वैल्यू एडिशन करने का काम करता है, तो उसके लिए 15 लाख रुपए तक का इक्विटी ग्रांट और 2 करोड़ रुपए तक का जो है उनको क्रेडिट ऋण भी प्रदान किया जाता है। तो ऐसे में किसानों को न केवल एक अवसर मिला कि अपना जो है वो मूल्य तय करें, बल्कि उनके उत्पाद जो है ब्रांडिंग होकर के, उनका वैल्यू एडिशन होकर के आज विदेशों में निर्यात किए जा रहे हैं और जो विदेशी मानक हैं उस पर खड़े उतर रहे हैं। इसके अलावा किसानों को खेती में तमाम जरूरतें होती हैं, इक्विपमेंट की, कृषि यंत्र की, कीटनाशक की, खाद उर्वरक की, तो सरकार ने इस मामले में भी किसानों को सहूलियत प्रदान की है। किसानों को खाद बीज की दुकानों के संचालन के लिए लाइसेंस प्रदान किए गए हैं, कृषि इनपुट बेचने के लिए लाइसेंस प्रदान किए गए हैं और कृषि में काम आने वाले यंत्र हैं, चाहे वो पराली प्रबंधन को लेकर के हो, हार्वेस्टिंग को लेकर के हो, प्रोसेसिंग को लेकर के हो, या जुताई गुड़ाई निराई से जुड़े हुए हैं। ऐसे कृषि यंत्रों पर बहुत सारे ऐसे स्कीमें चलाई गई जिस पर 80% तक का अनुदान एफपीओ को प्रदान किया जाता है। बहुत सारे ऐसे एफपीओ देश में काम कर रहे हैं जिसे फार्मर मशीनरी बैंक प्रदान किया गया है। इसमें उनको तमाम तरह के ऐसे यंत्र प्रदान किए गए हैं जो पराली प्रबंधन में काम आते हैं। जो हरित प्राधिकरण है उसका जो दिशा निर्देश है कि पराली न जलाया जाए, ऐसे में इन यंत्रों का उपयोग करके एफपीओ पराली प्रबंधन कर रहे हैं, पराली प्रबंधन के जरिए अतिरिक्त आय प्राप्त कर रहे हैं और समय से खेती से जुड़े कार्य संपादित हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम एफपीओ के और फायदों की बात करें तो कुछ ऐसे एफपीओ की भी हम चर्चा करेंगे, जैसे झारखंड के हजारीबाग में महिलाओं का एफपीओ है जिसमें 7,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और इस 7,000 महिलाओं में करीब 2,500 महिलाएं ऐसी हैं जो शेयर धारक हैं। यह एफपीओ भारत का सबसे ज्यादा बिजनेस व्यवसाय करने वाला, टर्नओवर करने वाला महिलाओं का एफपीओ है, जिसे चुरचू नारी ऊर्जा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से जाना जाता है। इस एफपीओ से जुड़ी हुई महिलाएं खुद न केवल अपने उत्पाद तैयार करती हैं बल्कि उसका वैल्यू एडिशन करती हैं, ब्रांडिंग करती हैं और उसका विपणन भी करने का काम कर रही हैं। अगर हम राजस्थान के महिला एफपीओ की बात करें तो यहाँ पर समृद्धि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी नाम की एक महिलाओं की एफपीओ है जिसमें करीब 2,200 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और ये प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन का काम कर रही हैं, मसालों के प्रोसेसिंग का काम कर रही हैं। इन महिलाओं ने साबित किया है कि हम केवल घर के कामकाज तक न सीमित रह करके अगर इन्हें अवसर प्रदान किया जाए तो यह
देश दुनिया तक अपनी पहचान बना सकती हैं। और ये पहचान दिलाने में भारत सरकार ने अहम भूमिका निभाई है, उन्हें ड्रोन दीदी के जरिए, एफपीओ के जरिए। ऐसे ही एक एफपीओ की हम चर्चा करेंगे जो बदायूं जनपद में स्थित है। यहाँ पर भी 300 महिलाओं का एक एफपीओ काम कर रहा है जो अलग अलग उत्पादों को तैयार करता है, उत्पादित करता है, उनकी ब्रांडिंग मार्केटिंग करने का काम कर रहा है।

0: उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के जनपद की अगर बात करें तो यहाँ पर 11 जनपदों का एक विशेष चावल है जिसे काला नमक के नाम से जाना जाता है और ये GI टैग प्राप्त चावल है। पहले जो है इस चावल का मूल्य जो है 60 से 70 रुपए प्रति केजी जाता था, लेकिन FPO की अवधारणा आने के बाद बहुत सारे ऐसे FPO गठित हुए जिन्होंने काला नमक की न केवल वैश्विक लेवल पर मार्केटिंग ब्रांडिंग की, बल्कि आज काला नमक बौद्धिस्ट देशों में बुद्ध के प्रसाद के तौर पर 1500 रुपए प्रति केजी तक जा रहा है और आमतौर पर औसत जो भारत में काला नमक चावल का विक्रय हो रहा है वो लगभग 150 से लेकर के 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जा रहा है। इसी तरीके से सृष्टि नाम की एक FPO है जो उत्तर प्रदेश के तराई जनपद में ही महाराजगंज में स्थित है। यहाँ 1500 महिलाओं का एक FPO है जो वहाँ के आम और काला नमक का निर्यात करता है, उसके प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करके विदेशों में निर्यात करने का काम कर रहा है। FPO की अवधारणा की अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं रहती थी जब किसान के पास थोड़ा अनाज उत्पादन होता था और उनको मार्केट में या मंडी ले जाने में समस्या होती थी, तो ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया जहां पर दलहनी फसल होती है, तो दलहनी फसलों वाले क्षेत्र में ऐसे FPO किसानों को संगठित किया गया और सरकार ने एक बड़ा अवसर यह प्रदान किया कि जिन किसानों के पास अपनी खेती की खुद की जमीन है, खुद खेती करते हैं और खुद उत्पादन से जुड़े हुए हैं, ऐसे ही लोगों को FPO का डायरेक्टर नियुक्त होने का अधिकार प्रदान किया गया, ऐसे ही लोगों को सदस्य या शेयर धारक होने का अवसर प्रदान किया गया। सरकार ने इस नीति में ऐसे लोगों को बाहर कर दिया जो किसानों के नाम पर बिचौलिया बनकर के उनके उत्पाद को औने पौने रेट पर खरीदते थे, तो ऐसे किसान संगठित हो पाए हैं और जो छोटा छोटा उनका उत्पाद है वो एक जगह पर एक संगठन के तौर पर एकत्रित होता है और फिर वह FPO उसके ब्रांडिंग मार्केटिंग वैल्यूडेशन करने के बाद उसका मूल्य खुद निर्धारित करता है और FPO द्वारा तय किए गए मूल्य पर यह बिक्री होता है। बहुत सारे आउटलेट्स FPO के चल रहे हैं देश भर में, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश और खासकर देश की राजधानी दिल्ली में पूसा में भी FPO के बहुत सारे आउटलेट हैं। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में किसानों का एक बाजार सरकार ने खोला हुआ है जहां पर बहुत सारे FPO अपने उत्पादों को ले आकर के वहां पर प्रदर्शित करते हैं, उनके आउटलेट खुले हुए हैं और किसानों द्वारा तय किए गए मूल्य पर ही उत्पाद लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। सरकार ने इसमें लगभग 6585 करोड़ रुपए का प्रावधान किया FPO गठन के लिए और इसमें जिन एजेंसियों को लगाया गया, इन एजेंसियों ने न केवल FPO गठन कराने का काम किया बल्कि वह FPO का परिचालन कैसे करेंगे, संचालन कैसे करेंगे, साथ ही अपना बिजनेस प्लान कैसे तैयार करेंगे और बिजनेस प्लान को सफल कैसे करेंगे, इन सारी चीज़ों को लेकर के व्यावहारिक और जो टेक्निकल ट्रेनिंग है वो दोनों तरह की ट्रेनिंग प्रदान की। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका नाबार्ड ने निभाई, SFAC ने निभाई और नाबार्ड और SFAC जैसी जितनी भी एजेंसियां काम कर रही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की एक एजेंसी है सीमा द्वारा जो FPO गठित किए गए, ऐसे सभी FPO को शुरुआती 3 साल के परिचालन के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई, ड्रोन क्रय करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए गए हैं, कीटनाशक, खाद बीज, कृषि यंत्र, इसके अलावा अनाज में जो नमी होती है उसको कम करने के लिए तमाम तरह के आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रावधान किया गया है। तो पिछले 12 सालों में देश में किसानों की हालत न केवल सुधरी है बल्कि जो महिलाएं गांव तक सीमित थीं, अपने घरों तक सीमित थी, घूंघट तक सीमित थी, वह महिलाएं घर से निकल करके एक ड्रोन पायलट के तौर पर काम कर रही हैं, खेती में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। साथ ही जो किसान आढ़तियों और बिचौलियों के चंगुल में फंसे हुए थे, वह आढ़तियों और बिचौलियों के चंगुल से मुक्त होकर के खुद अपने मूल्य का निर्धारण कर पा रहे हैं। सरकार की जो धारणा थी किसान लागत की अपेक्षा कम से कम 2 गुना आय प्राप्त करे, FPO के आने के बाद इस धारणा को और ज्यादा बल मिला है और आज के दौर में बहुत सारे ऐसे FPO हैं जो 4 से 5 गुना तक भी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं और यह सब कुछ संभव हुआ है वर्तमान सरकार के दूरदर्शन नजरिए से और उसके मजबूत इरादे के साथ।
1: तो पायल बहन, बहुत ही अच्छी जानकारी अभी हमारे सभी किसान बहन भाइयों को मिली है। वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम के तहत जिसमें महिला सशक्तिकरण और FPO के क्षेत्र में जो विकास हुआ है उसके बारे में ये जानकारी दे रहे थे वार्ताकार बृहस्पति कुमार पांडे। और सरकार ने ऐसी बहुत सी योजनाएं हमारे सभी किसान बहन भाइयों के लिए चलाई हुई हैं पायल बहन, उन्हीं में से एक योजना है गोवर्धन योजना।
2: बिल्कुल सही कहा आपने अतुल भाई, गोवर्धन योजना यानी GOBAR धन योजना भारत सरकार की एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य पशुओं के गोबर और जैविक कचरे को बायोगैस व जैविक खाद में बदलना है। ये ग्रामीण स्वच्छता में भी अतुल भाई सुधार लाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। किसानों की आय बढ़ाने में भी ये मदद करता है भाई, पशुपालन के साथ साथ भाई इनके गोबर से भी आप ये योजना का लाभ उठा सकते हैं। और इसका एक तरह से जो पूरा नाम है वो है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, है ना। और इसका जो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग इस योजना का एक नोडल विभाग है, इसके अंदर अंतर्गत ये योजना
1: कार्य कर रही है योजना। और देखो गांवों को स्वच्छ रखना पायल बहन, और ठोस कचरे का सुरक्षित प्रबंधन करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और गाय के गोबर और कृषि अपशिष्ट का उपयोग करके बायोगैस, बायो सीएनजी और जैविक उर्वरक तैयार करना, यानी कि हमारे जो किसान भाई हैं पायल बहन, वो अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों को कम करके जैविक खाद का प्रयोग अगर करते हैं तो उनका जो फसल का उत्पादन है वो भी बढ़ता है।
2: बिल्कुल, क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी
1: बिल्कुल
2: बहुत अच्छी आएगी। ग्रामीण परिवारों और किसानों को अतिरिक्त आय का साधन एक तरह से इससे प्रदान होता है। आर्थिक सहायता स्वच्छ भारत मिशन यानी ग्रामीण के तहत गाँव में सामुदायिक या क्लस्टर बायोगैस संयंत्र लगाने के लिए जिला जो है वो 50 लाख तक की वित्तीय सहायता इसमें,
1: हाँ, अगर कोई भी हमारा किसान भाई अगर करना चाहता है तो वो जो है वित्तीय सहायता उसे मिल सकती है 50 लाख रुपए तक की। और देखिए आवेदन करने की प्रक्रिया यही है कि अपने राज्य या जिले में चल रही परियोजनाओं की स्थिति या इसके लाभार्थी की पात्रता के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र पर जाकर के आप जानकारी ले सकते हैं। जनसेवा केंद्र पर जाकर के भी आप और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
2: बिल्कुल।
1: और देखिए पायल बहन, अब गर्मी का मौसम भी चल रहा है और हमारे जो किसान भाई हैं भाई वो धान की नर्सरी की भी तैयारी जो है कर रहे हैं, तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि भाई अगर बारिश हुई है, जैसे देख रहे हैं कि बारिश, एक दो बारिश भी हो चुकी है, तो खेत के अंदर खरपतवार भी इस समय पैदा हो जाते हैं, तो अपने खेत की भाई नर्सरी आप लगाना जब तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 बार आप अपने खेत की जो है जुताई अवश्य कर लें, जिससे खेत में जो है खरपतवार है वो नष्ट हो जाए और अपना जो है अपना धान की रोपाई आप समय से कर सकें।
2: तो आइए, ये तो रही काम की बात अतुल भाई, और अब करवाते हैं अपने सभी भाई बहनों का मनोरंजन और सुनवाते हैं एक उपदेश
1: ब्रजेश की आवाज।

0: तो ब्रजेश के इस उपदेश के साथ ही अतुल भाई हमारा आज का ये कृषि जगत कार्यक्रम समाप्त होता है। सुनने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी राम राम, राम, राम।
1: इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पारासर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं गजल कव्वाली।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, 8:45 होने को कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुर दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे

0: बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
3: PLI है ना?
4: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में 42 जनकल्याण शिविर आयोजित किए। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने पूर्व अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन सहित अन्य ग्रुप सी के खाली पदों पर भर्ती में 20% आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया। विश्वविद्यालय QS रैंकिंग में IIT दिल्ली एक बार फिर देश का सर्वोच्च संस्थान बना। दिल्ली पुलिस ने शिशु तस्करी रैकेट का पर्दाफाश कर 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और एशियाई तलवारबाजी प्रतियोगिता कल से नई दिल्ली में शुरू। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार द्वारा आज राष्ट्रीय राजधानी में 42 जनकल्याण शिविर आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 3 दिवसीय जनकल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के अभियान से प्रेरित है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 3 दिनों तक चलने वाले इन शिविरों में नागरिकों को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर मिल सकेगा।
6: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
5: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इन शिविरों में पिंक कार्ड, राशन कार्ड, ई श्रम कार्ड, लखपति बिटिया योजना और प्रधानमंत्री उदय योजना जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सेवाएं शामिल हैं। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री और पूर्वी दिल्ली से सांसद हर्ष मल्होत्रा ने विश्वास नगर क्षेत्र में दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित जन कल्याण शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक ओम प्रकाश शर्मा, अभय वर्मा और संजय गोयल भी शामिल रहे। लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहेब सिंह ने आज दिल्ली सरकार द्वारा बंगाली मार्केट और NDMC सामुदायिक केंद्र में आयोजित जन कल्याण शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि इन शिविरों में आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, विधवा और विवाह सहायता योजनाएं सहित अनेक जनहितकारी सेवाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिविरों में आने वाले लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। केंद्रीय राज्य मंत्री और पूर्वी दिल्ली से सांसद हर्ष मल्होत्रा ने 12 साल विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के अभियान के अंतर्गत आज भोलानाथ नगर से घर घर संपर्क अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान श्री मल्होत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश में हुए परिवर्तनकारी विकास कार्यों, जनहितकारी योजनाओं और सुशासन की उपलब्धियों के बारे में स्थानीय नागरिकों से संवाद किया।
7: प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने 2014 में 200 से अधिक योजनाएं जन कल्याण की बनाई, न केवल बनाई बल्कि उनको मूर्त रूप दिया। देश के 140 करोड़ लोगों के लिए उन्होंने ये योजनाएं बनाई और कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति को उन योजनाओं का लाभ मिला है।
5: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने की रणनीति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के दौरान तरणजीत सिंह सिंधु ने पूर्व अग्निवीरों के कौशल का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन, जेल वार्डन, फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड सहित ग्रुप सी के खाली पदों पर सीधी भर्ती में 20%

0: प्रतिशत आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने आगे बताया कि सभी को समान अवसर देने और देश के लिए उनकी सेवा को सम्मान देने के उद्देश्य से इस प्रावधान के अंतर्गत भर्ती योग्य पूर्व अग्निवीरों के लिए खुली रहेगी। श्री संधू ने आगे बताया कि सभी संबंधित विभागों के लिए भर्ती नियमों में जरूरी बदलाव और प्रक्रियाएं पूरी करने की समय सीमा इस महीने की 30 तारीख तय की गई है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं ज्योत्सना पांडे।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली का भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। आईआईटी दिल्ली को वैश्विक स्तर पे 118वां स्थान प्राप्त हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: शिक्षा मंत्रालय के अनुसार जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने 75 पायदान ऊपर चढ़कर 686वीं रैंक हासिल की है। इसके साथ ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान वैश्विक रैंकिंग में 105वें स्थान पर शामिल है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में 52 भारतीय संस्थान शामिल हैं, जिनमें से 13 भारतीय विश्वविद्यालयों ने दुनिया के शीर्ष 550 संस्थानों में जगह बनाई है। आईआईटी बम्बई और आईआईटी मद्रास भी विश्व के शीर्ष 200 संस्थानों में शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में देश के कुल 52 संस्थानों को स्थान मिला है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनः परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनः परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ORS, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए DTC बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने एक संदेश जारी कर विद्यार्थियों को अपनी तैयारियों पर भरोसा रखने के लिए प्रोत्साहित किया है। एजेंसी ने कहा कि उम्मीदवारों ने साल भर कड़ी मेहनत की है और अब उनका पूरा ध्यान परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने पर होना चाहिए। एजेंसी ने छात्रों को सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। एजेंसी ने कहा कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की नकल या अनुचित गतिविधि के प्रयास में सख्ती से निपटा जाएगा। एजेंसी ने अभिभावकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और आम जनता से अफवाहों पर विश्वास न करने तथा अपुष्ट जानकारी साझा न करने की सलाह दी है। केवल एजेंसी की आधिकारिक घोषणाओं पर ही भरोसा करने को कहा गया है। उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति CP राधाकृष्णन ने नशा मुक्त परिसर अभियान के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा की गई महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने इस वर्ष की शुरुआत में विश्वविद्यालय में नशा मुक्त परिसर अभियान और ई प्रतिज्ञा मंच के शुभारंभ का उल्लेख करते हुए छात्रों से नशा मुक्त भारत के राजदूत बनने और नशे की समस्या के खिलाफ आवाज उठाने का आग्रह किया। दिल्ली सरकार ने गेस्ट टीचर्स द्वारा जनगणना कार्यों में बिताई गई अवधि को आधिकारिक तौर पर नियमित कार्य दिवसों के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह निर्णय शिक्षकों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय हजारों गेस्ट टीचर्स के पेशेवर हितों की रक्षा के लिए एक शिक्षक हितैषी कदम है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज द्वारका स्थित नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अटल इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सूद ने कहा कि यह केंद्र दिल्ली के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को नई दिशा देगा। नींव, दिल्ली AI ग्राउंड और दिल्ली स्टार्टअप युवा फेस्टिवल जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार ऐसी व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
3: अटल जी के

0: नाम से अटल इंक्यूबेशन सेंटर और नेताजी सुभाष चंद्र NSUT में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में इस प्रकार का एक इकोसिस्टम खड़ा किया जा रहा है जो अपने अपने तरीके से नए नए प्रोजेक्ट्स के आइडियाज को सोचकर आगे बढ़ाने वाले युवाओं को पैरों पर खड़ा होने का, जहां उन्हें फेलियर का डर ना हो, जहां उन्हें सक्सेस प्राप्त होने पर धोखे का डर ना हो, जहां उन्हें सही गाइडेंस ना मिलने का खौफ ना हो, ये प्रयास NSUT और AIC अटल इंक्यूबेशन सेंटर द्वारा किया गया है। इससे दिल्ली के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत बल मिला।
1: दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज राजौरी गार्डन स्थित राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय में जन कल्याण शिविर का उद्घाटन किया। श्री सिरसा ने बताया कि इन शिविरों में कई केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ आम नागरिक तक सरल और सुगम तरीके से पहुँचाना है।
2: इन जन कल्याण शिविर के अंदर पिंक कार्ड बनाना हो, राशन कार्ड बनाना हो, आधार कार्ड बनाना हो, हमारी दिल्ली सरकार की स्कीमें हो या भारत सरकार की केंद्रीय स्कीमें हो जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं, उनके 12 साल के उपलक्ष्य में ये कैंप लगाए गए हैं। इसके अंदर आज लोगों को आयुष्मान कार्ड भी बना के दिया जा रहा है, आज लोगों को हेल्थ कार्ड भी बना के दिया जा रहा है, लोगों को इनकम सर्टिफिकेट भी बना के दिया जा रहा है। ये अपने आप में एक समूह बनाया गया जिसमें दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की सारी स्कीमों का एक जगह शिविर कैंप लगाकर लोगों के लिए एक बड़ा काम करने का काम किया है।
1: ये शिविर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि दिल्ली विधानसभा ने वर्ष 2026-27 के लिए सदन की विभिन्न समितियों का गठन कर दिया है। एक रिपोर्ट।
3: नवगठित समितियों के महत्व के बारे में श्री गुप्ता ने कहा कि ये समितियां जन कल्याण से जुड़े विषयों पर प्रभावी निगरानी, गहन निरीक्षण तथा सुव्यवस्थित विचार विमर्श सुनिश्चित करेंगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नामित सदस्यों का सामूहिक अनुभव दिल्ली में लोकतांत्रिक जवाबदेही को और मजबूत करेगा। श्री गुप्ता ने कहा कि ये समितियां विधानसभा की कार्यकुशलता, जवाबदेही और जनहित से जुड़े विषयों पर प्रभावी निगरानी को और अधिक सुदृढ़ करेंगी। इन समितियों में कार्य मंत्रणा समिति, सरकारी आश्वासन समिति, नियम समिति, महिला और बाल कल्याण समिति, पर्यावरण समिति, अल्पसंख्यक कल्याण समिति तथा अन्य शामिल हैं। शिवांकी रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रियंका अरोड़ा।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राज्यीय शिशु तस्करी रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अभियान के दौरान 5 नवजात शिशु को भी बचाया गया। पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान 3 लाख रुपए से अधिक की नकदी भी जब्त की है। एशियाई तलवारबाजी प्रतियोगिता 2026 कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगी। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। 19 से 24 जून तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 34 देशों के 400 से अधिक खिलाड़ियों के भाग लेने की उम्मीद है। ओलंपियन भवानी देवी का इस प्रतियोगिता में 24 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व कर रही हैं। राजधानी में आज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल आंशिक रूप से बादल छाए रहने तथा धूप रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में 42 जन कल्याण शिविर आयोजित किए। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने पूर्व अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन सहित अन्य ग्रुप सी के खाली पदों पर भर्ती में 20% आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया। विश्वविद्यालय QS रैंकिंग में IIT दिल्ली एक बार फिर देश का सर्वोच्च संस्थान बना। और एशियाई तलवारबाजी प्रतियोगिता कल से नई दिल्ली में शुरू। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत मालिका।

अभी आपने गीत सुना फिल्म वारिस से। अमृता सिंह और राज बब्बर पर फिल्माया गया गीत और लता मंगेशकर के स्वर में। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गीत मालिका, फिल्म संगीत का कार्यक्रम अपने दोस्त मोहन के साथ आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर। सभी श्रोताओं का फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कार्यक्रम में चुने हैं कुछ चुनिंदा गीत जो आपको बेहद पसंद आते हैं और दिल को भाते हैं, हर कोई सुनना चाहता है ताकि हर किसी को लगे कि वो गीत उसके लिए है। ऐसी कोशिश हमारी तरफ से आप सब श्रोताओं के लिए।

अभी आपने गीत सुना हीरो फिल्म से तू मेरा हीरो है, अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज़ में। आप सुन रहे हैं गीत मालिका, गीतों की माला, ऐसे गीत जो आप सबको पसंद आते हैं, जिन्हें हर कोई सुनना चाहता है। हमारा प्रयास आपके लिए। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है सुर फिल्म से, लकी अली की आवाज़ में।

तुम्हारी यादों का मौसम बड़ा सुहाना है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। बशीर बद्र साहब की ये बोल बहुत कुछ कह जाते हैं। बहुत उम्दा शायर थे, बहुत बेहतरीन शेर उन्होंने लिखे, अपने आप में एक मुकाम थे। कुछ ही वक्त पहले उनका निधन हुआ और उर्दू को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि कोई अच्छा ही हमारे बीच से चली जाए तो उसकी यादें रह जाती हैं, उसका साथ एक कमी के रूप में महसूस होता है, एक अपनापन हम ढूंढते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये साथ हमेशा बना रहता तो बहुत अच्छा होता।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गीत मालिका कार्यक्रम आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर। आपके साथ मैं आपका

सिलसिला फिल्म से आपने गीत सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में, जावेद अख्तर के बोल और शिव हरी का संगीत। गीत अपने आप में उम्दा, संगीत अपने आप में बेहतरीन कालजयी रचना, ऐसे गीत हम आपको सुनाना चाहते हैं गीत मालिका कार्यक्रम में। आइए अब सुनते हैं चमेले फिल्म से गीत सुनिधि चौहान के स्वर में।

और श्रोताओं, गीतमाला कार्यक्रम में अब आखिरी गीत फिल्म कामचोर से लता मंगेशकर की ही आवाज़ में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को, और गीत को सुनते हैं, बहुत अच्छा गीत है, आप सभी को पसंद आएगा।

श्रोताओं, इस गीत के साथ मुझे आपसे लेनी होगी इजाजत। यही आपसे मेरी गुजारिश है कि अपना अपनों का ख्याल रखिए, जिंदगी में प्यार बनाए रखिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर आपसे बात होगी। तब तक अपने दोस्त मोहन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन

0: करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021 वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स। वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी एट अ मैसिव स्केल फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड मोर।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
1: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
0: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
1: 2026 इज अ स्पेशल ईयर फॉर इंडिया एंड यूरोप। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर We concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सेंट कोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंच ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन

0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
3: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
4: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
2: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
5: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
2: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायु सेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉक्टर श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खारब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सुभद्रा रामचंद्रन विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says technology can lead to progress only when it's democratized. Highlights use of technology in India's rapid digital transformation at VivaTech Summit in Paris. Prime Minister also holds discussions with leading French business leaders on investment opportunities and expansion plans in India. Education Minister Dharmendra Pradhan chairs high-level review meeting to assess preparations for NEET UG re-examination scheduled on Sunday. Iranian President Masoud Pezeshkian describes newly signed MOU between Iran and US as a historic document. Ukraine strikes a Moscow oil refinery for the second time within a week. And Meenakshi Hooda, advances to quarterfinals of World Boxing Cup 2026 in China. Four Indian boxers to be in quarterfinal action tomorrow. Prime Minister Narendra Modi today projected India as a global hub of innovation and technology while addressing the VivaTech 2026 summit in Paris. The Prime Minister said technology can lead to progress only when it's democratized. Mr. Modi urged global innovators to work with India and deliver for all.
4: India believes that in this era of disruption, technology must deliver for all. Let us take the example of AI. AI must improve lives, widen access, drive growth, and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision.
3: The Prime Minister highlighted that in the last decade, India has been going through a rapid transformation that is powered by technology.
4: In the last decade, India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture, and more.
3: Mr. Modi also held meetings with leading French business leaders to deepen economic and technological cooperation between the two countries. The discussions focused on investment opportunities and expansion plans in India. Talking to Akashvani, CMA CGM Chairman and CEO Rodolphe Sardé said, India is rapidly developing as a hub for green shipbuilding.
5: It's a great honor to meet with the Prime Minister to discuss about our development in India. We have been serving this market for many years and we are looking forward to expanding further. We are developing many initiatives, of which the building of 1700 TEU container in a shipyard in India. So we look forward to not only building those ships, but eventually building even more.
3: Our correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
6: Addressing the VivaTech Summit in Paris today, the Prime Minister said technology must deliver for all and highlighted India's rapid digital transformation in areas such as financial inclusion, education, healthcare, and agriculture. He noted that UPI now powers nearly half of world's real-time digital transactions and is available in France also. Earlier in the morning, Mr. Modi met top French CEOs, Saint-Gobain, Mistral AI, and CMA CGM leaders, expressed confidence in India's growth prospects and announced plans for greater investments and collaboration in manufacturing, artificial intelligence, and green shipping. The Prime Minister is now attending a grand cultural program, Bonjour Modi, organized by the Indian community at the Sol Pleyel Center in Paris. Mahesh Sopre, Akashwani News, Paris, France.
3: The Ministry of External Affairs today highlighted the key outcomes of Prime Minister Modi's visit to France. Briefing the media in Paris, Foreign Secretary Vikram Misri said the visit focused on three major pillars: trade, technology, and regional and international security. He said India and France jointly launched the Bharat Innovates initiative in Nice, providing a global platform for Indian deep tech startups. More than 120 Indian startups participated in the program. At VivaTech 2026 in Paris, where India was the AI country of focus, the Prime Minister emphasized a human-centric approach to artificial intelligence and the use of technology for inclusive development. Foreign Secretary Misri also noted progress in trade negotiations with the United Kingdom, Canada, the European Union, and the United States. He said discussions at the G7 Outreach Summit focused on maritime security, the safety of seafarers, developments in West Asia, and enhanced international cooperation on health and economic challenges. Union Minister Amit Shah today chaired a series of review meetings in New Delhi and reviewed

0: वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने पेरिस में वीवाटेक 2026 समिट से खिताब करते हुए भारत को इख्तराआत और टेक्नोलॉजी के एक आलमी मरकज के तौर पर पेश किया। वज़ीरे आज़म ने कहा कि टेक्नोलॉजी से तरक्की की राह सिर्फ इसी सूरत में हमवार होती है जब इसकी रसाई सब तक हो। उन्होंने कहा कि भारत ये मानता है कि रखना अंदाजी के इस अहद में टेक्नोलॉजी हर हाल में सब तक पहुंचाई जाए। उन्होंने आलमी इख्तराआत कारों से भी जोर देकर कहा कि वो भारत के साथ मिलकर काम करें और सब तक इसे पहुंचाएं।
1: इंडिया बिलीव दैट इन दिस एरा ऑफ डिसरप्शन टेक्नोलॉजी मस्ट डिलीवर फॉर ऑल। लेटेस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ AI। AI मस्ट इम्प्रूव लाइफ, वाइडन एक्सेस, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation at the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision.
0: वज़ीरे आज़म ने कहा कि पिछली एक दहाई में भारत में एक तेज रफ्तार कायापलट हुई है जो टेक्नोलॉजी की नहीं निमिनत है। जनाब मोदी ने फ्रांस के सरकर्दा कारोबारी लीडरों के साथ भी मीटिंग की ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान इक्तिसादी और तकनीकी तआवुन को और भी मजबूत किया जा सके। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: पेरिस में वीवाटेक 2026 समिट से खिताब करते हुए वज़ीरे आज़म ने कहा कि टेक्नोलॉजी हर हाल में सब तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने मालियाती शमूलियत, तालीम, हिफ्जान सेहत और ज़राअत जैसे शोबों में भारत की तेज़ रफ्तार डिजिटल कायापलट को उजागर किया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अब दुनिया के बरवक्त होने वाले डिजिटल लेनदेन का तकरीबन आधा हिस्सा UPI से तय पाता है और अब ये फ्रांस में भी दस्तयाब है। इससे कबल दिन में आज जनाब मोदी ने फ्रांस के बड़े CEO से मुलाकात की। सेंट गोबेन, मिस्टर लेआए और CMA CGM लीडरों ने भारत की तरक्की के इम्कानात में एतमाद का इजहार किया और मैन्युफैक्चरिंग, मसनूई जहानत और सब्ज जहाजरानी के शोबों में ज्यादा सरमायाकारी और शराकतदारी के मंसूबों का ऐलान किया। वज़ीर आज़म इस वक्त एक अदीमुशान सकाफती प्रोग्राम बोंजो में शिरकत कर रहे हैं जिसे पेरिस में सॉल पेलेल सेंटर में भारतीय बरादरी ने मुनाकिद किया है। फ्रांस के शहर पेरिस से महेश चोपड़े की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हबीब रहमान।
0: वज़ारत खारजा ने वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी के फ्रांस के दौरे के अहम नताइज को उजागर किया। पेरिस में मीडिया से बातचीत करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिसरी ने बताया कि दौरे के दौरान तीन अहम सुतूनों, तिजारत, टेक्नोलॉजी और इलाकाई नीज बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज की गई। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने नीज में मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेट्स स्कीम का इफ्तिताह किया जो भारत में टेक्नोलॉजी की महारत वाले स्टार्टअप्स के लिए एक आलमी प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। इस प्रोग्राम में भारत के 120 से ज्यादा स्टार्टअप्स ने शिरकत की। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इतवार को NEET UG के दोबारा होने वाले इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लेने की गरज से आज आला सतह की एक जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान वजीर मौसूफ ने इम्तिहान के अमल में सालमियत, शफाफियत और सलाहियत के आला तरीन मेयार को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने तमाम मुतालिका अहलकारों को हिदायत दी कि वह निगरानी कायम रखें और इस बात को यकीनी बनाएं कि दोबारा होने वाले इम्तिहान को आजादाना और सिफाना तौर पर मुनाकिद किए जाने के लिए तमाम जरूरी इंतजामात हों। जनाब प्रधान ने कहा कि वजारत की जानिब से नामजद अफराद तमाम रियासतों में तैनात होंगे ताकि वो इम्तिहान से मुतालिक सरगर्मियों से तालमेल कायम रखें और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल की सदारत में कायम मरकजी कमांड सेंटर को रिपोर्ट करें। मीटिंग के दौरान रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से भी ये कहा गया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उम्मीदवारों को सभी जरूरी सहूलियात मुहैया कराई जाएं, जिसमें इम्तिहान में बैठने के मुनासिब इंतजामात और पीने का पानी शामिल है ताकि वो हर किस्म के दबाव से पाक माहौल में इम्तिहान दे सकें। NEET UG इम्तिहान 2026 में अब जबकि सिर्फ 3 रोज बाकी रह गए हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने एक पैगाम जारी करते हुए कहा है कि उम्मीदवारों को चाहिए कि पुरसुकून रहें और अपनी तैयारी पर भरोसा रखें। एजेंसी ने कहा कि उम्मीदवारों ने पूरे साल सख्त मेहनत की है, लिहाजा अब उन्हें मुनासिब सुकून और इम्तिहान में अच्छी कारकर्दगी कारकर्दगी पर तवज्जो देनी चाहिए। एनटीए ने एक महफूज, मुनसिफाना और शफाफ माहौल में इम्तिहान मुनाकिद कराए जाने की यकीन दहानी भी कराई है।

वजारत तालीम ने आज बताया कि यूनिवर्सिटी की QS आलमी दर्जाबंदी 2027 में 52 भारतीय तालीमी इदारे शामिल हैं। भारत की जानिब से सबसे ऊपर के दर्जे में IIT दिल्ली है, जो आलमी सतह पर 118वें नंबर पर है, जबकि IIT बॉम्बे और IIT मद्रास भी दुनिया की बेहतरीन 200 यूनिवर्सिटीज में शामिल हैं। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि आलमी सतह पर भारत के तालीम से मुतालिक नक्श कदम मुसलसल वसत इख्तियार कर रहे हैं। अकलियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में 2027 की हज जायजा मीटिंग की सदारत की। जायजा मीटिंग के बाद नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए जनाब रिजिजू ने 2026 के हज को भारत की तारीख में सबसे ज्यादा कामयाब हज करार दिया। वजीर मौसूफ ने बताया कि 2026 के हज के लिए सऊदी अरब के हज और उमरे की वजारत ने भारत को 2 लब्बैतुम अवार्ड अता किए। उन्होंने बताया कि सरकार 2027 के हज के लिए जल्द ही नई हज पॉलिसी का ऐलान करेगी। मरकजी वजीर अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई जायजा मीटिंगों की सदारत की और कोऑपरेटिव बैंकिंग, नामियाती मसनूआत और कोऑपरेटिव बरामदात को मुस्तहकम करने के कौमी लाए अमल का जायजा लिया। कोऑपरेटिव बैंकिंग की बड़ी स्कीमों का जायजा लेने के दौरान जनाब शाह ने टेक्नोलॉजी को इख्तियार करके हुक्मरानी को बेहतर बनाकर और साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल अदायगी, खिदमात के मुश्तरका प्लेटफॉर्म और खिदमात की फरोख़शुदा डिलीवरी के जरिए कोऑपरेटिव बैंकिंग को मुस्तहकम करने की गरज से किए गए मुख्तलिफ इकदामात की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। कॉरपोरेट उमूर की वजारत ने एक बयान में बताया कि आने वाले बरसों में मुजव्वजा कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया और कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर के तआवुन में उसके किरदार के मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कोऑपरेटिव बैंकों के लिए सहकार सारथी टेक्नोलॉजी की मदद से किए जाने वाले इकदामात की पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ईरान के सदर मसूद पेसिशकियान ने ईरान और अमरीका के दरमियान तय पाए नए मफाहमत नामे को एक तारीखी दस्तावेज और एक मजबूत ईरान की जानिब से पैगाम दिया। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि अमन सिर्फ बाहमी एहतराम के जरिए हासिल किया जा सकता है और उन्होंने अपने वक़ार, आज़ादी और इलाकाई तआवुन के तहफ्फुज़ के साथ आलमी अमन के तय ईरान के अज़्म की तौसीक की। वर्साय में G7 समिट से अलग फ्रांस के सदर इमानुअल मैखों के साथ एक इशाइये के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए थे। दस्तावेज पर दस्तखत करने से कबल सदर ट्रंप ने कहा था कि यह समझौता तय पाना आसान नहीं था। दस्तखत किए गए मुआहदे को बाद में तेहरान भेजा गया और फिर सदर पेजिशकियान ने इस पर दस्तखत किए। फ्रांस के सदर इमानुअल मैखों ने इस मुआहदे का ये कहकर खैर मकदम किया कि इससे देरपा अमन और आबनाए हुरमुज के दोबारा खोले जाने के लिए राह हमवार होगी, जिससे आलमी सतह पर तवानाई की कीमत में कमी आने में मदद मिलेगी। यूक्रेन ने मॉस्को की एक तेल रिफाइनरी पर इस हफ्ते के दौरान दूसरी मर्तबा रातों रात हमला किया। इसके अलावा रूस के रोस्तोव खित्ते में कई मकामात को निशाना बनाया गया है। मॉस्को के मेयर सरगई सोबियानिन ने यह कहकर इन हमलों की तस्दीक की कि मॉस्को के जनूब मशरकी मजाफात में वाकई मॉस्को तेल रिफाइनरी पर कई ड्रोन से हमला किया गया। रूस की वजारत दिफा ने बताया कि मुल्क भर में यूक्रेन के 555 ड्रोन्स को बीच में ही रोककर जाया किया गया। रूस की ट्रांसपोर्ट वजारत ने बताया कि हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से परवाजें रोक दी गईं। रूस की सरकारी खबर रसां एजेंसी ने कहा है कि मॉस्को पर यह हमला इस बरस के सबसे बड़े हमले में से एक है। इधर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में यूक्रेन के सदर व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इन हमलों को रूस की जारी फौजी कार्रवाइयों के जवाब में एक काबिले जवाज रद्द अमल करार दिया। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क की तमाम रिफाइनरीज अपनी आला तरीन गुंजाइश के साथ काम कर रही हैं और उनके पास खातिर ख्वाह खाम तेल दस्तियाब है। साथ ही पेट्रोल और डीजल का मुनासिब जखीरा भी बरकरार रखा गया है। मगरबी एशिया में हालिया वाकयात के तनाजुर में नई दिल्ली में आज बैन वजारती ब्रीफिंग से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया कि पिछले 3 दिन में 1,36,00,000 LPG सिलेंडर की बुकिंग मौसूल हुई है, जबकि 1,47,00,000 सिलेंडरों की डिलीवरी दी गई है।

0: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं, रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले तीन दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं और मार्च से लेकर अब तक 10.02 लाख पीएनजी कनेक्शंस गैसिफाई किए गए हैं। 3.22 लाख कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है।
1: बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी रास्तों की वजारत में डायरेक्टर उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि माल्टा के झंडे वाला एलएनजी जहाज दिशा, जिस पर 62,370 मेट्रिक टन एलएनजी है, कल सुबह गुजरात के दहेज बंदरगाह पर लंगर अंदाज होगा। ये जहाज पीर को आबनाए हुरमुस से निकला था। मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक बड़े नए जाब्ते को मंजूरी दी है, जिसके तहत सोशल मीडिया के लिए कम से कम उम्र 15 बरस तय की गई है। इस बड़े कदम का मकसद डिजिटल स्पेस में बच्चों के तहफ्फुज़ को मुस्तहकम करना है। शेख मोहम्मद बिन राशिदुल मख्तूम की सदारत में मुत्तहिदा अरब अमारात की काबीना ने यह फैसला किया। इस करारदाद के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने और चलाने की इजाजत नहीं होगी और न उन्हें इंटरैक्टिव फीचर्स से, जैसे किसी मवाद को पोस्ट करने, उस पर कमेंट करने या उसे शेयर करने या पब्लिक ग्रुपों को ज्वाइन करने तक रसाई हासिल होगी। 15 से 16 साल तक की उम्र के बच्चों को महदूद रसाई हासिल होगी, लेकिन वो सख्त निगरानी में ही रसाई हासिल कर पाएंगे। प्लेटफॉर्म्स को इन जाब्तों पर पूरी तरह से अमल करने के लिए 12 महीने का वक्त दिया गया है। चीन के गियांग में जारी आलमी मुक्केबाजी कप 2026 में आज भारत की मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। मीनाक्षी ने खवातीन के 51 किलोग्राम जुमरे के 16 प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में पोलैंड की नतालिया को 5-0 से शानदार जीत हासिल की। 51 किलोग्राम के खवातीन के जुमरे में मीनाक्षी का मुकाबला कजाखिस्तान के अलाउ बाल्की बेकोवा से, जबकि 65 किलोग्राम जुमरे में स्नेह का मुकाबला पोलैंड की किंग करोका से होगा। क्वार्टर फाइनल में 57 किलोग्राम जुमरे में प्राची का मुकाबला चीनी ताइपे की चैंग यू यांग से होगा। 55 किलोग्राम के मर्दों के जुमरे में निखिल का मुकाबला आजरबाईजान के अमीन मोहम्मद ज़ादा से होगा। खवातीन मुकाबलों में 48 किलोग्राम जुमरे में ज्योति और 85 किलोग्राम में जुगनू ने पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाकर भारत के लिए तमगे को यकीनी बना लिया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी से तरक्की की राह सिर्फ इसी सूरत में हमवार होती है जब इसकी रसाई सब तक हो। उन्होंने पेरिस में वीवर टेक समिट में भारत की तेज रफ्तार डिजिटल कायापलट में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने फ्रांस के बड़े कारोबारी लीडरों के साथ भारत में सरमायाकारी के मौके और तौसी के मंसूबों पर तबादला ख्याल भी किया। वज़ीर-ए-तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी के इतवार को होने वाले दोबारा इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आला सतह की एक मीटिंग की सदारत की। ईरान के सदर मसूद पेजिश्कियान ने ईरान और अमरीका के दरमियान 9 दस्तखत शुदा मफाहमत नामों को एक तारीखी दस्तावेज करार दिया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए रोजगार के नए अवसरों को गति देती प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
1: श्रोताओं, पिछले साल केंद्रीय कैबिनेट ने एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दी थी। देश में रोजगार बढ़ाने की दिशा में ये योजना महत्वपूर्ण योजना के तौर पर उभर कर सामने आई है। श्रम व रोजगार मंत्रालय ने ईपीएफओ के माध्यम से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की थी, जिसे लगभग 1,00,000 रुपए के कुल बजट के परिव्यय से शुरू किया गया है। और इस योजना के तहत लक्ष्य रखा गया है कि देश भर में 2 साल के अंदर करीब 3.5 करोड़ रोजगार पैदा किए जाएं। अगर कहा जाए कि ये एक ऐसी योजना है जिसमें रोजगार देने पर या रोजगार प्राप्त होने पर एक तरह से प्रोत्साहन सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो इस संदर्भ में ये एक बड़ी महत्वपूर्ण इस योजना का तथ्य है। और

0: हम आज कार्यक्रम में इस योजना के संदर्भ में एक विशेष चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि कल एक महत्वपूर्ण दिन है जिसमें पहली बार इस योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की जा रही है। तो आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा, और साथ में हम इस कार्यक्रम में ऐसे लाभार्थियों से जिन्होंने इस योजना का लाभ लिया है, साथ ही जिन कंपनियों ने रोजगार दिया है उनके उन नियोक्ताओं से भी हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो आशुतोष जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। किस तरह से आप देखते हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को, कि 2 वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार को पैदा करने का जो इस योजना के तहत लक्ष्य रखा गया है, कितनी महत्वाकांक्षी योजना है ये?
1: सच्चाई ये है, समाज में इसकी जरूरत थी कि सरकार की ओर से आप ऐसा कुछ करें कि इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इसके लिए आगे बढ़ें कि भाई हमें नौकरी देनी है लोगों
0: बिल्कुल
1: को। तो उस दिशा में जब ये सरकार ने सोची और बजट में ही इसकी घोषणा हुई थी और उसके लिए फिर पूरी तैयारी हुई, कल पहली बार 2400 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी थी। ये पहली किस्त है क्योंकि अदरवाइज तो ये कुल बजट इसका करीब करीब 1 लाख करोड़ है, 99 लाख समथिंग कुछ इस तरीके से इसका है। तो वो चीजें पहली किस्त जा रही हैं। और आपने ये बात जो कही कि आप कुछ ऐसे लाभार्थियों से भी बात करेंगे और कंपनियों से भी बात करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए कि जो औपचारिक नौकरी पाने वाले जो युवा हैं उसके इसमें जो है 2 किस्तों में 15,000 रुपीज तक की कोई प्रोत्साहन राशि दी जाती है, वो दी जाएगी। और इससे जाहिर तौर पर कंपनियों को भी एक प्रोत्साहन मिलता है कि चलिए एक असिस्टेंट सरकार की ओर से मिला, हम लें, उनको भी जरूरत है। देखिए आज के दिन क्या है, अब जब फिर से वर्ल्ड ओपन अप होने वाला है, बहुत अच्छी बात हो गई कि वेस्ट एशिया क्राइसिस भी खत्म हो गया। अभी देखिए एक बार भी बहुत तेजी से काम भी बढ़ेंगे, कंपनियों के लिए भी बहुत काम आने वाला है हर क्षेत्र में। उसमें सरकार की ओर से ये मदद भी जब जाएगी तो और एक अच्छा माहौल बनेगा।
0: निश्चित तौर पर। और इससे पहले कि हम एक लाभार्थी को जोड़ें, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस योजना में जो रोजगार पाने वाले की मासिक अधिकतम जो सैलरी है वो 1 लाख तक रखी गई है, यानी हम देखें तो इस योजना के तहत रोजगार पाने वाला एक बड़ा मध्य वर्ग भी स्थापित होने जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं, जिस तरह से इसमें जो सैलरी का प्रावधान रखा गया है कि जो EPFO रजिस्टर्ड कंपनी में 1 लाख रुपए तक की मासिक सैलरी या वेतन पाने वाला कोई भी व्यक्ति है उसको ये लाभ मिलने वाला है?
1: कि 1 लाख तक के किसी को नौकरी मिल रही है बहुत ही प्रतिष्ठित माना जाता है।
0: बिल्कुल
1: दूसरी तरफ देखिए कि इस 1 लाख से जोड़ते हुए सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ही बजट में 12 लाख तक रुपए तक के ये जो है सो टैक्स फ्री
0: टैक्स
1: कर
0: फ्री किया
1: दिया।
0: था। बिल्कुल
1: ये देखिए ये दोनों चीजें जोड़ती हैं कि 1 लाख रुपए वेतन पाने वाला एक युवा जिसकी कि समाज में एक प्रतिष्ठा होगी, लेकिन जिस तरीके से समाज बढ़ रहा है, जिस तरीके का आकांक्षी समाज है, उसमें 1 लाख रुपए में बहुत सारी चीजें उसे जुटानी होती हैं। तो उस पर सरकार की ओर से एक्स्ट्रा भार न पड़े तो उसको टैक्स फ्री किया गया। कंपनियों को ये राहत दी गई कि आपको हम मदद करते हैं इसमें। तो ये मुझे लगता है बहुत अच्छा स्ट्रक्चर हुआ है आज के।
0: बिल्कुल जुड़े रहिए आशुतोष जी। एक लाभार्थी को हम शामिल करते हैं, अमन त्रिवेदी जो एक डेटा इंजीनियर हैं हमारे साथ जुड़े हैं। अमन जी, स्वागत है आपका।
2: नमस्कार
0: अमन जी, अपना अनुभव बताएं, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आपको किस तरह से लाभ मिला है, और थोड़ा अपनी प्रोफाइल के बारे में भी बताएं, किस तरह से आप एक EPFO रजिस्टर्ड कंपनी में काम कर रहे हैं और कैसे आपको इस योजना का प्रोत्साहन मिला है?
2: अगर सबसे पहले बात करें कि मुझे लाभ कैसे मिला है, तो उसमें सबसे पहले बात करें तो कंपनीज जो हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनको सबसे पहले तो इंसेंटिवाइज करा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप फ्रेशर्स जो होते हैं जिनका पहली बार EPFO का अकाउंट खुला है उन्हें
0: हाँ
2: हायर करिए।
0: बिल्कुल
2: तो मैं एक फ्रेशर हूँ, मैं इंजीनियरिंग करा हूँ, राइट, मैं और अभी मैं एज ए डेटा इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ। तो पहले क्या होता था कि इंटरव्यू से पहले ही आपसे पूछते थे एक्सपीरियंस है, नहीं है तो नहीं इंटरव्यू होगा, तो स्किल सेट पे बात ही नहीं आती थी। अब एज ए फ्रेशर भी मौका मिलेगा बहुत लाखों करोड़ों युवकों को कि एटलीस्ट इंटरव्यू तक जा तक जा इंटरव्यू में जाए और बता पाए कि उनकी प्रतिष्ठा कितनी है और उनकी कैपेबिलिटीज के बारे में। और बात करें तो जैसे कि जो 15,000 रुपये की राशि जो इम्प्लॉयज को भी दी जा रही है, वो दो टाइप, या तो वो कुछ 6 महीने बाद जो 7,500 और उसके 6 महीने बाद वापस 7,500। मेरा मानना है कि वो कुछ के लिए रिवॉर्ड है और कुछ के लिए मोटिवेशन है, वो कि कॉरपोरेट में गए हैं जो इम्प्लॉय एज एन एम्प्लॉय 6 महीने में, उसके बाद जो ये राशि आती है वो एक रिवॉर्ड लगता है कि ये मेरे एक नया कदम था और इसके साथ एक रिवॉर्ड मिला है। तो और वर्कफोर्स में इसके बाद मैं जो हमारी यंग जनरेशन है वो ज्यादा दिख रही है और ज्यादा दिखेंगी। तो आई थिंक जॉब सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखा

0: जाए तो भी ये योजना जो है ये बहुत मददगार साबित हुई है यंग जनरेशन के लिए। उस हिसाब से बहुत यंग एज के अंदर भी एक इस कॉरपोरेट के अंदर घुसने में भी बहुत मदद की है इस योजना ने मेरी और लाखों युवाओं की।
1: आशुतोष जी, आपको मैं फिर से जोड़ना चाहूंगा, और कि इस योजना के तहत नए लोगों को सामने लाने का मौका मिलेगा जो रोजगार की तलाश में है, और इसमें जैसे कंपनी और नियोक्ताओं के लिए भी ये शर्त है कि अगर 50 कर्मचारियों से कम संख्या की कंपनी है तो उन्हें 2 नए लोगों को हायर करना होगा, और अगर 50 से ज्यादा बड़ी कंपनी है तो 5 नए लोगों को हायर करना होगा। यानी जो नियोक्ता हैं उन पर फोकस है कि वो नए लोगों को रोजगार दें। किस तरह से इस दिशा में ये एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है कि जो फ्रेशर्स हैं, और जैसा कि अमन जी ने भी बात की, जो स्किलफुल लोग हैं वो सामने आए।
2: अब क्या है कि दो इसके पहलू देखिए इस योजना के। 1 लाख रुपए तक के लिए ये है जो किसी यूथ को मिलता है, उसमें सरकार इस योजना में लेकर के आई है। दूसरी तरफ जो फर्स्ट टाइम ईपीएफओ में एनरोल हो रहे हैं, अब आज के दिन आप थोड़ी सी अगर पीछे थोड़ा पीछे घूम कर देख लें तो आप देखेंगे कि इतनी कितनी संख्या है ऐसे लोगों की जो कि बिल्कुल फ्रेशर आ रहा हो और उसे सीधे 80 हजार 90 हजार 1 लाख रुपये मिल रहा नहीं। ये यहाँ पर आप जो है सो एक माहौल ऐसा क्रिएट करते हैं कि कंपनियां जो हैं, और उसमें आपने ये बात भी कही कि 50 से कम है तो 2 और उससे ऊपर है तो कम से कम 5 की जो बात है वो एक लिमिट भी डाल करके, क्योंकि कंपनियां भी दोनों चीजों से चलती है, एनर्जी के साथ भी चलती है अनुभव के साथ भी चलती है, तो वो अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन उस बीच में फ्रेशर्स के लिए जो नए युवा आ रहे हैं स्किल लेकर के, उनको कैसे एक मौका मिले उसके लिए माहौल बने।
1: बिल्कुल, तो यहाँ पर मैं नीलेश वर्मा जी को भी शामिल करना चाहूँगा, जिन्होंने रोजगार को लेकर एक अपनी कंपनी में भी इस योजना के तहत रोजगार देने में मदद की है। नीलेश जी, स्वागत है आपका, अपने बारे में बताएं, अपना परिचय दें पूरा, और साथ ही इस योजना को किस तरह से आपने इम्प्लीमेंट किया अपने लिए, इसके बारे में भी बताएं।
3: धन्यवाद। मेरा नाम नीलेश वर्मा है। आई एम वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ इंटेलीडीबी एंटरप्राइज। वी आर वन ऑफ द प्रीमियम स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन जो एआई के तहत एंटरप्राइज डेटाबेस में काम कर रही है। हम लोगों की सबसे बड़ी परेशानी हायरिंग थी, और हायरिंग के साथ साथ लोगों को रिटेन करना था, बिकॉज हायरिंग वॉज वन पार्ट एंड रिटेंशन वॉज द अनदर पार्ट। जितने भी न्यू ब्लड हैं आज की डेट में, नए लोग हैं जो कॉलेज पास आउट हैं, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्रेशर्स, द प्रॉब्लम विद दीज फ्रेशर्स वर देयर रिटेंशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज दे ऑलवेज लुक एट मनी ओवर दी करियर, मोस्ट ऑफ देम। आई वुड नॉट से ऑल ऑफ देम, बट मोस्ट ऑफ देम दे लुक एट हॉपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लुकिंग एट देयर करियर मोर रादर देन स्टिकिंग टू एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभी रिसेंटली जब से ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना लागू हुई है, इससे हमारे जैसे एम्प्लॉयर्स को काफी बेनिफिट मिला है इन टर्म्स ऑफ यू नो हायरिंग दी राइट सेट ऑफ रिसोर्सेज एंड मेकिंग देम स्टिक टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बहुत ही फोकस्ड अप्रोच है, और इसको मैं यू नो आई एम ग्रेटफुल टू दी ईपीएफओ एंड दी पीएम ऑर्गेनाइजेशन फॉर रोलिंग दिस आउट। हालांकि इस योजना के बारे में आज भी बहुत लोगों को पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नो आई बींग एन एम्प्लॉयर, आई गॉट टू नो अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन कपल ऑफ मंथ्स अगो, बट मैं इसके बारे में और डीप जानना चाहूंगा, अंडरस्टैंड करना चाहूंगा, एंड आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ कैन वी लेवरेज इट टूवर्ड्स दी यंग जनरेशन एम्प्लॉयमेंट।
1: बिल्कुल, तो आपको क्या उम्मीद है इस योजना से? जैसे आप जैसे जो एक तरह से मैं कहूं कि देश के विकास में भी आप जैसे जो एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं बिजनेसेस एंटरप्रेन्योर्स, तो कैसे इस योजना से आगे आने वाले समय में एक बहुत स्किलफुल वर्कफोर्स आपको मिलने वाली है, और जो इंसेंटिव्स मिल रहे हैं उससे भी कैसे अट्रैक्ट होंगे आजकल के जो यूथ हैं वो इस योजना के जरिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टैलेंटेड पूल हमारे सामने आ पाए।
3: जी। मेरे लिए इनफैक्ट सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह योजना केवल एक फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है फॉर द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, यह एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटीज एंड मैकेनिज्म है, एंड इट एक्चुअली इनकरेजेस कंपनीज टू क्रिएट मोर जॉब, एंड इट इनकरेजेस यंग प्रोफेशनल टू एंटर इन टू द फॉर्मल वर्क फोर्स विथ कॉन्फिडेंस। जब सरकार रोजगार देने वाले संस्थानों को समर्थन देती है तो उसका प्रभाव केवल कंपनी तक सीमित नहीं रहता है, इट एक्चुअली क्रिएट्स अ मल्टीप्लायर इफेक्ट अक्रॉस फैमिलीज, कम्युनिटीज एंड द ब्रॉडर इकोनॉमी। एवरी न्यू एम्प्लॉय सपोर्ट्स अ हाउस होल्ड।

0: and every household contributes towards the consumption and every successful business contributes towards the nation building. So basically, जितने भी नए रोजगार को हम प्रोत्साहन देते हैं, अलग अलग योजनाओं को के तहत सरकार हमें इंसेंटिव देती है एज एन एम्प्लॉय, एज एन एम्प्लॉयर, ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी की, हमारी कंट्री की कॉन्ट्रीब्यूशन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है।
1: बिल्कुल आशुतोष जी, आपसे अब मैं जुड़ना चाहूँगा। कुछ आंकड़े बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस योजना से संबंधित, जैसे जो कुल रजिस्ट्रेशन इस योजना के तहत अब तक हुआ है कर्मचारियों का, जो नए कर्मचारी जुड़े हैं, लगभग 60 लाख के करीब नए कर्मचारी इससे जुड़े हैं, और युवाओं की संख्या अगर हम देखें तो 71% के आसपास है इसमें। और साथ में एक और महत्वपूर्ण तथ्य इस योजना के तहत निकल के आया है कि महिलाएं भी 30% के आसपास जुड़ी हैं, यानी विमेन वर्कफोर्स भी इस योजना से बढ़ता हुआ देश भर में देखा जा रहा है। और कैसे आप देखते हैं जिस तरह से ये आंकड़े हैं कि इतनी कम समय में और इतना अच्छा उत्साह है रोजगार के सृजन में, और साथ ही जैसा कि मैंने युवाओं की और विमेन वर्कफोर्स की तो बात की ही, क्या आपका कहना है?
2: दोनों चीजें हैं, एक तो इसकी जरूरत थी और दूसरी बात कि सरकार की ओर से मदद तो कंपनियां भी आगे बढ़ी, तो ये रजिस्ट्रेशन तो आपको दिखना ही था, ये जो जोश है वो तो दिखना ही था। जैसे अभी निलेश जी ने बात कही ना, इनके ऑर्गेनाइजेशन में 15 लोग हैं जो फ्रेशर हैं, बिल्कुल जो जाकर के इन्होंने कॉलेज से पिक किया, कैंपस से उठाया और लेकर के आ गए। अब यही इस योजना की जो खूबी है वो यही है
1: बिल्कुल,
2: तो ये और जाहिर तौर पर ये फोकस ही किया गया है उस एज ग्रुप पे, जो बात अभी शुरुआत में अमन जी ने भी कही ना कि 21 से 30 के बीच में जो सबसे ज्यादा फोकस भी वही है, क्योंकि वही जरूरत है, वही आने वाले दिनों में बदलेंगे विभाग को।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जैसा कि नाम में ही है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, तो विकसित भारत का एक रोड मैप ये योजना देती है, क्योंकि इसमें एक तरफ इंसेंटिव है नियोक्ताओं को और रोजगार पाने वालों को, दूसरी तरफ देश में एक स्किल्ड वर्कफोर्स को औपचारिक सेक्टर में लाने की इस योजना के तहत पूरी कवायद है, जिससे कि रोजगार बड़ी संख्या में बढ़े और एक पूरा स्किल सेट तैयार हो युवाओं का, जिससे कि देश के विकास में वो अपना योगदान दे सकें। बहुत धन्यवाद आप सभी का कार्यक्रम में जुड़े और इस योजना के जो फायदे हैं और आने वाले समय में जो एक बड़ा इसका आउटकम निकल कर सामने आएगा, इन सभी बातों पर आप सभी ने विस्तार से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे रोजगार के नए अवसरों को गति देती प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: Countrywide.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ा है, जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ

0: सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है। इसी गति, इसी प्रगति का नतीजा है कि आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। साथियों, आज भारत की कहानी सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस की कहानी नहीं है, सिर्फ यहां अटक नहीं जाती है, ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की भी कहानी है।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान क्यूवेस विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें स्थान पर रहा। यह भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों को एक ऐतिहासिक दस्तावेज और एक सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस की एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेन के ड्रोन को नष्ट कर दिया। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों की उड़ानें रोक दी गई। मीनाक्षी हुड्डा चीन के विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नातालिया कुचेस्क्वा को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुके हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi today projected India as a global hub of innovation and technology while addressing the VivaTech 2026 summit in Paris. The Prime Minister said technology can lead to progress only when it's democratized. Mr. Modi urged global innovators to work with India and deliver for all.
1: India believes that in this era of disruption, technology must deliver for all. Let us take the example of AI. AI must improve lives, widen access, drive growth, and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision.
2: The Prime Minister highlighted that in the last decade, India has been going through a rapid transformation that is powered by technology.
1: In the last decade, India has been going through a rapid transformation that

कार्यक्रम गुलदस्ता में अभी आपने सुनी इरफत बी की गाई गजलें, इनको संगत दी सितार पर अकील अहमद, सारंगी पर तनिष धोलपुरी, तबला पर इनके साथ थे शिवम भारद्वाज और हारमोनियम पर जाकिर ढोलपुरी। और आइए अब कार्यक्रम गुलदस्ता के अंत में हम आपको सुनवाते हैं वंदना ठाकुर की आवाज़ में ये गज़ल।

इसी के साथ कार्यक्रम गुलदस्ता अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ या 810 किलोहर्ट्ज़ पर। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे श्री गणेश प्रसाद मिश्रा द्वारा राग मिश्र खमाज में ठुमरी गायन। तबले पर संगत दे रहे हैं श्री मिहिर कुमार नट्टा और सारंगी पर हैं श्री शंभू सिसोदिया।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आपने सुना श्री गणेश प्रसाद मिश्रा द्वारा राग मिश्र खमाज में ठुमरी गायन। तबले पर संगत दे रहे थे श्री मिहिर कुमार नट्टा और सारंगी पर थे श्री शंभु सिसोदिया। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब आप समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
2: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है, जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमरीका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

आदाब, सलाम, नमस्ते एंड अ वेरी वार्म वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने फिल्म संगीत के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। इस कार्यक्रम में हम शामिल करेंगे आपके ईमेल्स और सुनवाएंगे आपको बेहद प्यारे प्यारे गीत। और आज का ये सफर आप तय करेंगे आपकी साथी, आपकी मितवा, आपकी दीप्ति के संग। तो शुरू करें आज का ये सफ़र।

जी हाँ, प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है और इस सिलसिले के साथ ही सिलसिला शुरू हो चुका है आपके ईमेल्स का। तो ये ईमेल जो इस समय मेरे सामने खुला हुआ है, ये हमें भेजा है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा जी ने। और ये अगला ईमेल हमारे सामने है ग्राम पीपरलोट सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा का। पंजाब भूषण खेरा से क्षमा कीजिएगा, ये ईमेल में कुछ सही से नहीं लिखा है इन्होंने कि ये कहाँ से लिख रहे हैं। कृपया आप अपना मेल फिर से भेज दें। और ये अगला मेल हमारे सामने है नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाजमंजिल महसूल सीतामढ़ी से अक्रम हुसैन, प्रिंस डाक बाबू, बेगम इशरत अक्रम, वसीम अक्रम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अक्रम, शमीम अक्रम, ममता रानी शर्मा, पूनम रानी शर्मा, कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निखत परवीन का। और आदर्श नगर मल्लाउट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरव, शाइना और मेंडी शर्मा भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं।

फिल्म अभिमान के लिए किशोर कुमार साहब को अभी आपने सुना। फिल्म अभिमान में अदाकारी के जलवे बिखेरे पर्दे पर अमिताभ बच्चन साहब ने और इनका साथ दिया जया भादुड़ी साहिबा ने, जो उस समय जया भादुड़ी और आज के समय पे जया बच्चन जी के नाम से जानी जाती हैं। और ये मेल हमें फिर से मिल चुका है, फजिलका पंजाब से भेजा है भूषण खेरा, विशाल खेरा, विशु खेरा, लाडी शालिनी और दिवानशी खेरा ने। इसके साथ ही हम ये जो अगला मेल हमें मिला है, ये हमें भेजा है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौर जी ने, बीकानेर से रानी और बिट्टू झाब ने, और इन्होंने हमें कहा है नमस्कार। तो आपको भी हमारा बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा हमारे साथ बनी हुई हैं इस कार्यक्रम में। और ये मेल हमें भेजा है छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई, दुखनी सदफ आरजू, जूही।

इकबाल, इमरान अहमद, काब सहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी राबिया मंतशा, आशु अहमद और इनकी पूरी फैमिली ने ये अगला मेल हमारे सामने जो खुला हुआ है ये है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित का। और इसके साथ ही सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। और इसी तरीके से हमें मेल भेजते रहिए, अपना नाम और कहां से आप ये मेल हमें लिख रहे हैं ये ज़रूर साफ शब्दों में भेजिए।

ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित ये खूबसूरत फिल्म नमक हराम राजेश खन्ना और बच्चन साहब अमिताभ बच्चन साहब के दमदार अभिनय से सजी और आवाज़ थी इस गीत में किशोर कुमार साहब की। भावपूर्ण दमदार अभिनय और चेहरे के भावों से इन एक्टर्स ने लाखों दिलों को जीता। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट भी रही। और अब हम बढ़ चले हैं अपने कार्यक्रम में अगली ईमेल की ओर। 16 नंबर वार्ड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से रेखा रघुवंशी, पूजा रघुवंशी, बबिता, नंदिनी, लड्डू चौधरी, स्वाति, प्रज्ञा और कुमारी वंदना हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। इसके साथ ही ये जो हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, इन्होंने हमें मेल भेजा है रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब ने। ये अगला मेल जो हमारे सामने है, इसको हमें लिख भेजा है संबलपुर कांकेर से फागु राम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव ने। इसी के साथ हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश, पूनम, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा।

आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल पर प्रोग्राम चल रहा है आपकी फरमाइश, और इस कार्यक्रम में आज आपका साथ दे रही हूँ मैं आपकी साथी आपकी मितवा आपकी अपनी दीप्ति। श्रोताओं, ये जो अगला ईमेल हमें मिला है ये भेजा है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला और विशाल नहावकर ने। गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह अविराज और पोत्रे गुरनूर सिंह शुभदीप सिंह ने हमें ये मेल भेजा है। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर भी हमारे साथ इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमशुल कमर राही, राकिबा शाहीन, तुबा आफरीन और शमीम अख्तर अंसारी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है।

श्रोताओं, ये जो मेल हमें भेजा है ये हमें मिला है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन टिल्लू और मधु नायक का। चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंद्री लहरे भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं। रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा, नायाब और लड्डू भी हमें सुन रहे हैं। और ये एक बहुत लंबा चौड़ा मेल हमें भेजा है गांधी चौक बाड़ मेल राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा ने। और इन्होंने हमें लिखा है कि इनको हमारा कार्यक्रम बहुत बहुत पसंद आ रहा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यारा शब्दों का जाल हमें लिखकर भेजा है, इतना खूबसूरत आपने इस चीज़ को इस अंदाज में बयां किया है कि हम आपके हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। बने रहिए हमारे कार्यक्रम के साथ। यूं ही ये अगला मेल हमारे पास है, इसको हमें भेजा है फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनैद मुजावर, सभीहा मुजावर, मिखाइल मुजावर, जैनब मुजावर ने। और इस ये जो अगला मेल है ये हमें लिख भेजा है दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से रेखा, बसंत कुमार सिन्हा, अजय कुमार गुप्ता, नन्हे मुन्ने बच्चे अन्विका, तनुषी गुप्ता ने। और आपने हमें सलाम बोला है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत, बेहद खूबसूरत सिंगर्स की आवाज़ में सोनू निगम और श्रेया घोषाल की।

श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत पर आधारित आपकी फरमाइश। और ये जो मेल हमें भेजा है इसमें बहुत ही अजीब सी कहूँ या क्या कहूँ बात लिख भेजी है हमारे नियमित श्रोता हैं एके पांडे जी मध्य प्रदेश से। तो आपने जो हमसे क्वेश्चन पूछा है उसके लिए तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप जहाँ के भी निवासी हैं गर्व से कहिए कि हम यहाँ के रहने वाले हैं। वैसे हम सब की पहचान एक ही है, भारतीय, हिंदुस्तानी। खैर, अगला ईमेल जो हमारे सामने खुला हुआ है ये है पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्वनी और गोविंद चुग का। ये मेल हमें भेजा है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश, प्रिंस, निखिल और यशस्वी वर्मा ने। नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया, शाहीन नाज और नाजिया नूरी भी हमारे कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये मेल भेजने का। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी साहब, साथ में प्रमोद कुमार डूडी साहब और पुष्पेंद्र कुमार डूडी भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं।

और ये मेल जो हमें दोबारा भेजा है प्रकाश वर्मा साहब ने, तो देखिए आप हमें दो बार मेल भेज चुके हैं और आपसे यही गुजारिश है कि दूसरों को भी मौका दीजिए। ये मेल हमारे सामने जो है इसको भेजा है अस्तुपुरा ज़िला मऊ से मजहर अली अंसारी, रज़िया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाज़ीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद ने। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत आशा भोसले और किशोर कुमार साहब की आवाज़ में। फिल्म का नाम है यादों की बारात और आई एम श्योर कि ये वाला गाना सुन के आपको कुछ ना कुछ पुरानी याद आएगी ज़रूर।

0: बाल कपड़ों वाली मेम साहब।
1: हाँ, मैं।
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

और ये मेल हमें भेजा है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल ने। चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद, दिनेश प्रसाद और कालिंद्री लहरे हमारे साथ बने हुए हैं। और इसी के साथ ये अगला मेल, प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल और यशस्वी वर्मा का हम आपका नाम और आपका मेल ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं। रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, अलीजा नायाब और लड्डू भी हमारे साथ बने हुए हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक भी हमें सुन रहे हैं। और शास्त्री नगर बीट शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साईराज सपकाल, विशाल सपकाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने हमें लिखा है कि मैंने इतने मेल भेजे, आप हमें नज़रअंदाज क्यों कर रही हैं, मेरे मेल कहाँ गायब हो रहे हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें, आप जब बार बार एक ही मेल भेजते हैं तो उससे जो लोग नहीं, जिनका नाम लिया जाता है, जिनका मेल नहीं पढ़ा गया होता है, वो पीछे रह जाते हैं और फिर उनका मेल कहीं इन मेल्स की भीड़ में खो जाता है। आप सभी से गुजारिश है, एक बार में एक मेल करिए ताकि हम सभी को शामिल कर सकें और शामिल करने के साथ ही आपको सुनवा सकें प्यारे प्यारे से गीत।

0: और इसी गीत के साथ में आज का आपकी फरमाइश कार्यक्रम समाप्त करने की मुझे यानी दीप्ति को इजाज़त दीजिए। फिर मिलूंगी आपसे बहुत जल्द यूं ही किसी संगीतमय मोड़ पर। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। 12 बजने को हैं, अब समाचार होंगे। समाचारों के बाद 12:10 पर इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होंगे। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। जय हिंद।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
2: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न केवल भविष्योन्मुखी तैयारी कर रहा है बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और लोकहित आधारित विकास के जरिए उसे सक्रिय रूप से संवार रहा है। श्री मोदी ने फ्रांस यात्रा के आखिरी कार्यक्रम पेरिस में बोंजूर मोदी आयोजन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत में पिछले 12 वर्षों में तेजी से हुए बदलावों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद, हवाई अड्डा नेटवर्क और विश्वविद्यालयों की संख्या दोगुनी हो गई है जबकि मेट्रो कनेक्टिविटी 4 गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और मोबाइल फोन बनाने वाला दूसरा

0: सबसे बड़ा देश बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हिंदी में प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। बाद में प्रधानमंत्री स्वदेश रवाना हो गए। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा 3 मुख्य स्तंभों व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की, जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। आज क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुके हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैकाल में भी आज ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi projected India as a global hub of innovation and technology while addressing the Viva Tech 2026 summit in Paris. The Prime Minister said, "Technology can lead to progress only when it is democratized." Mr. Modi urged the global innovators to work with India and deliver for all. The Prime Minister highlighted that in the last decade, India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. Mr. Modi also held meetings with leading French business leaders to deepen economic and technological cooperation between the two countries. Prime Minister Modi has stated that India is not only preparing for the future, but is actively shaping it through innovation, technology, and people-driven development. Addressing the Indian community at the Bonjour Modi program in Paris yesterday, which was the final event of his France visit, the Prime Minister highlighted that India's rapid transformation over the past 12 years.
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: Referring to the Bharat Innovates program in Nice and VivaTech in Paris, he said the world is witnessing India's growing innovation strength. Earlier, French President Emmanuel Macron thanked Mr. Modi in Hindi through a social media post. Later, the Prime Minister departed for India. Ministry of External Affairs has highlighted the key outcomes of Prime Minister Narendra Modi's visit to France. Briefing the media in Paris yesterday, Foreign Secretary Vikram Misri said the visit was centered on 3 key pillars: trade, technology, and regional and international security. He said India and France jointly launched the Bharat Innovates initiative in Nice, creating a global platform for Indian deep tech startups. At VivaTech 2026 in Paris, where India was the AI country of focus, the Prime Minister underscored the importance of a human-centric approach to artificial intelligence and the use of technology for inclusive development. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has approved large-scale procurement of pulses and all seeds at the minimum support price, that is MSP, for four states through video conferencing. The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare said the procurement will be carried out under the price support scheme in Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. Uttar Pradesh has emerged as the biggest beneficiary under the approvals for the summer 2026 scheme. Procurement of 48,298 metric tons of moong, 97,970

श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं मदन मोहन की और कार्यक्रम है सुरों का सफरनामा। 25 जून 1924 को बगदाद में जन्मे मदन मोहन के पिता राय बहादुर चुन्नीलाल फिल्म जगत की एक जानी मानी हस्ती थे। बचपन से ही संगीत का वातावरण मिला, लेकिन परिवार चाहता था कि वो सेना में जाए। उन्होंने कुछ समय सेना में भी सेवा की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। संगीत का आकर्षण उन्हें रेडियो की दुनिया में ले आया। उन्होंने लखनऊ और दिल्ली आकाशवाणी में काम किया, जहां उनकी मुलाकात उस दौर के अनेक महाकलाकारों से हुई और यहीं से शुरू हुआ उनका सुरीला सफर।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा और मैं हूं आपके साथ विकास। कलाकार है मदन मोहन। श्रोताओं, फिल्मी दुनिया में प्रवेश आसान नहीं होता और मदन मोहन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि उनके पिता फिल्म उद्योग से जुड़े थे, लेकिन मदन मोहन को अपनी पहचान स्वयं बनानी पड़ी। 1940 के दशक के अंत में वो मुंबई पहुंचे। कई निर्माताओं के दरवाजे खटखटाए, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। उनकी धुनें बेहद संवेदनशील थी, जबकि उस समय फिल्म उद्योग में हल्के फुल्के और लोकप्रिय संगीत का दौर था। कई बार उनकी प्रतिभा को वो पहचान नहीं मिली जिसकी वो हकदार थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने अपना सुरों का संघर्ष जारी रखा, और जिसकी झलक उनकी खूबसूरत गीतों में दिखती है।

श्वेता, 1950 में फिल्म आंखें से मदन मोहन जी को स्वतंत्र संगीतकार के रूप में काम करने का सुनहरा अवसर मिला। यही उनका पहला महत्वपूर्ण ब्रेक माना जाता है। इसके बाद धीरे धीरे उनकी धुनों ने संगीत प्रेमियों का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया। 1950 और 1960 के दशक में उन्होंने कई शानदार फिल्मों में संगीत दिया। उनकी खासियत थी राग आधारित धुनें, गजल शैली और भावनात्मक संगीत। यही तो थी पहचान मदन मोहन जी की।

श्रेताओं, जब भी मदन मोहन जी का नाम लिया जाता है तो एक नाम और साथ में आता है, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का। जी हाँ, लता मंगेशकर का नाम जरूर आता है। लता जी स्वयं कहती थी कि मदन मोहन की धुनें उनके दिल के बहुत करीब थी। दोनों की जोड़ी ने हिंदी फिल्म को बहुत ही अमर गीत दिए।

जी हाँ श्रोताओं, जब लता जी और मदन मोहन की जब जोड़ी आती थी तो बिल्कुल विरह के, प्रेम के सारे गीत स्क्रीन पर संजीदा हो जाते थे। इनके संगीत संयोजन और भावनात्मक गहराई से इन्हें उन गीतों की उपाधि मिली है जो कालजयी हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे गीत हैं जिनको कालजयी कहा जाता है। मदन मोहन जी का संगीत मिलता है और लता जी की आवाज़ मिलती है। मदन मोहन को हिंदी फिल्मों में गज़ल संगीत का सबसे बड़ा संगीतकार माना जाता है। उन्होंने गज़ल को आम दर्शकों तक पहुंचाया और उनकी धुनों में उर्दू शायरी की नज़ाकत और भारतीय शास्त्रीय संगीत की मिठास दिखाई देती थी। मदन मोहन ने अनेक सफल फिल्मों में संगीत दिया। उनकी कुछ फिल्में जो बहुत पॉपुलर हुई वो हैं वो कौन थी, हकीकत, मेरा साया, दस्तक, हीर राजा, हंसते जग, मौसम। इन फिल्मों का संगीत आज भी उतना ही लोकप्रिय है जितना अपने समय में था।

श्रोताओं, मदन मोहन जी को उनके जीवन काल में उतने पुरस्कार नहीं मिले जितने वो वास्तव में डिजर्व करते थे, लेकिन संगीत जगत ने उन्हें हमेशा सर्वोच्च सम्मान दिया। उनकी रचनाएं आज भी संगीत संस्थानों में अध्ययन का विषय हैं। मरणोपरांत भी आज अनेक उन्हें मंचों पर याद किया जाता है। 2004 में वीर जारा में उनके अप्रयुक्त संगीत का उपयोग किया गया और एक नई पीढ़ी ने उनकी प्रतिभा को फिर से महसूस किया। श्रोताओं, आपको बता दें कि जो वीर जारा है, इससे पहले हम बात कर रहे थे मदन मोहन जी और लता मंगेशकर की जोड़ी का। वीर जारा जो फिल्म थी, लता जी की आखिरी फुल हिंदी एल्बम फिल्म थी, वो एक ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने पूरी सारे गाने उन्होंने गाए, वो लास्ट उनकी फिल्म थी जिसमें पूरे गाने गाए थे और उसमें मदन मोहन जी का संगीत था। तो आप सोच सकते हैं कि ये जोड़ी कितनी कामयाब रही, कितनी पॉपुलर रही और कितनी भाग्यशाली हम लोग रहे कि ये जोड़ी एक बार फिर संगीत और सुर के साथ जब मैदान में आई फिल्म वीर जारा में, तो हम सब ने सुना। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत संगीत, लता मंगेशकर की आवाज़ में संगीत है मदन मोहन का।

श्वेता 14 जुलाई 1975 को मात्र 51 साल की आयु में मदन मोहन इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन कलाकार शरीर से जाता है, कला से नहीं। उनके संगीत की खुशबू आज भी हर पीढ़ी को महका रही है। 2004 में जो फिल्म आई थी वीर ज़ारा, 1975 में वो नहीं रहे, लेकिन उनकी फिल्म वीर ज़ारा 2004 में ब्लॉकबस्टर रही। उनके संगीत करीब उनके जाने के 29 साल बाद ये फिल्म आई थी। श्रोताओं, आज के सुरों का सफरनामा में हमने जाना महान संगीतकार मदन मोहन के जीवन, संघर्ष, सफलता और अमर संगीत की कहानी। उन्होंने साबित किया कि सच्चा संगीत समय का मोहताज नहीं होता। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक और महान कलाकार की कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए सुरों का सफरनामा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न केवल भविष्योन्मुखी तैयारी कर रहा है, बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और लोकहित आधारित विकास के जरिए उसे सक्रिय रूप से संवार रहा है। श्री मोदी ने फ्रांस यात्रा के आखिरी कार्यक्रम पेरिस में बोंजूर मोदी आयोजन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत में पिछले 12 वर्षों में तेजी से हुए बदलावों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद, हवाई अड्डा नेटवर्क और विश्वविद्यालयों की संख्या दोगुनी हो गई है, जबकि मेट्रो कनेक्टिविटी 4 गुना बढ़ी है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हिंदी में प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री स्वदेश रवाना हो गए हैं। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा 3 मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को

होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के तहत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वेंस ने व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अब हॉर्मूज जल डमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। उन्होंने कहा कि ईरान समझौते पर बातचीत के लिए उनकी स्विट्जरलैंड जाने की योजना है। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेस्का को 5-0 से हराया। आज क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुके हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुँच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 1:10 और पूरे 10 सेकंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे, जिसमें आप सुनेंगे गोल्डन एरा के वो गाने जो आज भी हम सबके दिलों पर राज करते हैं।

AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल और मैं हूं आपके साथ विकास। अभी आपने सुना लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा गीत, आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात कर विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न केवल भविष्य उन्मुखी तैयारी कर रहा है, बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और लोकहित आधारित विकास के जरिए उसे सक्रिय रूप से संवार रहा है। श्री मोदी ने फ्रांस यात्रा के आखिरी कार्यक्रम पेरिस में बोंजूर मोदी आयोजन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत में पिछले 12 वर्षों में तेजी से हुए बदलावों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद, हवाई अड्डा नेटवर्क और विश्वविद्यालयों की संख्या दोगुनी हो गई है, जबकि मेट्रो कनेक्टिविटी 4 गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। प्रधानमंत्री फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा 3 मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने कहा है कि सुदृढ़ नीतिगत ढांचे और सरकार की नवोन्मेषी पहल से भारत विश्व के प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा देशों में से एक बन गया है। नई दिल्ली में 10वीं हरित और सतत विकास साझेदारी परिचर्चा श्रृंखला में नवीकरणीय ऊर्जा के जरिए ऊर्जा सुरक्षा पर अपने संबोधन में श्री सारंगी ने ये बात कही। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के तहत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न केवल भविष्योन्मुखी तैयारी कर रहा है, बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और लोकहित आधारित विकास के जरिए उसे सक्रिय रूप से संवार रहा है। श्री मोदी ने फ्रांस यात्रा के आखिरी कार्यक्रम पेरिस में बोंजूर मोदी आयोजन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत में पिछले 12 वर्षों में तेजी से हुए बदलावों का उल्लेख किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी को हिंदी में एक विदाई वीडियो पोस्ट भेजा, जिसमें उन्होंने श्री मोदी को प्रिय मित्र बताते हुए कहा कि फ्रांस आपसे प्यार करता है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश की यात्रा के लिए धन्यवाद दिया और इसे बेहद सफल बताया। उन्होंने फरवरी में उनसे दोबारा मिलने की उम्मीद भी जताई। श्री मैक्रों ने कहा कि फ्रांस उनसे प्यार करता है। प्रधानमंत्री स्लोवाकिया और फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा 3 मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। सरकारी ई मार्केट प्लेस ने नई दिल्ली में कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस साझेदारी का उद्देश्य देश भर में, विशेष रूप से ग्रामीण और अल्प सुविधा वाले इलाकों में, सरकारी खरीद अवसरों तक पहुंच बढ़ाना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4 राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दाल और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी है। मंत्रालय ने कहा कि तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीद की जाएगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के तहत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को पारगमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वेंस ने व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अब हॉर्मुज जल डमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। उन्होंने

जी, आकाशवाणी दिल्ली का EIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। समय हुआ है 3:10 और 10 सेकंड। अब आप हैं मेरे साथ, मैं हूं चेतन, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम गजल गीत। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति कलाकार हैं पंडित अनूप जलोटा और निहारिका सिन्हा। गजल के गुलुकार हैं मिर्जा गालिब और संगीत का निर्देशन किया है निहारिका सिन्हा ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति के रूप में बहुत ही खूबसूरत गजल।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति के रूप में एक बहुत ही खूबसूरत गजल सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में।

AIR लाइव न्यू 24/7 चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गजल गीत और मैं हूं आपके साथ चेतन कुमार शर्मा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं और बहुत ही खूबसूरत गजल। कलाकार हैं पंकज उदास।

कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति गजल के रूप में जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, कलाकार हैं वनिता सिंह और गुलुकार यानी कि जो गज़ल रचना है निदा फाजली साहब की और संगीत से सवारा है उत्तम सिंह ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

और इसी खूबसूरत गज़ल के साथ आज का ये गज़ल गीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। सुबह के 4 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्चना।

அகவையெனும் அவையெல்லாம் ஜகத்தில் பந்தம்மா.

नारायण तीर्थ की एक रचना सुनिए। कलाकार हैं नेदुनुरी कृष्णमूर्ति, एम जलजाक्षी, एम वी रमणम मूर्ति, पी सूर्या राव, एम एल नरसिम्हम, एस वसुंधरा देवी और एम जोगुलाम्बा।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

जी आकाशवाणी दिल्ली का EIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं चरण लक्ष्य कुमारन का गायन। संगत कलाकार हैं जी रघुवेंद्र प्रशांत वायलिन पर और आर नारायण।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे चरण्य लक्ष्मी कुमारन का गायन। वायलिन पर आपकी संगति कर रहे थे जी रघुवेंद्र प्रसाद और मृदंगम पर थे आर नारायणन। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आज शुक्रवार है, शक सम्मत 1948 के ज्येष्ठ मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 जून 2026। इस समय सुबह के 4:53 और 48 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:10 पर कार्यक्रम होगा आओ योग करें, जिसमें आज का विषय रहेगा योग गौमुखासन। देशभक्ति संगीत का समय रहेगा सुबह 5:20।

स्वर रंजनी कार्यक्रम के अंतर्गत अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:30 पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे सिद्धार्थ वर्मा का सितार वादन राग अहीर भैरम में। संगत करता होंगे अभिषेक कोटनाला तबले पर। चिंतन कार्यक्रम का समय रहेगा 6:40, जिसमें विषय रहेगा स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विचारों पर।

7:10 पर संगीतिका कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे संघमित्रा चक्रवर्ती के भजन। 7:30 का समय रहेगा हिंदी फिल्मों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा के अंतर्गत 8:45 पर आप सुनेंगे डॉक्टर अमृत दिशा का सितार वादन राग मियां की तोड़ी में। संगतकर्ता होंगे बलजीत सिंह तबले पर। सुबह 9:15 पर गांधी चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ता का विषय होगा योग और स्वास्थ्य के विषय में गांधी जी के विचार। वार्ताकार होंगे निशा जिंदल।

0: मिट्टी दी महक पंजाबी कार्यक्रम का समय रहेगा दिन में 9:30, दिन में 10:10 पर आप सुनेंगे फिल्मी संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। सबरस कार्यक्रम का समय रहेगा दिन में 11:10 और 11:30 पर आप सुनेंगे सुरमंजरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, जिसमें आप सुनेंगे रितेश और रजनी मिश्रा का गायन। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 meters यानी 819 kilohertz, DRM 810 kilohertz पर। सुबह के 5 बजने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे

0: बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। पेरिस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। उन्होंने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि एवियन में हुई G7 बैठक में उन्होंने विश्वास पर आधारित साझेदारियों के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व अनिश्चितता और व्यवधान के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में फ्रांस और भारत के बीच साझेदारी, विश्वास, स्थिरता और सहयोग का एक मजबूत स्तंभ बन गई है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदी में एक विदाई वीडियो पोस्ट में भेजा, जिसमें उन्होंने श्री मोदी को प्रिय मित्र बताते हुए कहा कि फ्रांस उनसे प्यार करता है। श्री मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस की यात्रा को बेहद सफल बताया। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी के सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा 3 मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली NEET UG पुनः परीक्षा की तैयारियों की आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों के आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वैंस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इस बीच ईरान के सरकारी मीडिया ने कहा कि ईरान के दक्षिणी बंदरगाहों पर जहाजों का आवागमन सामान्य हो गया है, पर होर्मुज जलडमरू मध्य अभी ईरानी सेना की निगरानी और नियंत्रण में है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 5:10 और 20 सेकेंड। आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस, जिसमें आज का विषय है योग गौमुख आसन।

योग करें। आज हम जिस आसन को ले रहे हैं उसका नाम है गौमुख आसन। संस्कृत में गौमुख का अर्थ होता है गाय का चेहरा या गाय का मुख। इस आसन में पांव की स्थिति बहुत हद तक गौमुख की आकृति जैसी होती है, इसलिए इस आसन को गौमुख

लाभदायक आसन है। यह गठिया, शाइटिका, अपचन, कब्ज, धातु रोग, मधुमेह, कमर में दर्द होने पर यह आसन बहुत अधिक लाभप्रद है। चलिए गौमुख आसन की विधि को जान लें और अगर हो सके तो साथ में कर भी सकते हैं। सबसे पहले अपने आसन पर दंडासन अर्थात दोनों पैरों को सामने सीधे एड़ी और पंजों को मिलाकर बैठें, यानी आसन पर आप सीधे बैठें और अपने पैरों को सीधे ले जाएं अपने सामने, एड़ी और पंजों को आपस में मिलाकर बैठें, हाथ कमर से सटे हुए और हथेलियां भूमि पर टिकी हुई, नजरें एकदम सामने। अब अपने बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं नितंब के पास रखें, दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। इस स्थिति में दोनों झंगाएं एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी जो त्रिकोण आकार में नजर आएंगी। आप समझ रहे हैं ना, सबसे पहले अपने बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं नितंब के पास रखें, अब दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। इस स्थिति में दोनों झंगाएं एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी और दिखने में ये त्रिकोणाकार नजर आती हैं। फिर श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर दाहिने कंधे को ऊपर खींचते हुए हाथ को पीछे पीठ की ओर ले जाएं। इसके बाद बाएं हाथ को पेट के पास से पीठ के पीछे लेकर दाहिने हाथ के पंजे को पकड़ें, गर्दन व कमर सीधी रखें। फिर श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर दाहिने कंधे को ऊपर खींचते हुए अब एक ओर से लगभग एक मिनट तक करने के पश्चात दूसरी ओर इसी प्रकार करें, यानी वापस अपने हाथों को नीचे ले जाएं, वापस दंडासन में जाएं और अब बाएं पैर की जगह दाएं पैर को मोड़कर एड़ी को बाएं नितंब के ऊपर रखें, बाएं पैर को मोड़कर दाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। फिर श्वास भरते हुए बाएं हाथ को उठाकर बाएं कंधे को ऊपर खींचते हुए हाथ को पीछे पीठ की ओर ले जाएं, आपकी कोहनी आपके बाएं कान के साथ मिल रही होगी। अब दाएं हाथ को पेट के पास से पीठ के पीछे से लेकर बाहिने हाथ के पंजे को पकड़ें और इस अवस्था में भी लगभग एक मिनट श्वास लें। कुछ देर बाद धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों के लॉक को खोल दें और पुनः दंड आसन की स्थिति में आ जाएं। इस तरह आपका एक चक्र पूरा हुआ। हाथों के पंजों को पीछे पकड़े रहने की

0: सुविधा अनुसार 30 सेकंड से 1 मिनट की स्थिति तक रह सकते हैं। इस आसन के चक्र को 2 या 3 बार दोहरा भी सकते हैं। गौमुख आसन करते हुए कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए, जैसे किसी भी अन्य आसन को करते समय। यदि आपके हाथ, पैर और रीढ़ की हड्डी में कोई गंभीर रोग हो तो गौमुख आसन न करें। इसी तरह जबरदस्ती पीठ के पीछे हाथों के पंजों को पकड़ने का प्रयास न करें। जब आप इस आसन को करना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि ये प्रक्रिया इतनी आसानी से न हो पाए। जब धीरे धीरे आपका लचीलापन बढ़ता चला जाए और शरीर को कष्ट ना हो, तब कोशिश करें कि पीठ के पीछे हाथों के पंजों को पकड़ा जाए। चलिए अब इस आसन के लाभ से आपको अवगत करवाया जाए। गौमुख आसन करने से हाथ और पैरों की मांसपेशियां चुस्त और मजबूत बनती हैं। योग करें, हर रोज करें और अपने चेहरे पर योग करते समय मुस्कान को बनाए रखें, क्योंकि ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आपके जीवन को सुखमय बना देगी, रोग से दूर कर देगी। कल सुबह इसी समय इसी चैनल पर आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस, जिसमें आज का विषय था योग गौमुखासन।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 5:20 और 18 सेकंड। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम देशभक्ति गीत का, जिसमें पहला गीत है देशगान के रूप में, बोल हैं प्यारी जन्मभूमि।
0: आओ योग।

0: इंद्रप्रस्थ चैनल पर अभी आप देशभक्ति गीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर।